0: शुभ प्रभात दोस्तों, एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता, तो उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, मेडिटेट करने की जरूरत है कि बहुत ज्यादा स्वार्थी होकर भी
1: हुआ है।
0: बिल्कुल,
1: पृथ्वी ऐसे ही हमारी भी अपने बिल्कुल क्षण भंगुर है, फिर भी हम डरते हैं कि अगर मेरा ये छिन गया, अगर मेरा ये छिन गया, या यू नो मृत्यु हो गई या बीमारी आ गई। ये सब चीज जो है, अगर हम ये समझें कि हम एक प्रकृति का एक अंग है, एक रूप भी है, जैसे एक पेड़ भी बड़ा होता है, पत्ते आते हैं उसमें नए नए, ऐसे ही हमारी भी अपने शरीर भी जो है वो उन्हीं पंचभूतों का बना हुआ है।
0: बिल्कुल,
1: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ये सब चीजें हम में भी हैं और प्रकृति में भी यही है। तो हम प्रकृति का ही

0: एक अंग है। हम कभी भी ये नहीं सोचें कि नहीं, मैं अलग सा दिखता हूं तो मैं ये बिल्कुल अलग सा हूं। अब पॉजिटिविटी की बात यह है कि जैसे एक वृक्ष में जितनी हम उसका ध्यान रखेंगे, अच्छी खाद डालेंगे, उतना ही वो पनपता है। ऐसे ही हम अपने शरीर रूपी वृक्ष में हम जितना अच्छी खाद, मतलब अच्छा ज्ञान, सही कर्म, ये सब करेंगे तो हमारा जीवन भी एक सकारात्मकता को पकड़े रहेगा। और जो जितनी भी विषमताएं हैं जिंदगी की, उसको भी समझेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। कुछ कठिन काम या मेहनत करने से डरेगा नहीं, क्योंकि सच यही है कि कोई भी चीज हमें हासिल बिना एक मेहनत करे नहीं होती है। तो ये सच जानते हुए हम जल्दी से विफल नहीं महसूस करेंगे और ना ही हम आलस करेंगे, तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे। हिम्मत भी बनी रहेगी कि अभी नहीं हुआ तो थोड़ी और देर में हो जाएगा, इसमें और काम करना होगा, क्योंकि आप सच्चाई के पथ पे चल रहे हैं, अपने को भी देख रहे हैं कि क्या मैंने ये काम करने के लिए मैंने पूरी स्किल्स मैंने जुटा ली हैं, कि या मैं ऐसे ही प्रिटेंड कर रहा हूं कि मैं ये काम कर सकता हूं। तो सच को धारण किए हुए आपका जीवन जो है वो हमेशा सकारात्मक ही रहेगा, दुनिया की
1: बहुत
0: तरफ भी, लोगों की तरफ भी और अपनी तरफ भी।
1: जी, बहुत सुंदर, बहुत गहरी बात सुनीता मैम ने हमें बताई है कि किस तरीके से आध्यात्म हमको सकारात्मक रहने में कैसे कैसे मदद करता है। आराम से टेक योर टाइम दोस्तों, विचार कीजिए और तब तक इस भजन को सुनिए।

0: बहुत खूब, बहुत खूब। आध्यात्म को अगर हम अपनाते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, आप इतने समय से जो भी आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस कर रही थी मैम, उससे जो भी अनुभव आपको हुए, उसके हिसाब से हमें बताइए कि आध्यात्म का हमारे संबंधों पर क्या फर्क पड़ता है, हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं, हमारे पारिवारिक संबंध, सामाजिक संबंध, उन पर क्या फर्क पड़ता है।
1: जी फिर से इस चीज को दोबारा कहूंगी कि जब हम सच के साथ हैं तो, और हम अंतर्मुखी होते हैं
0: जी,
1: आध्यात्मिकता में हम अक्सर अंतर्मुखी रहते हैं और हम हमेशा अपना ही अवलोकन करते रहते हैं, तो जाहिर है कि हम ये भी सोचते होंगे या प्रश्न करते होंगे कि मेरे जो माता पिता हैं उनके प्रति मेरा क्या और कैसा संबंध है, क्या ये वाकई, अब ये तो एक संयोग की बात है कि मैं उनके अब घर में ही पैदा हुई हूँ
0: जी,
1: लेकिन उनके साथ जो मेरा अब संबंध बढ़ रहा है, क्या वो एक सच के बल पर है या फिर वो एक, या समाज से भी कहिए या दोस्तों से कहिए या अपने जहां पे आप काम करते हैं, किसी भी कोई भी संबंध में अपने एक सच्चाई को हमने जरूर देखना है। अक्सर जहां रिश्तेदारी और समाज की बात आती है, बहुत सारे जो रिश्ते हैं वो कोई ना कोई अपने एक किसी मकसद से हो जाते हैं, वो अच्छा नहीं है केवल एक मकसद से कि इससे मैंने दोस्ती रखी तो मुझे फायदा होगा, समाज में मैंने अगर वहां जाके कुछ ये दान करा या ऐसे करा तो ये इस तरीके से हो जाएगा, वो सच में सच्चाई पे नहीं बेस्ड है। और इस तरीके से हम एक तरीके से हम अपने संसाधनों का, हमारे जो संसाधन क्या है, हमारे पास जो प्रेशियस चीजें हैं वो क्या है, हमारे पास दया है, प्यार है, समय है, ये इनको मैं संसाधन बोलती हूँ, क्या हम अपने संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं या उसका अच्छे से उपयोग कर रहे हैं, तो ये इससे हमें हमेशा ये ध्यान में रहेगा कि मैं किस लिए किसी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, क्या ये दिखावा है, व्यापार है, कहीं लेना देना तो नहीं है या करुणा है, तो सच होगा तो दूर तक जाएगा और अमर भी होगा।
0: जी जी जी, बड़ी खूबसूरत बात, किस तरीके से संबंधों में भी हम सुधार कर सकते हैं, उनमें बदलाव ला सकते हैं अगर हम आध्यात्म को अपना लें। बहुत खूब, तो चलिए एक छोटा सा गैप लेते हुए, एक भजन को सुनते हुए वो विचार करते हैं और वापस आते हैं।

0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो सुनीता मैम, आध्यात्म और आज का ज़माना, और आपने अपने प्रोफेशनल जर्नी के बारे में भी हमें बताया कि आप भाषा की विशेषज्ञ रहीं, इंग्लिश की आप अध्यापिका रहीं, टीचर रहीं, फैकल्टी रहीं। तो हम लोग एक तरीके से अगर साइंस को अप्रोच करते हुए आज की ज़िंदगी को जीने की कोशिश करते हैं, जो कि हम इस वार्तालाप में भी साइंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या साइंस और स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म और विज्ञान, इनके बारे में थोड़ा हमें बताइए। इनमें सिमिलैरिटी है, अलगाव है, अलगाव है, या एक दूसरे के पूरक हैं, ये एक दूसरे का सहारा भी इनको मिल सकता है, थोड़ा सा इसके बारे में समझाइए हमें, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी।
1: जी, इनफैक्ट अगर मैं बोलूं तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये बिल्कुल साथ साथ ही चलते हैं, ये एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। लेकिन लोक धर्म में ऐसा समझा जाता है कि या तो फिर कोई साइंटिफिक होगा या कोई स्पिरिचुअल होगा, क्योंकि उनके माइंड में, उनके मन में, उनके विचारों में आध्यात्मिकता का अर्थ ही बहुत विकृत है
0: जी।
1: वो गलत है, वो स्वयं की तरफ, वो बाहर की तरफ है और अंतर्मुखी तो है ही नहीं। अब जो साइंस है वो दोनों, मैं बोल रही हूँ कि साथ साथ क्यों चलते हैं। साइंस क्या करती है? साइंस बोलती है कि जो ये चीज़, जो भी कुछ दुनिया में हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसमें वो एकाग्र होकर, उसके पीछे लगकर उसका अनुसंधान करती है कि नहीं, उसे देखने की कोशिश करती है, उसका कारण ढूंढने की कोशिश करती है। जी, आध्यात्मिकता भी यही काम करती है
0: जी।
1: वहां पे हम, हमारे जो जिसको इक्विपमेंट बोलते हैं या इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं हमारे, वो अलग हो जाते हैं, जैसे टेलीस्कोप का, टेलीस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लासेस या माइक्रोस्कोप, इन इन सब चीज का यूज इस्तेमाल कर लिया। आध्यात्मिकता में हम भी खुद को पहचानने के लिए अंतर्मुखी होकर खुद को ही देखते रहते हैं कि अब ये मेरे में जो इस समय विचार उठ रहा है, या मेरे को ये सब चीज देखकर, कोई भी पर्टिकुलर, कुछ भी हम उदाहरण ले सकते हैं, किसी को देखकर कि हमें बहुत गुस्सा आ रहा है, तो ये मुझे क्यों आ रहा है, मुझे मेरे गुस्से का कारण क्या है। इतना ही सोचते सोचते आप ये सोचिए कि जैसे आपने एक शांत, हमारा मन जो है, हमारी जो असली प्रकृति है वो बहुत शांत है
0: जी।
1: और हम उसमें भावनाओं को लेकर, भावनाएं आप

0: यूं समझिए एक लहरों के समान है। कि तो समुद्र में जो भावनाएं जो लहरें हैं क्या वो सच्ची हैं ना? वो क्षणभंगुर है, उठती है और फिर ढल जाती है, उठती है और फिर ढल जाती है। गुस्से को जब हम देखने की कोशिश करें तो आपको लगेगा कि ये भी एक लहर की तरह उठा, जैसे समुद्र में कंकड़ डाला तो वो उसके चारों तरफ जो है वो रिपल्स बन जाएंगे और फिर उसको वहीं के वहीं हम थोड़ी देर और देखते रहें तो वो फिर वहीं समतल हो जाएंगे जैसे लहरें। तो भावनाओं को हमको कितना महत्व देना है ये हमें समझना पड़ेगा। ये भी क्षणभंगुर है, कभी तो हमें बहुत क्रोध आ रहा है, कभी हमें बहुत प्यार आ रहा है, लेकिन ये सब जो है ये जो हमारा अहंकार है वो महसूस कर रहा है, शरीर नहीं।
1: जी जी,
0: शरीर नहीं। और क्या मैं सच में शरीर हूं? वो भी नहीं है। हमारी आंखें जो बाहर देखती हैं वो तो एक बाहर का देखना हो गया, क्या सच में ये मेरी दृष्टि भी है? मेरी दृष्टि में बाहर को देखने में मेरी दृष्टि में क्या इसका महत्व है और वो क्या है? वो बहुत कुछ अलग है। तो साइंस और आध्यात्मिकता दोनों एक ही काम करते हैं, स्वयं को जानने का, और साइंस जो है वो उसका कारण दूसरे प्रकरणों से करती है, बस इतना ही फर्क है।
1: जी जी, बेहद ही खूबसूरत तरीके से फर्क और सिमिलैरिटी और आपस में एक दूसरे के प्रति स्वस्थ रिलेशनशिप के बारे में अभी सुनीता जी ने हमें समझाया, अध्यात्म और विज्ञान के बीच का मामला बहुत सुंदर। चलिए दोस्तों, एक प्यारे से भजन का आनंद लेते हुए इस संबंध के बारे में सोचिए।

0: बहुत सुंदर। तो जाहिर सी बात है, क्या ये आध्यात्म, क्या ये स्पिरिचुअलिटी, ये हमें बचपन से पता चलती है, कुछ हमारे माहौल के बारे, माहौल हमें सिखा देता है, हमारे परिवार से हमें पता चलती है, या ये उम्र के साथ ही आना शुरू होती है, हम अपने बारे में विचार करना शुरू करते हैं, कौन हैं हम, कहाँ जा रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं हम, ऐसा कुछ होता है मैम, या हमें बचपन से ही इसके बारे में सिखाया पढ़ाया जाता है, हमको एहसास कराया जाता है, इस विषय में क्या कहेंगी आप?
1: जी, हमें अगर हम सभी अपना अपना जीवन देखें तो हमें एक लिखा हुआ स्क्रिप्ट ही मिल जाता है। हमने ये बैठकर कभी सोचा ही नहीं कि मैं खुद कौन हूं, मेरी अपनी प्रकृति क्या है और मुझे क्या करना है। हमें माँ बाप जब पाल रहे होते हैं, बड़ा कर रहे होते हैं, वो साथ साथ सिखा रहे होते हैं कि ऐसा करो, यू नो, इधर पांव छुओ, इधर सच बोलो, अभी पढ़ाई करो, अभी पढ़ाई करके आपको ये कमाना है, फिर पैसा कमाना है, फिर उसमें लगा देते हैं। तो ये तो सारा एक स्क्रिप्ट मिला हुआ नहीं है हमें। क्या ये हमने खुद से कभी सोचा है कि क्या इन सब चीजों की हमें जरूरत है? वो हमें एक बाहरी जो दुनिया है वो हमें एक रेस में लगा देती है
0: जी।
1: आप उनसे पूछिए जो रोज कितनी दूर काम करने भी जाते हैं और फिर कैसे, यू नो, बॉसेस के अधीन होने पे वो क्या क्या झेलते हैं और कितनी कुटिलताएं उनका उनको सामना करना पड़ता है। तो ये सब जो है ये एक तरह का स्क्रिप्ट हमें मिला होता है। जब हम अपने साथ बैठते हैं तब हमें समझ आता है कि नहीं, ये सब चीज जो है ये मेरा जीने का मकसद नहीं होता। ये सब तो पशु भी करते हैं ना, अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, उनके लिए भी खाना जुटा के लाते हैं
0: जी जी,
1: पर हमारे सिर्फ संसाधनों में है कि कैसे हम अलग अलग करते हैं, लेकिन इंसान होते हुए हमें अपनी बेचैनी समझनी है कि हमारे अंदर किस चीज की बेचैनी है। आपने ये सुना होगा कि कितने बड़े बड़े जो इतने अमीर लोग भी हैं, क्या वो केवल पैसे से कभी खुश रहे हैं?
0: जी जी, सुना है।
1: फिर भी उनको कहीं ना कहीं कुछ कमी नजर आती है और वो कमी, क्योंकि हम इतनी भाग दौड़ कर रहे होते हैं एक सिर्फ पैसे के पीछे या दुनिया के पीछे, मेरे साथ वाले के पास दो कार हैं तो मेरे पास क्यों नहीं हो, या मेरे पास ये है, सभी बस इस गलत भाग दौड़ में लगे हैं स्वयं से नहीं कि मुझे मेरे मन को, मेरी आत्मा को क्या चाहिए। आत्मा माने मेरे सच क्या है, मुझे क्या चाहिए, मैं किससे संतुष्ट हूँ, उसके बारे में हम नहीं सोच पाते। अगर सोचें वही अध्यात्मिकता है।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बड़ी प्यारी बात बताई आपने सर। मैम आपकी सारी बातें सुनकर, इस प्रोग्राम के विचार विमर्श को सुनकर, अगर कोई व्यक्ति तय करे कि चलिए मैं अध्यात्म अपनाता हूं, क्योंकि बहुत तरीके से मैं अपने आप को सुधार सकता हूं, मजा आएगा, तो आप उसके क्या सलाह देना चाहेंगे कि एक दो तीन कुछ ऐसे स्टेप्स लीजिए और सरल भाषा में आपको अध्यात्म प्राप्त होगा?
1: जी, इसमें एक तो सच को पकड़ना है, ठीक है, और जो हम जिस तरीके से हम जिसको आजकल के जमाने में बोलते हैं ना, हमारे गोल्स बनाए हुए हैं, तो खुद जानना है कि ये मेरे को थोपे गए हैं या सौंपे गए हैं।
0: ओके,
1: और अच्छा। क्या आश्विकता के साथ जीना है या नहीं जीना, और आध्यात्मिकता मतलब सच्चाई के साथ जीना। अब सही धर्म हमारा जो है वो परोपकार है।
0: जी जी,
1: परोपकार कैसे? अब आप, मैं उसमें ये नहीं कहूंगी कि आप पैसा नहीं कमाइए, पैसा जरूर कमाइए, क्योंकि पैसा कमाएंगे तो तभी आप और 10 लोगों को भी हेल्प कर सकेंगे, लेकिन ये जरूर देखिए कि मैं किस काम से बना रहा हूं।
0: जी,
1: क्या मैं 2 का 4 बनाने के लिए मुझे गलत चीजें इस्तेमाल करनी पड़ रही हैं, क्या मैं बॉम्ब्स बना रहा हूँ, क्या मैं एम्यूनिशन बना रहा हूँ, क्या मैं कैसी कैसी चीजें मैं धन प्राप्त करने के लिए मैं क्या कैसा काम कर रहा हूँ, वो देखिए,
0: जी।
1: उसका देखना बहुत जरूरी है। और आप देखिए रतन टाटा, सुधा मूर्ति जैसे, जो उन्होंने खूब पैसा भी कमाया लेकिन फिर भी जमीन से जुड़े हैं, परोपकारी हैं। आपको मालूम है सुधा जी तो वो बोलती हैं कि एक दिन मैं सब्जी वाली बन के बैठ जाती हूँ।
0: ओह माय गॉड। जी
1: ये सच है कि सिर्फ ये महसूस करने के लिए। अब जिसमें इतनी इंसानियत हो
0: जी
1: वो कहाँ से आई है, आध्यात्मिकता से।
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: अमीर लोग हैं आजकल जो प्रचलन है, कहाँ कहाँ जाके अपने जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने पोते को समझाया और बोला कि नहीं, मैं तुम बोल रहे हो कि मुझे मैकडॉनल्ड्स ले जाओ या मेरे सारे फ्रेंड्स को वहां बुला के खिलाओ पिलाओ, तो वो नहीं, मैं वो नहीं, वो उसको अनाथालय लेके गई और बोला कि ये बच्चे भी हैं, इनको देखकर, इनके साथ अपना जन्मदिन मनाकर हमें ज्यादा खुशी मिलेगी। तो कैसे आप साथ साथ बचपन से ही सिखाते हैं, आपने पूछा ना कि क्या हमें ये सीखना चाहिए, बिल्कुल
0: जी
1: सीखना, लेकिन सिखाने वाला भी सिर्फ केवल एक चोगा पहने हुए नहीं हो, केवल एक छेने बजाकर कीर्तन करने वाला ना हो और फिर वो अपने घर के सेवक को ही बुरी तरह बोले,
0: जी जी वो
1: वो तो फिर परोपकार नहीं हुआ।
0: तो सब नाटक ही हो गया फिर। दैट इज राइट, दैट इज वेरी राइट, बिल्कुल
1: तो
0: सही।
1: टाटा जी ने देखे, वो एक रेड़ी वाले उनके घर के सामने से जा रहे थे या सामने खड़े भी होते थे, उन्होंने देखा कि ये बेचारा सब्जी बेच रहा है, अभी मैं इसके लिए क्या करूं, तो करुणा है ना मन में,
0: जी
1: अपने पैसे में अपने ऐश्वर्य में गुम नहीं है, वो सोच रहे हैं, उसको देखकर उनको विचार आ रहा है, केवल विचार आने तक ही रुक नहीं जाते हैं, वो अपनी हैसियत से अपने समझ से जो कर सकते हैं वो करते हैं। क्या करते हैं, सिंपल सी चीज, वो बोलते हैं इन सब के लिए जाके ना, इनके लिए कुर्सी रख के आओ वहां पे,
0: जी।
1: या उनके छतरी पहुंचा दी कि ये इतने घंटे जो इनको खड़े होना पड़ता है तो वो बैठ जाए। ये जो सेंसिटिविटी है ये आध्यात्मिकता से आती है, अपने सामर्थ्य से आप जब भी किसी का कुछ कर पाए जरूर करें,
0: जी।
1: और हमें बहुत मौके मिलते हैं, हम मौकों को ना गवाएं और अपनी जिंदगी को भी बेकार ना जाने दें, पीछे मुड़ के देखें तो ऐसा ना सोचें मैंने क्या किया, क्या मैंने
0: एब्सोल्युटली।
1: कुछ किया कि नहीं किया, किसी के लिए कुछ दे पाई कि नहीं दे पाई।
0: बहुत
1: जी
0: खूब, बड़ी प्यारी बात है। जाहिर सी बात है दोस्तों, आपने आज सुनीता जी के विचार सुने। बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको कहीं ना कहीं गहराई तक छू के गई होंगी। विचार करते रहिए और हमारे इस प्रोग्राम से जुड़े रहिए, बहुत कुछ अपने बारे में जानने को मिल ही रहा है। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत आभार, साधुवाद कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, आपसे बातें की, आपने अपने दिल की बातें हमें बताई। अब हम ये सारी जिम्मेदारी अब हमारी हो जाती है कि इस ज्ञान को हम अपने बेहतरी के लिए किस तरह से इस्तेमाल करें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद है आपका।
1: आभार आपका समीर जी, जिन्होंने मुझे मौका दिया अपने विचार व्यक्त करने का और ये साझा करने का कि हमें जिंदगी में, मैं कोई बहुत, कोई भी, जैसे मैंने बोला मेरा नाम ही साधारण सुनीता है, साधारण
0: जी
1: सी जिंदगी जीनी है लेकिन सच्ची
0: जी
1: जीनी है, बस धन्यवाद आपका बहुत।

दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे। मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर।

शुभ प्रभात दोस्तों, एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन।

0: नमः।
1: नमस्कार दोस्तों, दिव्य दर्शन का एक और बहुत ही पवित्र और बहुत ही नया एपिसोड लेकर हम हाजिर हैं। आज हमारे साथ केवीएस रमन साहब हैं। केवीएस साहब पहले भी हमारे दिव्य दर्शन में शरीक हो चुके हैं, पार्टिसिपेट कर चुके हैं। उन्होंने हमें बताया था आध्यात्म के बारे में, रिलीजन के बारे में, धर्म के बारे में। आज हम फिर रमन साहब का स्वागत करते हैं और कुछ और दिव्य दर्शन के बारे में उनसे बातचीत करेंगे। रमन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। तो हमारे सुनने वालों के समक्ष आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में?
2: नमस्कार समीर भाई साहब, मैं आपको और आपकी पूरे टीम मेंबर्स को और आपका जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं उन सबको मैं तहे दिल से फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मुझे दोबारा आपने एक शिरकत करने का मौका दे दिया है, और सुनने वालों को मेरी ओर से प्रणाम।
1: बहुत बहुत प्रणाम है सर, बहुत साधुवाद। जाहिर सी बात है, जो प्रोग्राम पहले आपके साथ हुआ था, हमारे सुनने वालों में से बहुत सारे लोगों ने इस बारे में रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना की, गुजारिश की, डिमांड की कि हम लोग कुछ और बातचीत रमन साहब से करें, क्योंकि जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उनको आपसे बातचीत करके कुछ समझ आया होगा, कुछ रिलेट कर पाए होंगे उसी वजह से। तो चलिए रमन साहब, आज हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं सनातन धर्म की। मैं पर्सनली खुद भी सनातन धर्म को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज रहता हूं कि प्रिसाइसली एग्जैक्टली सच में ये है क्या चीज। तो रमन साहब मुझे ये बताइए, सनातन धर्म वास्तव में क्या है? क्या ये सिर्फ एक धर्म है या शायद एक जीवन शैली? मतलब क्या है धर्म, इसके बारे में हम क्या समझें?
2: वैसे तो ये इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। ये सारी चीज, जैसे पहले भी हम लोगों ने अध्यात्म के बारे में बात की और आज हम सनातन धर्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ये सब वास्ट चीजें हैं और हम लोग अपने जो सीमित एक नॉलेज के हिसाब से हम उसको एक दूसरे से बांटने की कोशिश कर रहे हैं
1: जी।
2: इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। सनातन धर्म को पहले समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि धर्म क्या है
1: जी।
2: जनरली सर, धर्म को हम लोग प्राय उसको हम रिलीजन के साथ जोड़ देते हैं। धर्म एक्चुअली मेरे विचार से धर्म एक गाइड है या एक मार्गदर्शक कह सकते हैं। इट्स अ गाइड। और सनातन की अगर बात करें तो सनातन का मतलब है जो शाश्वत है, जो मिटने वाली चीज नहीं है और वो सत्य है, और क्योंकि सत्य कभी मिटता नहीं है
1: जी।
2: डीपली कहें तो धर्म का अर्थ राइटियसनेस है। इस लिहाज से हम धर्म को एक मार्ग से, सही मार्ग से जीने का एक तरीका या शैली कह सकते हैं, और इन्हीं के वजह से हम ये निश्चय रूप से कह सकते हैं कि सनातन धर्म को जीवन का एक ट्रू एटर्नल लॉ ऐसा मान सकते हैं।
1: करेक्ट।
2: और ये एक हमें एक सही दिशा देता है और सही ढंग से जीवन व्यतीत करने का एक हमको मार्ग दिखाता है।
1: ओके सो इस चीज को समझना जाहिर सी बात है रमन जी की जरूरी हो जाता है कि धर्म और धर्म क्या चीज हुई और फिर सनातन धर्म क्या चीज हुई। तो जैसा आपने बताया कि बिल्कुल सत्य है, धर्म तो राइचियसनेस हो गया और सनातन हो गया जो हमेशा से है, हमेशा रहने वाला है और जो सच है। तो जाहिर सी बात है उसमें त्रुटि की या कोई डिफेक्ट की या फिर कोई गलती की गुंजाइश है ही नहीं। तो क्या ये सनातन धर्म और हिंदू धर्म ये एक ही चीज है या इनमें कुछ डिफरेंस है?
2: मेरे विचार से कि हिंदू धर्म, हिंदू सनातन धर्म नाम की कोई चीज नहीं है। धर्म जो है वो एक मनुष्य का अपना बनाया हुआ एक एक चीज है जो अपने रोजमर्रा इसमें हम काम चलाने के लिए हम उसको धर्म एक एक सही रास्ते पे चलने का एक हम अपने अपने आप से एक बनाई हुई चीज है। और हर आदमी अपने अपने परिस्थिति और अपने अपने बर्थ और जहां वो रहता है उसके हिसाब से और कुछ चीजें वो फॉलो करता वो धर्म है। मगर सनातन धर्म अगर बोले तो ये मात्र एक मनुष्य के लिए नहीं है, ये सारे सजीव और निर्जीव पर भी ये लागू होता है। सनातन धर्म सनातन धर्म जीने का एक एक ऐसा आयाम है, हमारे अस्तित्व या अस्तित्व का ही आधार है ऐसा हम मान सकते हैं।
1: ओके।
2: चाहे वह कीड़ा हो, चाहे वो कोई छोटा से छोटा इंसेक्ट हो, पक्षी हो, जानवर हो, पौधा पेड़ पौधे हो, ये सभी अपने अस्तित्व का जो संचालन करने का जो नियम है, मूलभूत जो नियम है, उसको हम सनातन धर्म कह सकते हैं। दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ सनातन धर्म।
1: परफेक्ट। मतलब सीधी सी बात हमें यह समझ में आ रही कि जो एक ऐसा नियम कानून कह लीजिए, प्रोटोकॉल कह लीजिए, फॉर्मेट कह लीजिए, या एक व्यवस्था कह लीजिए, अगर बड़ी सी प्यारी सी लैंग्वेज में कहें तो इस प्रकृति की जो व्यवस्था है, वो है सनातन। ऐसा मुझे लगता है रमन सर आप कह रहे हैं, करेक्ट?
2: जी सर।
1: ओके, अमेजिंग। फिर अगर सनातन शब्द को, जैसे एक वर्ड हुआ सनातन, उसको अगर हम थोड़ा सा और बेहतर समझने की कोशिश करें, यहां तो पहले हमने ये समझा कि सनातन एक व्यवस्था है जो पूरी प्रकृति को चलाती है या पूरी प्रकृति पर लागू है। अब हम सनातन को और समझें, इस वर्ड का, इस शब्द का मीनिंग क्या होगा?
2: सनातन धर्म एक्चुअली ये, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं, एक संस्कृत शब्द है
1: जी।
2: इस शब्द के कई मायने, कई अर्थ हैं, जैसे फंडामेंटल ज्ञान, आई मीन तात्विक ज्ञान, स्थायी विश्वास और एक सम्माननीय व्यवस्था। इन सबको हम सनातन के एक भिन्न भिन्न, आई मीन डिफरेंट डिफरेंट मतलब निकलते हैं। लेकिन जनरली सामान्यतः धर्म को हम दो प्रकार के में बांटते हैं, जो एक है सनातन धर्म, एक वर्णाश्रम धर्म
1: जी।
2: इन दोनों में सनातन धर्म सभी के लिए सामान्य रूप से एक आध्यात्मिक पहचान, एक स्पिरिचुअल पहचान देता है, स्पिरिचुअल पहचान देता है। एक अगर वर्णाश्रम की बात करें तो वो जीवन के परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित कर्तव्य है, सभी जीवों के अलग अलग एक उसमें डेफिनेशन उसमें आ जाता है। मगर सनातन में जैसे मेन अगर की अगर बात करें तो सभी जीवों के साथ अगर हम प्रेम दिखाना, सेवा भाव, पियटी और अच्छे कर्मों का पालन करना, कि इन इन एक आप विस्तार रूप से अगर बोले तो इसको सनातन शब्द का ये
1: मतलब
2: अर्थ निकलता है। जी जी,
1: करेक्ट। बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल सही बताया, और बहुत ही साधारण सा भाषा में। तो जाहिर से बात है, इस शब्द को अगर हम लोग धर्म के साथ जोड़ते हैं तो फिर ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर या व्यवस्था बन के खड़ी होती है। बहुत सुंदर रमन जी। सनातन धर्म, अब हम लोग ने सनातन को समझा, धर्म को समझा और उनको मिलाया, अब इसमें कर्म और धर्म को, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है इस व्यवस्था में? चलिए, धर्म को तो हमने फिर भी समझा था, अभी कर्म के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए ना कि इस व्यवस्था में कर्म की क्या महत्वपूर्ण है, कर्म की क्या इंपॉर्टेंस है?
2: वैसे कर्म धर्म दोनों ही जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं सनातन धर्म में। एक दोनों को ही एक फंडामेंटल लॉ कहा जा सकता है, जो मनुष्य के आध्यात्मिक प्रगति, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए और जीवन के परिणामों को गवन करता है, ये दोनों कर्म और धर्म, धर्म और कर्म दोनों करता है। कर्म का जो सिद्धांत है वो कर्म चाहे वो विचार से हो या शब्दों से हो या कार्य से हो, वो कोई ना कोई परिणाम देता है। व्हाट एवर यू डू उसका वो एक रिएक्शन देता है या उसका एक रेसिप्रोकेशन उसका होता है कर्म का। जो भी काम करें हम, चाहे हम कभी कभी हम विचार से भी अगर कुछ करते हैं, जैसे किसी के साथ क्रोध होना भी एक किसी विचार ही एक टाइप का विचार है, दैट ऑल्सो उसका एक परिणाम यह है कि वी गेट इनटू, उसके बाद हम खुद बाद में सोचते हैं कि हमने नहीं करना चाहिए था या हमारा टेंशन बढ़ जाता है। ये सारी चीजें, हर चीज का एक, हर कर्म का एक परिणाम होता है ये। और इसीलिए सनातन धर्म में, इसीलिए क्योंकि ये कर्म, हम वी कीप ऑन डूइंग कर्म, ये अतीत और फ्यूचर
1: को,
2: हाँ भूत और भविष्य, इनफैक्ट ये अतीत और प्रेजेंट को का जो एक इसका जो रिजल्ट जो देता है वो हम, हमें वर्तमान में इसका दिखाई देता है। वर्तमान हम, हमारा ये निर्धारित करता है। तो व्हाट वी कॉल इन हिंदी में, जैसा एक सेइंग है, जो जैसे बोएगा वो वैसे काटेगा या पाएगा। तो इसीलिए ये, क्योंकि कर्म किसी न किसी का परिणाम देता है, तो हर व्यक्ति को ये हमें सिखाता है कि सनातन धर्म सिखाता है कि वी हैव टू बी नो, अपने जो भी कर्म करें वो अच्छा कर्म करें, क्योंकि जो जितना अपने उस हिसाब से हमको कहने, हम तो ये कहा जाता है कि भाई आपके पुनर्जन्म में ऐसा होता है, ऐसा होगा, लेकिन कभी कभी आपको तुरंत भी उसका एक परिणाम आपको मिल जाता है। तो इन सबके वजह से, क्योंकि कर्म से परिणाम मिलता है, तो हमारे कर्म जो है हमेशा एक अच्छा एक कर्म होना चाहिए।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल सही बात है। और जैसा आपने बहुत प्यार से बताया, उसी चीज को मैं एक बार बहुत छोटे से मैं सिंपल रिपीट करना चाहता हूं, मेरे अपने फायदे के लिए, कि मैं उसको याद रख सकूं, कि हम जैसे काम करते हैं तो कई बार तो उनके फल जो होते हैं वो हमें थोड़ा सा भविष्य में मिलते हैं, या कई बार तो बिल्कुल वर्तमान में ही मिल जाते हैं। तो सामने के सामने है साहब, जो काटा, जो आपने बोया वही काटा। तो जब ये सामने दिखता है तो उसको मानने में फिर परेशानी ही क्या, आइए ना इसको मान लेते हैं। बहुत सुंदर रमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं यहाँ पर, एक प्यारा सा भजन सुनते हैं और फिर मैं वापस आपके सामने हाजिर होता हूँ।

0: बहुत ही सुंदर। रमन जी, सनातन धर्म के में पुनर्जन्म की अवधारणा को भी कहा गया है कि मतलब हम रीबर्थ की बात करें, दोबारा जन्म लेते हैं सनातन धर्म में, तो उसको आप कैसे समझाएंगे? सनातन धर्म इस चीज को कैसे समझाता है?
1: सनातन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। सनातन धर्म या पुनर्जन्म यानी रीइंकार्नेशन या इसी विश्वास पर आधारित है अपना सनातन धर्म। और जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं, इवन भागवत गीता में कभी निकल करके आता है कि आत्मा अजर है अमर है चासी। आत्मा अजर है और अमर है, और वह केवल एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाता, तो इट इज फ्रॉम बिलीफ ऑफ सनातन धर्म। से भगवद गीता के सेकंड चैप्टर के 20th श्लोक में है
0: जी।
1: कहा है कि न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भवित्वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम् पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे।
0: सुंदर।
1: आत्मा न तो जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। इसका मैं आपको थोड़ा सा सारांश बता रहा हूं। और ना ही एक बार अस्तित्व में आने के बाद वो कभी समाप्त होती है। आत्मा जन्म रहित शाश्वत अमर और अजर है। शरीर के नष्ट होने पर भी वो नष्ट नहीं होती है। दिस इज दी कंसेप्ट और दिस इज दी बिलीफ ऑफ सनातन धर्म।
0: जी,
1: यही सनातन धर्म माना गया है कि पुनर्जन्म में उनका इसका सनातन धर्म का विश्वास है।
0: जी,
1: ऐसा ही समझाया गया।
0: बहुत सुंदर, अमेजिंग। सो जाहिर सी बात है, बहुत क्लियरली हमें आज ये बहुत साधारण शब्दों में ये चीज समझ में आ रही है कि पुनर्जन्म का जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, उसको सनातन में कैसे समझाया गया है। बिल्कुल ठीक। तो बस एक छोटा सा भजन यहां सुने और फिर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है, वो पूछते हैं रमन जी से।

0: और अमन जी, आपने पुनर्जन्म के बारे में हमें बताया कि सनातन धर्म इसको कैसे समझाता है। अब सनातन धर्म मोक्ष के बारे में क्या कहता है, उसके पाने का रास्ता क्या बताता है, थोड़ा सा उसके ऊपर रोशनी डालिए।
1: सनातन धर्म में मोक्ष मानव जीवन का एक परम लक्ष्य है, मेन जो हमारा फाइनल अल्टीमेट, हाँ अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज मोक्ष एज पर सनातन धर्म। जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म का निरंतर चक्र जो है ये हम लोग सब समझते हैं, जानते हैं, सनातन धर्म मानता है और क्योंकि हम लोग उसको फॉलो करते हैं तो हम भी इस चीज को मानते हैं कि हर प्राणी का जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म रिसाइकल होता रहता है, ये साइकिल चलता रहता है, निरंतर ये चक्र चलता रहता है। इस दुख, इसको अगर दुख मानते हैं, इसको इफ वी कैन समझते हैं कि ये इस तरह बार बार जन्म लेना, कष्ट
0: मतलब
1: सहना,
0: ये पेनफुल होता है, फिर से मर गए, फिर
1: पेनफुल
0: पेनफुल
1: फॉर जी। तो इससे मुक्ति इससे मुक्ति पाना ही जो है हमारा मेन लक्ष्य जो है वो सनातन धर्म में बताता है। जब व्यक्ति का आत्मा अपने वास्तविक रूप से पहचान लेती है और उसके बाद जब व्हेन इट रीचेस द अल्टीमेट, दैट इज व्हाट इज मोक्ष, एंड वी ऑल उसी के लिए हम स्ट्राइव करते हैं और कोशिश करते हैं। जैसे हम कई मार्ग भी इसके लिए चुनते हैं, जैसे भक्ति मार्ग है, नॉलेज के थ्रू होता है, कर्म के थ्रू होता है और मेडिटेशन, ये कुछ कुछ कुछ कुछ एक सनातन धर्म में बताए गए हैं, कुछ मार्ग हैं, कुछ रास्ते हैं जो इनकी को हम फॉलो करके हम फाइनली मोक्ष की ओर जाने की हम कोशिश करते हैं। दिस इज व्हाट वी कीप स्ट्राइविंग और जीवन मुक्त लिबरेट होने की कोशिश करते हैं ये सब चीजें करके। ये है इसका सम्मान।
0: जी आपने बिल्कुल ठीक कह दिया, बहुत ही आराम से हमें तीन रास्ते तो सामने दिख ही रहे हैं, कर्म का रास्ता है, योग का रास्ता है, मेडिटेशन का रास्ता है, धर्म। तो जाहिर से बात है इनमें से किसी को भी अपनाकर हम मोक्ष की तरफ चल सकते हैं। अब वो हमारी विलक्षणता पर, हमारी शिद्दत पर, हमारी कॉन्सेंट्रेशन पर, हमारी चाहत पर निर्भर करेगा कि हम कितनी तेजी से मोक्ष की तरफ जाएं। बहुत सुंदर। अब अगर आज के समय की बात करें, देखिए सनातन तो किसी समय से था, किसी समय तक रहेगा, चलता ही जा रहा है, लेकिन अगर हम आज की बात करें जब हम और आप हैं, तो इस धर्म को, सनातन धर्म को कोई भी एक साधारण व्यक्ति कैसे समझे, और अगर उसे समझ, वैसे तो आज के प्रोग्राम में आप ही की बात सुनकर बहुत सारे लोगों को ये चीज क्लियर हो जाएगी और वो उसको अपनाना चाहे, तो क्या करें हम?
1: क्या करें, इट्स बेसिकली बहुत ही एक ट्रिकी सवाल है
0: जी।
1: क्योंकि मैं आई डोंट वांट टू साउंड नो नेगेटिव, इट्स क्वाइट, कुछ कोशिश ही करके ही इसको चेंज किया जा सकता है, अपनाया जा सकता है आज के दौर पे, ये मुझे लगता है। आई विश आई एम रॉन्ग। हम इसको सनातन धर्म को समझा अपनाया कैसे जा सकता है, इसके लिए हमें मूल ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ता है, करना पड़ेगा, जैसे उपनिषद है, रामायण है, और ऐसे चीजों का हमको अध्ययन करना पड़ेगा। लोगों के पास इसके लिए कितना टाइम है आज, और उसको अच्छी तरह समझाने वाला कौन है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन अगर मनुष्य अगर कोई चीज करने की ठान लेता है तो वो करता है, करना कर देता है
0: जी।
1: सबसे बड़ी बात यह है कि हम कम से कम अपना कर्तव्य जो है रोजमर्रा जिंदगी का, जो हमारा जो कर्तव्य है, उसी को हम ईमानदारी से पालन करें। वो दैट में भी फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बीइंग सनातनी। बाकी हम लोग तो योग और मेडिटेशन तो आजकल जगह जगह सब लोग इंटरेस्टेड भी हैं और करते भी, हाँ तो हो भी रहा है, इसका भी एक ये भी एक माध्यम है। और आत्म रियलाइजेशन इन सब चीजों से आता भी है, एक सेल्फ रियलाइजेशन इन सब चीजों से आता है, योग और मेडिटेशन के द्वारा। छोटी छोटी चीजें जैसे दूसरों का हर्ट नहीं करना, अहिंसा, दया, क्षमा, ईमानदारी, दीज आर ऑल स्मॉल स्मॉल थिंग्स विच कैन लीड अस टू टूवर्ड्स जो है सनातन होने के एक और हमको शायद ले जा सकता। ये मेरे स्मॉल हम्बल सोच।
0: बिल्कुल सही है सर। बहुत ज्यादा गूढ़, जैसे आपने कहा उपनिषद ग्रंथों वगैरह का हम अध्ययन करें, पहली बात तो जैसे आपने बिल्कुल सही कहा इंटरेस्ट की बात भी हो जाती है, फिर वो बहुत गूढ़ ग्रंथ हैं, उनको समझाने वाला भी कोई उचित गुरु हो जो हमें ढंग से समझा सके, उसके बाद आज के टाइम में इंटरेस्ट भाई वक्त भी नहीं है, तब भी कई परेशानियों से जूझते हुए फ्रस्ट्रेट होकर अचानक से घूम जाएं और हमें लगे कि नहीं चलिए अब सनातन को अपनाया जाए क्योंकि शांति प्राप्त करनी है, तब ये सब चीज़ें जो बहुत सरल भाषा में आपने बताई है वो हमें अपनानी चाहिए, वही होगा। और अगला जो मेरे दिमाग में कौंध रहा था सवाल, वो ये था कि आज की जो नई जनरेशन है उसको भला कैसे सनातन धर्म से जोड़ दिया जाए, तो मुझे लगता है यही थ्रेड्स जो आपने बोले हैं। जी
1: यही है, जो क्योंकि ये कुछ कुछ चीजें जो है बहुत सरल हैं, हमें क्योंकि झूठ नहीं बोलना ये तो बचपन से सिखाया जाता, सत्य बोलना बचपन से सिखाया जाता है, दूसरे किसी प्राणी को तंग नहीं करना ये भी सिखाया जाता है, घरों में सिखाया जाता है, स्कूलों में सिखाया जाता है, ये दीस आर ऑल स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो हम विच हैज बिकम दी पार्ट ऑफ अवर लाइफ, और इनको सही मायने में उसको और अच्छी तरह प्रैक्टिस करना, उसके बारे में और जानकारी लेना और थोड़ा इसका वाइडन, इसको थोड़ा सा हरिजन को थोड़ा सा वाइडन करना, दीस आर ऑल द स्मॉल थिंग्स टुवर्ड्स स्टेप्स, स्मॉल स्टेप्स टुवर्ड्स नो इसके ओर जाने का, एक सनातन के ओर जाने का एक स्मॉल चीज है।
0: सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। मुझे इस चीज पे ध्यान आता है, कई बार बचपन से हम सुनते आए कि गायत्री मंत्र इसीलिए बनाया गया था कि

0: हम सनातन धर्म को पा सकते हैं। जाहिर सी बात है, हम ये सारी बातचीत इसलिए कर रहे हैं, सनातन धर्म को पाने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि हम शांत होना चाहते हैं, साफ सुथरे पवित्र और एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अपनी जिंदगी को जिए, शांति से जिए, अच्छी तरीके से जिए, मतलब खुश रहें, परेशानी ना हो। अब आपने जैसे सनातन धर्म को समझा, आपने सनातन धर्म को अपनाया, उसकी जो भी आप प्रैक्टिसेस जो आपने हमें बताई वो आपने की, उससे आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? कुछ आपको फील हुआ कि मेरी लाइफ में ये पॉजिटिव चेंजेस आए हैं? थोड़ा सा वो शेयर कीजिए ना हमारे साथ।
1: हाँ बिल्कुल, इसके हर चीज का जैसे पहले भी होता है कि हर कर्म का एक रिएक्शन होता है, एक उसका एक परिणाम होता है। तो ये जैसे स्मॉलेस्ट स्मॉल स्मॉल छोटी छोटी चीजें जो हम अपने डेली रूटीन में भी जो करते हैं उसको, आप जैसे मैंने पहले एक क्रोध का बताया था कि जब हम क्रोध भी करते हैं तो उसका एक कभी हमको खुद को बाद में खराब लगता है कि मैंने ऐसा ही रिएक्शन क्यों दिया, ऐसा क्यों किया। और उसी तरह जो हम कभी अच्छी चीजें करते हैं तो उससे भी हमको सुकून मिलता है। हम कुछ ना एक छोटे से किसी रास्ते में जाते हुए किसी प्राणी को जस्ट हेल्प ही कर दिया, उसको मतलब किसी से बचा दिया, कोई बच्चे पत्थर मार रहे हैं तो उस तो ये एक दूसरे प्राणी की ओर जो हमारे एक वो दर्शाता है, एक लव दर्शाता है। और वो भी करके आते हैं तो हम बाद में लगता है कि आज हमने ये किया, तो ये सब चीजें। उसी तरह जैसे हमको शुरू से एक चीज बताया गया है, मेरी माँ कहती थी कि अगर किसी को उपकार ना करें कम से कम उसको अपकार ना, किसी को रोंग टू एनी हार्म टू एनी बॉडी, आप अगर उपकार नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आपके वजह से किसी को एक हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। और हम ऑफिस में जब रहते थे हम कोशिश यही करते थे कि हमारी वजह से किसी का मन ना दुखे, हमारी वजह से किसी को कोई परेशानी ना हो, ये हम बहुत इस चीज को हम उसके ऊपर ध्यान रखते थे। ये और इससे जो है स्लोली आपका जो एक पॉजिटिव ऑरा आपके समक्ष वो रहने लगता है। और अगला भी अगर आप जैसे आप व्यवहार करते हैं वैसा ही दूसरा भी आपके साथ व्यवहार करने लगता है, उसके ऊपर भी उसका एक असर पड़ता है। ये एक दूसरे के साथ इस तरह असर पड़ता है, जो हमें ये छोटी छोटी चीजें फॉलो करने में ऐसा असर हमको हमने भी हमें भी ज्ञात हुआ और दूसरे भी इस चीज को हमारी वजह से उनके ऊपर भी इसका एक इन्फ्लुएंस हमने महसूस किया कई बार।
0: ओके ऑफ कोर्स, बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल ठीक बात है। जैसे जैसा हम महसूस करते हैं, कोशिश करते हैं, और उसके परिणाम भी हमें हाथों हाथ मिलने भी लगते हैं और बहुत सारी चीजें महसूस होती हैं। बड़ी प्यारी बात कही। तो लीजिए थोड़ा सा एक पॉज लेते हैं, एक प्यारे से भजन के लिए रुकते हैं, फिर वापस आते हैं।

0: बहुत सुंदर रमन जी, किसी व्यक्ति को सनातन धर्म को और ज्यादा गहराई में समझना हो तो कौन कौन से ग्रंथ या कौन से लिटरेचर आप सजेस्ट करोगे कि हम पढ़ें, अध्ययन करें, कुछ करें, किस तरह की किताबें या ग्रंथ?
1: बस ग्रंथ इसमें तो जो मेन चीज आपको बताने वाली जो चीजें हैं वो है वही मूल ग्रंथ जो है, हमारे जो मूल ग्रंथ है वेद है, भागवत गीता है, उपनिषद है, इवन रामायण और महाभारत से भी हमको कई इसके और इसके बारे में हमको ज्ञात हो सकता है होता है। लेकिन कई कई किताबें ऐसे हैं जो अगर आप खोजें तो गोरखपुर की गीता प्रसवानों का यहाँ से कई चीजों का प्रकाशित उनका है, तो वो भी जो है आजकल सर्फिंग करने में आपको, क्योंकि शुरुआत एक बेबी स्टेप से ही हमको करना पड़ता है। इमीडिएटली हम इमीडिएटली हम उपनिषद या तो हमें क्या भागवत या किसी और चीजों की कोशिश करेंगे तो हम आधे में टाइगर्स हो जाएंगे, आधे तक जाएंगे नहीं जाएंगे पता नहीं। हमें वो चीज जब चीज समझ में नहीं आएगा तो हम मन इधर उधर भटकने लगता है। तो स्मॉल छोटे पैमाने से शुरू करें, ये सब चीजें हमको सर्फिंग करने से मिल जाएगा। गीता गीता प्लस गोरखपुर वालों के बहुत सारे वो हैं, और विवेकानंद जी का जो लेख है वो पढ़ सकते हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें ही हैं, हम अदरवाइज बुक अगर बोले तो हम मूल ग्रंथ जो है उसी से हमको गूढ़ इसका एक मिल सकता है, ज्ञान हमें प्राप्त हो सकता है।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं इस बात से बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ साहब। गीता प्रेस गोरखपुर एक ऐसा उपक्रम है जो किसी जमाने से चला आ रहा है। भारत की संस्कृति को उसने अभी भी पकड़ के रखा है। मैं हिंदू धर्म या सनातन धर्म या किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, उन्होंने भारतीय संस्कृति की बात की है। अब उसमें सभी लोग आते हैं और के उसके सारे जितने पुराने गूढ़ लिटरेचर हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, उनको अभी तक उन्होंने संजाया है, संजोया है, बचाया है। मुझे इस बात की सचमुच बहुत खुशी है। मैं कई मेरे पास उनकी बहुत सारी किताबें, पुस्तकें, बुक्स मौजूद हैं, खास करके पुराण, करीब करीब सारे पुराण मेरे उन्हीं के यहाँ के प्रिंटेड मौजूद हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि आप गोरखपुर गीता प्रेस गोरखपुर का भी बहुत बड़ा सहारा ले सकते हैं सनातन धर्म को समझने के लिए। बाकी जैसा विवेकानंद जी की कहा, लेखनी की बात कही रमन साहब ने, तो वो भी है, उपनिषद वगैरह भी है, महाभारत रामायण भी बताया रमन साहब ने, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद रमन साहब। एक बहुत रिलेटिवली बहुत ज़्यादा सफाई साफ तौर पर हमें समझ में आया है कि सनातन धर्म दरअसल क्या चीज़ है, उसके प्रोटोकॉल्स क्या हैं, उसका फॉर्मेट क्या है, उसकी व्यवस्था क्या है, किस तरीके से वो हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है और कैसे हम उसे अपना सकते हैं। बहुत बड़ा आयाम आज खुला है हमारे सामने। जाहिर सी बात है हमें थोड़ा और सीखने की आवश्यकता तो है, फिर भी इसकी शुरुआत करने के लिए, प्रारंभ में हमारा हाथ पकड़कर चलाने के लिए रमन साहब आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। आप आए, पधारे, हमारे इस प्रोग्राम में अपनी बातें रखी, बहुत अच्छा लगा, आपका आभार है सर।
1: धन्यवाद समीर जी, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं इन विषयों के बारे में कुछ आपस में बांटूं, आपस में कहूं, मुझे इस लायक समझा। मैं आपको और एस एन रेडियो के जितने भी हमारे और साथी हैं, आपके और साथी हैं, उन सब को भी मैं धन्यवाद देता हूं। और हमारे जो सुनने वाले जो हमारे जो मित्र हैं उनको भी मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरे से कोई त्रुटि हो गई हो तो हम लोग सब व्हाट्सएप में है, नंबर है, आप बेझिझक हमें बताइए कि हमसे त्रुटि कहाँ हुई, हम अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद समीर जी।

दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे। मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो, बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। चैतन्य, वो चेतना जो हमेशा साथ रहती है। कभी आपने एक बहुत सिंपल सा सवाल सोचा है? हम सोचते कैसे हैं? हम महसूस कैसे करते हैं? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, कौन है जो ये सब हमें महसूस करवाता है? मान लीजिए आप गुस्सा होते हैं, फिर कुछ देर बाद शांत हो जाते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी उदास होते हैं, पर एक बात नोटिस की है, ये सब इमोशंस बदलते रहते हैं, पर एक चीज कभी नहीं बदलती, और वो है आपके अंदर की जागृति, आपकी अवेयरनेस, जिसे भारतीय दर्शन में कहा गया है चैतन्य। चैतन्य का मतलब बहुत सिंपल शब्दों में, वो जो जानता है, वो जो देख रहा है, और वो जो अवेयर है। अगर आप अभी मुझे सुन रहे हैं, तो सुनने का अनुभव कौन कर रहा है? कान सिर्फ आवाज पकड़ रहे हैं, दिमाग उसे समझ रहा है, पर जो इस सब को जान रहा है वो है चैतन्य। और भारतीय दर्शन का ये मानना है कि चैतन्य जीवन का असली सार है, आत्मन, आपकी असली पहचान। हिंदू दर्शन के ज्यादातर सिद्धांतों में ये कहा गया है कि इंसान के अंदर एक आत्मन होता है। आत्मन को समझना भी बहुत सिंपल है। मान लीजिए आप बचपन की फोटो देखते हैं, एक छोटा सा बच्चा, शायद 5 साल का, और आप मुस्कुरा कर कहते हैं, ये मैं हूं। लेकिन सच सोचिए, आपका शरीर बदल गया, आपकी सोच बदल गई, आपकी पसंद बदल गई, फिर भी आपको कैसे पता कि वो बच्चा आप ही थे? क्योंकि एक चीज नहीं बदली, और वो है आपके अंदर की चेतना, वो आत्मन। इसीलिए कहा गया है, शरीर बदलता है, मन बदलता है, विचार बदलते हैं, पर आत्मन, आत्मन कभी नहीं बदलता। उसकी 3 खासियत बताई गई हैं। नित्य, मतलब जो हमेशा रहता है, चित, जो पूरी तरह कॉन्शियस है, और आनंद, शांति और सुख का एक स्वरूप। इसलिए कहा गया है, शरीर करता है, मन सोचता है, पर आत्मन जानता है। अद्वैत वेदांता, सब एक ही है। अब एक बहुत गहरा और सुंदर विचार आता है, जो है अद्वैत वेदांता। अद्वैत वेदांता का मतलब होता है दो नहीं, एक ही सच। इस दर्शन के महान आचार्य आदि शंकराचार्य जी ने कहा, आत्मन और भ्रमण अलग नहीं है। भ्रमण मतलब पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि की असली सच्चाई। और जब उपनिषद कहते हैं तत्त्वम असि, तो इसका मतलब होता है तू वही है। मतलब जो चेतना आपके अंदर है, वही चेतना पूरे ब्रह्मांड में है। जैसे समुद्र में हजारों लहरें उठती हैं, पर हर लहर
अलग लगती है। असल में वो सभी लहरें सब समुंदर ही हैं। वैसे ही हम सब अलग लगते हैं, पर असली रूप में चेतना एक ही है। सांख्य दर्शन, दो तत्वों की कहानी। अब आइए एक और नजरिया समझते हैं। सांख्य दर्शन, ये दर्शन कहता है कि दुनिया में दो चीजें हैं, पुरुष और प्रकृति। पुरुष मतलब शुद्ध चेतना जो सिर्फ देखती है, और प्रकृति मतलब जिसमें शरीर, मन और दिमाग सभी कुछ है, यानी मैटर। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सोचिए आप सिनेमा हॉल में फिल्म देख रहे हैं, स्क्रीन पर एक्शन चल रहा है, कभी कॉमेडी कभी ट्रेजेडी, पर आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ देख रहे हैं। फिल्म जो भी हो, आप वैसे के वैसे बैठे हैं। सांख्य कहता है कि पुरुष भी बिल्कुल ऐसा ही है, वो बस साक्षी है, एक विटनेस है, जो सब उसके आसपास हो रहा है उसका एक विटनेस। दुख तब होता है जब हम भूल जाते हैं कि हम सिर्फ देखने वाले हैं और खुद को फिल्म का कैरेक्टर समझ लेते हैं और उनके साथ वो सभी इमोशंस महसूस करते चलते हैं। योग दर्शन, मन को शांत करना। यही बात पतंजलि के योगा दर्शन में भी आती है। पतंजलि ने कहा, योग चित्त वृत्ति निरोध, मतलब जब मन की लहरें शांत हो जाती हैं, तब सच्चाई दिखती है। और योगा सूत्र का एक बहुत खूबसूरत वाक्य है, तब दृष्टा अपने असली रूप में स्थित हो जाता है। यानी जब मन शांत होता है, तब अंदर का साक्षी, अंदर की चेतना अपने असली रूप में आ जाती है। इसीलिए ध्यान और मेडिटेशन का मकसद कोई जादुई शक्ति पाना नहीं है दोस्तों, बस अपने असली स्वरूप को, अपने असली रूप को पहचानना है। पहचान कर देखिए। अंत में एक छोटा सा विचार आपके सोचने के लिए। अगर हम थोड़ा रुक कर देखें तो पता चलेगा कि हम अपनी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा सिर्फ मन की आवाजों में बिता देते हैं। कभी चिंता, कभी डर, कभी कंपैरिजन। पर भारतीय दर्शन एक बहुत शांत और गहरा संदेश देता है। ये कहता है कि आप सिर्फ अपने विचार नहीं हैं, आप अपने इमोशंस भी नहीं हैं, आप वो चेतना हैं जो इन सब को देख रही है। और जब इंसान इस बात को समझ लेता है तो उसकी जिंदगी का नजरिया ही बदल जाता है। तब दुख आता है पर तोड़ता नहीं, खुशी भी आती है पर बहकाती नहीं, क्योंकि अंदर, बहुत अंदर कहीं एक शांत सी आवाज कह रही होती है, मैं सिर्फ साक्षी हूं। और शायद इसीलिए भारतीय दर्शन का सार एक ही लाइन में समझ आता है, अपने आप को पहचानो। क्योंकि जब इंसान अंदर की चेतना को पहचान लेता है, तब उसे समझ आता है कि जिंदगी सिर्फ जीने की चीज नहीं, समझने की चीज भी है। समझ कर देखिए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: ओवरथिंकिंग डिपार्टमेंट, उसका काम सिंपल है। अगर कोई इंसान ओके लिख दे मैसेज में, तो डिपार्टमेंट मीटिंग बुला लेता है। एजेंडा, उसने ओके क्यों लिखा, ओके क्यों लिखा, फुल स्टॉप क्यों नहीं लगाया, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या वो मुझसे नाराज है। और जब तक कंक्लूजन आता है, तब तक पता चलता है इंसान बस बिजी था। What?

आज एक बहुत ही दिलचस्प और हैरान करने वाला विषय लेकर आई हूँ आपके लिए। हमारा दिमाग और हमारा मन। कभी आपने सोचा है, ये जो छोटा सा ऑर्गन है, सिर्फ 1 से 1.5 किलो का, ये हमारी पूरी दुनिया का डायरेक्टर है। आपका हर ख्याल, हर याद, हर फैसला, सब कुछ इसी से बनता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हमारे दिमाग में लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, जो एक दूसरे से ट्रिलियंस कनेक्शंस बनाते हैं। और क्या क्या नहीं, बाप रे उफ। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर समझें तो आपके दिमाग के अंदर एक पूरी गैलेक्सी जैसा नेटवर्क चल रहा है। इसी नेटवर्क से बनते हैं सोच, यादें, सपने, आइडियाज और कभी कभी कंफ्यूजन भी। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट सुन लीजिए, हमारी बॉडी का वेट जितना भी हो, उसका सिर्फ 2% हिस्सा दिमाग होता है, लेकिन एनर्जी लगभग 20% एनर्जी सिर्फ दिमाग अकेला यूज करता है। सोचिए, बॉडी का सबसे छोटा हिस्सा लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी खर्च करता है, क्योंकि ये कभी बंद नहीं होता। आप सो रहे हो तब भी ये काम कर रहा होता है। दरअसल साइंस कहती है कि स्लीप के वक्त दिमाग बहुत एक्टिव होता है और यादों को ऑर्गेनाइज करता है। जैसे रात को कोई लाइब्रेरियन लाइब्रेरी की बुक सेट कर रहा हो, दिन भर की बातें, कौन सी याद रखनी है, कौन सी डिलीट करनी है, सब अरेंज होता है भाई। इसीलिए जब आप सही नींद लेते हो तो अगले दिन दिमाग फ्रेश लगता है। और एक बात जो शायद आपको हैरान करे, हम अक्सर सुनते हैं इंसान सिर्फ 10% दिमाग यूज करता है, लेकिन सच क्या है? साइंस कहता है ये सिर्फ एक मिथ है। हकीकत ये है कि दिमाग के लगभग सभी हिस्सों में अपना काम होता रहता है। वो अलग अलग सिचुएशंस में एक्टिव होते रहते हैं। मतलब आपका दिमाग कोई बंद पड़ी फैक्ट्री नहीं है, ये तो 24 घंटे चलने वाली एक इंडस्ट्री है। और एक और फैसिनेटिंग फैक्ट, रिसर्च के मुताबिक इंसान के दिमाग में हर दिन हजारों थॉट्स आते हैं, कभी कभी 50,000 तक भी। सोचिए, अगर हर थॉट एक मेहमान हो तो आपके दिमाग में रोज एक बड़ा मेला लगा होता है। कोई थॉट खुशी का, कोई थॉट टेंशन का, कोई थॉट प्लानिंग का, और कुछ थॉट्स बिल्कुल अजीबोगरीब। जैसे कभी कभी आप सोचते हैं ना, मैं यहां आया क्यों था, और फिर 10 सेकंड बाद आपको याद आता है कि ये सब दिमाग की नेचुरल वर्किंग है। और एक बात बहुत इंटरेस्टिंग, मल्टीटास्किंग। आजकल लोग कहते हैं मैं एक साथ 5 काम करता हूं, लेकिन न्यूरोसाइंस कहती है दिमाग एक वक्त पर सिर्फ 1 काम पर ध्यान दे सकता है। वो बस बहुत तेजी से टास्क स्विच करता है। इसीलिए जब हम बहुत काम एक साथ करते हैं तो कभी कभी थकान ज्यादा लगती है, क्योंकि दिमाग एक ट्रैफिक पुलिस की तरह हर सेकेंड डायरेक्शंस बदलता रहता है। अब आते हैं एक और खूबसूरत कॉन्सेप्ट पे, न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका मतलब है दिमाग बदल सकता है। हर नई स्किल, हर नया एक्सपीरियंस दिमाग के अंदर नए कनेक्शंस बनाता है। मतलब अगर आप कुछ नया सीखते हो, जैसे म्यूजिक, लैंग्वेज, पेंटिंग, राइटिंग, तो आपका दिमाग लिटरली अपने स्ट्रक्चर्स चेंज करता है। इसीलिए कहते हैं सीखने की कोई एज नहीं होती, दिमाग हमेशा अडेप्ट करता है। और शायद इसीलिए इंसान इतनी प्रोग्रेस कर पाया है। लेकिन दोस्तों, माइंड और मैटर की एक कहानी कभी खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हम अपने थॉट्स को कंट्रोल करते हैं या थॉट्स हमें कंट्रोल करते हैं। ज्यादातर वक्त हमारे डिसीजन सबकॉन्शियस में बनते हैं। मतलब कई बार हम सोचते हैं कि हमने सोच समझकर फैसला लिया है, लेकिन दिमाग ने वो फैसला पहले ही बना दिया होता है। इसीलिए कभी कभी हम खुद से हैरान हो जाते हैं।
मैंने ऐसा क्यों किया। और यहीं से शुरू होती है सेल्फ अवेयरनेस। जब इंसान अपने माइंड को समझने लगता है तो लाइफ के डिसीजंस क्लियर होने लगते हैं। तो दोस्तों, आज का एक छोटा सा थॉट आपके लिए। आपका दिमाग सिर्फ एक ऑर्गन नहीं है, यह आपकी पूरी दुनिया का एक क्रिएटर है। इसी में आपके सपने बनते हैं, इसी में आपके डर भी बनते हैं, और इसी में आपकी इमेजिनेशन भी जन्म लेती है, और इसी में सॉल्यूशंस भी हैं। शायद इसीलिए इंसान का सबसे बड़ा सफर बाहर की दुनिया का नहीं, अपने ही दिमाग की दुनिया को समझने का एक सफर है। इसी खूबसूरत ख्याल के साथ मिलते हैं अगले सेगमेंट में एक नए ख्याल और एक नई कहानी के साथ। तब तक सोचते रहिए।

चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय। फोन बैटरी साइकोलॉजी। फोन बैटरी जब 100% होती है तो हम बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, वीडियोस देखो, रील्स देखो, गेम्स खेलो। बैटरी जैसे ही 20% होती है, इंसान एकदम फिलोसोफर बन जाता है। स्क्रीन ब्राइटनेस कम, एप्स बंद, बैकग्राउंड प्रोसेसेस बंद, और सबसे इंटरेस्टिंग, अचानक फोन बहुत प्रेशियस लगने लगता है।

दोस्तों, आज हम एक बहुत हटके पर बहुत जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आई होप आप लोग बहुत इंटरेस्टिंगली सुनेंगे। एक ऐसी इंटेलिजेंस के बारे में जानेंगे जो शायद आईक्यू से बहुत ज्यादा पावरफुल है। हम सबने सुना है आईक्यू यानी इंटेलिजेंस कोशेंट। फिर बाद में लोगों ने कहा ईक्यू भी इंपॉर्टेंट है यानी इमोशनल कोशेंट। और आजकल एक नया वर्ड सुनने को मिलता है एक्यू यानी एबिलिटी कोशेंट, मतलब बदलती सिचुएशंस में खुद को एडजस्ट करने की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी। लेकिन इन सब के बीच एक और इंटेलिजेंस है जो शायद सबसे पावरफुल है, और उसका सिंपल मतलब है अपनी सोच को देखने की कैपेसिटी। जरा सोचिए, हर दिन हमारे दिमाग में हजारों थॉट्स आते हैं, कभी चिंता, कभी एक्साइटमेंट,

रुकते हैं, थोड़ा देखते हैं, और इसी को कहते हैं मेटाकॉग्निशन। अब आप सोच रहे होंगे ये मेटाकॉग्निशन क्या होता है भाई। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इसे समझें तो सोच के बारे में सोचना, मतलब अगर एक थॉट आता है मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, तो तुरंत उसको सच मानने की बजाय एक सेकंड का पॉज लेकर रुकना और ये सोचना क्या ये सच है या बस मेरा कोई डर बोल रहा है। यही डिफरेंस है रिएक्शन और रिफ्लेक्शन में। ज्यादातर लोग अपने थॉट्स के अंदर ही जीते हैं। अगर वरी आई तो वरी बन जाते हैं, अगर गुस्सा आया तो तुरंत रिएक्ट कर देते हैं और इधर उधर हो जाते हैं। जिंदगी फिर एक ऑटोमेटिक रिएक्शन मशीन बन जाती है। लेकिन कुछ लोग अलग तरीके से जीते हैं। वो अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं जैसे कोई फिल्म चल रही हो और आप सीट पर बैठकर देख रहे हो। फिल्म में ड्रामा हो सकता है लेकिन आप स्क्रीन के अंदर नहीं घुसते, आप सिर्फ देखते हैं। एक सिंपल और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप ऑफिस में काम कर रहे हो, बॉस ने कमेंट कर दिया ये काम और बेटर हो सकता है। अब तुरंत दिमाग में थॉट आता है शायद बॉस मुझसे खुश नहीं है, शायद मैं केपेबल नहीं हूं, और फिर स्ट्रेस शुरू। लेकिन अगर आप थोड़ा रुक कर सोचें, एक मिनट, क्या मैं ओवरथिंक कर रहा हूं, तो हो सकता है कि बॉस का इंटेंशन सिर्फ इंप्रूवमेंट का सजेशन देना हो। बस एक छोटा सा पॉज और आपका पूरा रिएक्शन बदल गया। इसको समझने के लिए हम एक और बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आपके थॉट्स एक कार की तरह हैं और मेटाकॉग्निशन उस कार का ड्राइवर है। अगर ड्राइवर सो रहा हो तो कार कहीं भी जा सकती है, कभी गुस्से की तरफ, कभी डर की तरफ, कभी कंफ्यूजन की तरफ। लेकिन अगर ड्राइवर होशियार और कॉन्शियस हो तो वो डिसाइड करता है कि कब स्पीड बढ़ानी है, कब ब्रेक लगाना है और कब रास्ता बदलना है। और यही चीज लाइफ में सबसे बड़ा डिफरेंस लाती है। साइंस भी ये बात मानती है, रिसर्च बताती है कि जो लोग अपनी थिंकिंग को ऑब्जर्व कर पाते हैं वो लोग बेटर डिसीजंस लेते हैं, जल्दी सीखते हैं, गलतियों को रिपीट कम करते हैं और इमोशंस को ज्यादा बैलेंस में रख पाते हैं। दो लोग सेम डिग्री ले सकते हैं, सेम कॉलेज से पास आउट हो सकते हैं, लेकिन जो अपनी थिंकिंग को समझता है वो लाइफ में ज्यादा स्मार्ट चॉइसेस लेता है। एक और सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एक स्टूडेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा था। पहला स्टूडेंट बस किताब पढ़ता जा रहा था और सोच रहा था कि ये सब मुझे याद हो रहा है। दूसरा स्टूडेंट थोड़ा रुक कर पूछता है, क्या मैं सच में समझ रहा हूं या बस वर्ड्स पहचान रहा हूं। ये छोटा सा क्वेश्चन उसकी पढ़ाई का पूरा तरीका बदल देता है और ऑफ कोर्स रिजल्ट्स भी। रिलेशनशिप्स में भी ये स्किल बहुत पावरफुल है। कभी कभी छोटी सी बात पर हम गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन अगर एक सेकंड रुक कर सोच लें कि क्या मैं इस मोमेंट पर जो रिएक्शन दे रहा हूं क्या वो जरूरी है या ये कोई मेरे ही अंदर की पुरानी बात का ट्रिगर है जो मुझे इस रिएक्शन देने पर मजबूर कर रहा है। बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स वहीं खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम दूसरे इंसान में नहीं होती दोस्तों, हमारी इंटरप्रिटेशन में होती है। अब सबसे अच्छी बात, ये स्किल कोई स्पेशल गिफ्ट नहीं है, इसको प्रैक्टिस से डेवलप किया जा सकता है। कैसे? बहुत सिंपल हैबिट से, जैसे कभी कभी अपने डिसीजंस पर रिफ्लेक्ट करना, अपने रिएक्शंस को ऑब्जर्व करना और अपने अजम्पशंस को क्वेश्चन करना और खुद से बस इतना पूछना कि मैंने जो सोचा क्या वो सच था या बस एक अजम्पशन।

धीरे धीरे दिमाग एक नई आदत सीख लेता है और फिर आप थॉट्स के कंट्रोल में नहीं रहते, आप थॉट्स को कंट्रोल करने लगते हैं। और दोस्तों, आज के जमाने में ये स्किल बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया बहुत फास्ट बदल रही है, करियर्स चेंज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, लाइफ की डायरेक्शन भी कभी कभी चेंज हो जाती है। ऐसे वक्त में सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस वही है जो खुद को समझ सके, क्योंकि जो चीज हम नोटिस नहीं करते उसे चेंज भी नहीं कर सकते। और इसीलिए असली इंटेलिजेंस ब्रिलियंट थॉट्स होने में नहीं है, असली इंटेलिजेंस है ये जानना कि कौन सा थॉट सही है, कौन सा डाउट से भरा हुआ है और कौन सा थॉट छोड़ देना ही बेहतर है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं हमारी अगली कहानी। इस थॉट पर जरा मेटा कॉग्निशन कर देखिए।

तुम जान हो तो आलमगीर और जान हमें पर दोगी। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा, पानी में आग लगेगी पत्थर भी पिघल जाएगा। देखो तुम

प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। कभी हमने नहीं सोचा था

जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी, जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी, जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी। कभी हमने नहीं सोचा था।

0: मालूम है क्या? 27 जून 1939, एसडी और मिसेस एसडी को लड़का हुआ। डब्लू या एज वी नो हिम पंचम।
1: दैट्स राइट, पंचम।

0: साहब छत्र छाया।
1: अच्छा पैदा 1939 में हुए और
0: जिंदा है, जिंदा है
2: हमारे दिल में।
3: हे बस कौन था मालूम है क्या, मालूम है क्या बस कौन है मालूम है क्या।
0: एक राज की बात बताऊं, पहली पिक्चर राज निकली नहीं, फिर एसडी साहब के छोटे नवाब यानी यू नो हु डिड अ फिल्म कॉल्ड छोटे नवाब।

0: 丸めけや。
1: तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा ह्यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

दोस्तों, डर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी मजेदार वाली बात है, आपका डर महज एक भाव के अलावा कुछ भी नहीं होता, जो आपकी कल्पना से और बढ़ता जाता है। डर को आप खुद चुनते हैं, लेकिन सफल लोग अपने इस डर को कभी खुद पर हावी नहीं होने देते। वो अपने डर को अपनी सफलता की सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो हर उस चीज से लड़ते हैं जिससे वो डरते हैं और उस पर जीत हासिल करते हैं। वो खुद को विश्वास दिलाते हैं कि वो अपने डर से लड़ सकते हैं। बस आपको भी अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप हैं जाबुआ के अपने रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम पर, और आप सुन रहे हैं प्रेरणादायक बातों के साथ प्रेरणादायक गीत। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले, समय जरूर बदल जाता है और तब आप जीतते ही जीतते हैं दोस्तों।

0: अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया।
1: मुश्किल का नाम मिट जाएगा।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: सेल्समैन ने कहा, सर कॉकरोच के लिए पाउडर लेंगे क्या? पप्पू ने कहा, नहीं हम कॉकरोच को इतना लाड़ प्यार नहीं करते, आज पाउडर लगा देंगे कल परफ्यूम मांगेगा।
2: तो दोस्तों इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम के साथ। थोड़ा थोड़ा करके, दिन दिन करके, जो आपके लिए बना है वो आपको ढूंढ ही लेगा।

दोस्तों, रेडियो सुनना इतना जरूरी क्यों है, आइयो बताता हूं। प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है। जब हम कुछ सुनते हैं तो उसकी छवि, उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बनाते हैं। तो रेडियो सुनने से हम तमाम क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता को मजबूत करते हैं, अपने दिमाग में पिक्चर्स बनाते हैं, छवियां बनाते हैं और खुश होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: अगर आपको सभी महिलाओं से डर लगता है तो जल्दी से शादी कर लीजिए, फिर एक ही महिला से डर लगेगा और बाकी सारी अच्छी लगने लगेंगी।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम के साथ। खुद पर विश्वास करना एक जादू जैसा होता है दोस्तों। अगर ये विश्वास आप कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं।

संस्कृत बोलिए। शीर्षक सुनकर आप कहेंगे कि हम सही सही हिंदी ही नहीं बोल पाते, संस्कृत कहां से बोलेंगे? तो मैं कहूंगा कि आप पहले से ही संस्कृत बोल रहे हैं। जाने अनजाने हम सब संस्कृत बोल और लिख रहे हैं। विश्वास नहीं होता? चलिए पड़ताल करते हैं। दिन प्रतिदिन के जीवन में हम सैकड़ों संस्कृत शब्दों को उनके शुद्ध रूप में प्रयुक्त करते हैं, जिन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। तत्सम यानी जस का तस, जैसे अग्नि, रात्रि, पत्र, स्वर्ण, धर्म, युवा। लेकिन हमारा संस्कृत ज्ञान यहीं तक सीमित नहीं है, हम छोटे छोटे वाक्य भी बोलते हैं। गिनते जाइए। अति सर्वत्र वर्जेत, अहिंसा परमो धर्मः, अहम् ब्रह्मास्मि, न भूतो न भविष्यति, न दैन्यम न पलायनम, यथा राजा तथा प्रजा, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यमेव जयते, सर्वे भवन्तु सुखिनः, चरैवेति, जीवेत शरदाः शतम्, वसुधैव कुटुंबकम्, विनाश काले विपरीत बुद्धि, अतिथि देवो भव, सिंहावलोकन, विद्या ददाति विनयम्, यत्र तत्र सर्वत्र, प्रथम ग्रासे मक्षिका पाता, पहले ही कौर में मक्खी यानी शुरुआत में ही गड़बड़। संघे शक्ति कलो युगे, कलयुग में संगठन ही शक्ति है। कूप मंडूक, मातृ देवो भवा, माता को भगवान मानने वाले बनो। किमाश्चर्यम, आश्चर्य कैसा, वरदान देते हुए एवं अस्तु, ऐसा ही हो, और तथास्तु, वैसा ही हो। सूची बहुत लंबी है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये उक्तियां कम शब्दों में ही बहुत कुछ कह देती हैं। इन्हें लेखन और बोलचाल में सम्मिलित करने से बातों का वजन और रोचकता बढ़ाई जा सकती है। तो संस्कृत बोलिए।

बहुत पहले मैंने एक कहानी पढ़ी थी। अपनी 4 वर्षीय बहन के साथ बाजार में घूमते रहे 6 वर्ष के एक लड़के ने पाया कि बहन पीछे छूट गई है, इसलिए वह रुका और पीछे देखने लगा। छोटी बहन खिलौनों की एक दुकान के सामने खड़ी होकर एक गुड़िया को देख रही थी। लड़के ने पीछे जाकर उससे पूछा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? बहन ने गुड़िया की तरफ इशारा किया। किसी जिम्मेदार भाई की तरह उसने बहन का हाथ पकड़ा और वह गुड़िया उसे देकर खुश कर दिया। दुकानदार सब कुछ देख रहा था और इस छोटे से लड़के का परिपक्व व्यवहार उसे बहुत अच्छा लगा। फिर लड़के ने दुकानदार के पास आकर पूछा, गुड़िया की कीमत कितनी है सर? जीवन के बहुत उतार चढ़ाव देख चुका समझदार दुकानदार बच्चे से पूछ बैठा कि वह कितनी कीमत चुका सकता है। बच्चा अपनी जेब से सारी सीपियां निकालता है जो उसने समुद्र तट से इकट्ठी की थी और दुकानदार को दे देता है। दुकानदार उन्हें लेकर इस तरह गिनता है जैसे वह पैसे गिन रहा हो। जब वह लड़के की ओर देखता है तो लड़का चिंतित होकर पूछता है, क्या ये कम है? दुकानदार ने कहा, नहीं नहीं यह ज्यादा है। इतना कहकर वह केवल 4 सीपी रखकर शेष वापस लौटा देता है। लड़का बहुत खुश होकर उन सीपियों को वापस जेब में रख लेता है और बहन का हाथ पकड़कर चला जाता है। यह सब देखकर दुकानदार का सहायक बहुत चकित हुआ। उसने अपने मालिक से पूछा, सर आपने इतनी महंगी गुड़िया सिर्फ 4 सीपी के बदले में दे दी? एक मुस्कान के साथ दुकानदार ने कहा, हमारे लिए ये सिर्फ सीपियां हैं, लेकिन उस लड़के के लिए ये बहुत कीमती हैं। इस उम्र में तो उसे पता ही नहीं कि पैसा होता क्या है, लेकिन जब वह बड़ा होगा तो निश्चित ही तौर पर उसे मालूम पड़ जाएगा। जब उसे याद आएगा कि उसने पैसे के बजाय सीपियां देकर गुड़िया खरीदी थी, तो वह मुझे याद करेगा और सोचेगा कि यह दुनिया अच्छे लोगों से भरी हुई है। इससे उसे सकारात्मक रवैया विकसित करने में मदद मिलेगी। बदले में वह भी दूसरों की भलाइयों का काम करने के लिए प्रेरित होगा।

दशक पहले 1985 वो भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ। सभी ने उस पर बेहद भरोसा किया और उसने भी देश की सरहदों की रक्षा में अपना पूरा जीवन गुजार दिया। चील की तरह आकाश से जमीन पर अपने शिकार पर झपटने के लिए आतुर इस योद्धा को कई नामों से पुकारा गया, फ्लॉगर, एस अटैकर, और 1999 के कारगिल युद्ध में अपनी बहादुरी साबित करने के बाद उसके साथी रणबांकुरों ने उसे नया नाम दिया, बहादुर। 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 4000 किलो गोला बारूद उठाने की क्षमता, ये है इंडियन एयरफोर्स का MiG-27 लड़ाकू विमान। रशिया में इसे डिजाइन किया गया और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसे भारत में बनाया। पर 3 दशक किसी भी योद्धा के लिए लंबा समय होता है। 27 दिसंबर 2019 को इंडियन एयरफोर्स के 2 Scorpion-29 स्क्वाड्रंस ने अपने फ्लॉगर को, एस अटैकर को, अपने प्यारे बहादुर को भीगी आंखों से विदाई दी। बहादुर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी नई तकनीक से लैस नए जवान लड़ाकुओं को सौंपकर इतिहास के पन्नों में चला गया। हमारा देश बहादुर को हमेशा हमेशा शुक्रिया कहेगा और याद रखेगा।

दोस्तों, रेडियो सुनने का एक और फायदा बताता हूं। रेडियो अच्छे सकारात्मक गीत, संगीत और विचारों के साथ आपके दिमाग की, आपके मस्तिष्क की व्यायाम शाला है। आप रेडियो बिना उसकी तरफ देखे हुए सुन सकते हैं। अपने काम करते रहिए और रेडियो सुनते रहिए। है ना मजेदार रेडियो के साथ।

इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूं समीर, कल मिलते हैं।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो टाइमटेबल 90.8 एफएम छावा की आवाज आरजे भावना के साथ। आज हम सुनेंगे गुरु नानक देव जी की जीवन गाथा, तो चलिए सुनते हैं रेडियो टाइमटेबल 90.8 एफएम आरजे भावना के साथ।
1: पाकिस्तान के जिला शेखुपुरा के गांव राय भोई की तलवंडी में एक अत्यंत सुंदर मनमोहक बालक का जन्म हुआ, जिसके चेहरे पर इतना रब्बी नूर था कि जो भी उसे देखता बस उसका श्रद्धालु ही बन जाता। हम बात कर रहे हैं सिखों के पहले गुरु और सिख पंथ के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी की, जो सारे संसार को अंधकार से उजाले की ओर ले जाने तथा सत्य का मार्ग दिखाने के लिए धरती पर प्रकट हुए। इसके साथ ही पापियों और पाखंडियों को धर्म का रास्ता दिखाकर एक निरंकार से जोड़ने के लिए आप जी ने सारा जीवन अर्पण कर दिया। गुरु नानक देव जी ने अंधकार में युग में व्यर्थ के वहमों भ्रमों को समाप्त करके लोगों को धर्म का सही रास्ता दिखाया। उन्होंने किरत करो, नाम जपो और वंड छको का उपदेश दिया तथा पंगत और संगत की परंपरा चलाई। आप जी का उपदेश केवल एक धर्म या जाति तक सीमित ना होकर बल्कि समस्त संसार के सभी धर्मों और जातियों की एकता को बनाए रखना था। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन पिता मेहता कालू जी और माता तृप्ता देवी जी के घर में हुआ। पाकिस्तान का वह स्थान आजकल श्री ननकाना साहिब कहलाता है, जहां इस दिन को बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। आपके पिता खत्री जाति के बेदी थे। खेती बाड़ी के काम के साथ ही हाकिम राय बुलार के पास पटवारी का भी काम किया करते। गुरु नानक देव जी की एक बड़ी बहन बीबी नानकी थी, जो उम्र में आपसे 5 वर्ष बड़ी थी। वह अपने छोटे भाई को बहुत प्यार करती और देखभाल करती। कहते हैं आप जी के जन्म के समय पिता मेहता कालू जी ने पंडित हरदयाल को अपने बालक की जन्म पत्रिका बनवाने के लिए बुलाया। घर आकर पंडित ने दौलता दाई से बालक के जन्म का समय पूछा और बालक ने पहला शब्द क्या कहा था। दौलता दाई ने हैरानी से पंडित को बताया कि मेरे हाथों अनेक बालक जन्मे हैं, परंतु यह बालक अलौकिक है। इस बालक ने जन्म के समय ऐसे भाव प्रकट किए मानो कोई बुद्धिमान पुरुष पहली मुलाकात में हंसकर मिलता हो। मुझे इस बालक के जन्म पर हैरानी हो रही है। दाई से सारा विवरण लेकर पंडित ने कालू जी से कहा कि तुम्हारा बालक शुभ घड़ी में पैदा हुआ है, भविष्य में इसके सिर पर छत्र झूलेगा। पंडित ने जब बालक को देखा तो तुरंत उनके चरण छू लिए। बालक के बारे में अद्भुत बातें सुनकर माता पिता के आनंद की कोई सीमा न रही। हिंदू रीति के अनुसार 13 दिन हो जाने पर पंडित ने बालक को चोला पहनाया और नाम रखा नानक निरंकारी। पिता मेहता जी ने ऐसा नाम सुनते ही हैरानी से पंडित से कहा कि यह नाम तो हिंदू और मुसलमान दोनों का मिला जुला रूप है, नाम तो कोई और होना चाहिए था। तब पंडित ने कहा कि आपका पुत्र एक दिव्य ज्योति का अवतार है, ऐसा अवतार इस धरती पर आज तक नहीं हुआ। श्री राम जी, श्री कृष्ण जी आदि जितने भी अवतारी पुरुष धरती पर आए उनको केवल हिंदू धर्म के लोग ही पूछते थे, जबकि आपके पुत्र नानक निरंकारी को भविष्य में हिंदू और मुसलमान दोनों ही पूजेंगे। इतने शब्द सुनते ही कालू जी की सारी शंका खत्म हो गई। बालक की जन्म पत्रिका बना लेने के बाद पंडित ने उसे पढ़ते हुए कहा, यह बालक ऐसे नक्षत्र में पैदा हुआ है जिसे मैं ईश्वर का अवतार कह सकता हूँ। यह संसार में सूर्य की भांति चमकेगा, सारा ब्रह्मांड इसकी स्तुति करेगा। यदि यह समुद्र में जाएगा तो समुद्र भी इस बालक के लिए रास्ता छोड़ देंगे। यह अद्वितीय होगा, जिसके जैसा और कोई नहीं। यह केवल एक पूर्ण ब्रह्म की पूजा व सिमरन का प्रचार करेगा। एक पूर्ण धर्मात्मा और ज्ञान वैराग्य का अद्वितीय ज्ञाता होगा। एक परमात्मा के अलावा किसी की पूजा नहीं करेगा। यह पूर्ण अवतार है, अर्थात सभी कलाओं में संपूर्ण। सभी देवी देवता, भूत प्रेत और पैगंबर, ऋषि मुनि इसकी आज्ञा मानेंगे। यह जगत निर्माता खुद अवतार धारण करके संसार के कल्याण हेतु प्रकट हुआ है। अपने बालक की इतनी सारी बातें सुनते ही उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। समय बीतता गया। आपका बचपन अनेकों चमत्कारों से भरा था। स्वभाव में आप बड़े ही विनम्र और दयालु थे, साथ ही बड़े मस्त मोला। जब आप 5 वर्ष के हुए तो आपने अपनी कलाएं दिखानी शुरू कर दी। जैसे कहते हैं कि होनहार बिरवान के होते चिकने पाथ। एक बार की बात है, गुरु नानक देव जी ने अपने घर से एक बहुमूल्य वस्तु उठाकर किसी गरीब अपाहिज को दे दी। यह बात जब कालू जी के कानों में पड़ी तो वह गुरु जी से बहुत क्रोधित हुए। उस पंडित को शिकायत करके बोले कि तुमने तो कहा था यह बालक छत्रपति होगा, परंतु यह तो अपना घर ही साफ करने में लगा है। तब पंडित जी ने कहा, जब इस बालक का सही समय आएगा तब आपने हम जैसे लोगों से बात भी नहीं करनी। कहते हैं गुरु नानक देव जी बचपन में सदा बड़े बच्चों के साथ ही खेला करते। आपका उनके साथ खेलना भी अद्भुत था। सभी बच्चों को अपने इर्द गिर्द बिठाकर बीच में चौंकड़ा मारकर बैठ जाते और ईश्वर की बातें किया करते। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि 5 वर्ष का बालक ना समझ होता है, उसको तो अपनी भी समझ नहीं होती, जबकि आप जी अपने से बड़े बच्चों को ईश्वरीय बातें सुनाते। आपने तो किसी से ज्ञान भी प्राप्त नहीं किया, ना ही कोई गुरु धारण किया, फिर भी इतना ज्ञानी होना आपको अवतारी और अद्भुत बनाता है। गुरु जी की साखी में दर्ज है कि 7 वर्ष के होने पर आपको पंडित गोपालदास के पास विद्या हासिल करने के लिए गुरुकुल भेज दिया गया। आपका मन सांसारिक पढ़ाई में नहीं लगता था, आप केवल ईश्वरीय विद्या ही पढ़ना चाहते थे। पंडित ने गुरु जी को पट्टी पर पंजाबी भाषा का पहला अक्षर ऊड़ा लिखने को कहा, तो गुरु जी ने पंडित से कहा कि इस सांसारिक विद्या को छोड़कर ईश्वरीय विद्या पढ़ाएं। इस पर पंडित हैरान होकर कहने लगा कि हमें तो सांसारिक पढ़ाई ही आती है, आप बताएं कि ईश्वरीय विद्या से हमें क्या लाभ होगा। गुरु जी ने बताया कि सांसारिक विद्या केवल बंधन पैदा करती है, जबकि ईश्वरीय विद्या सांसारिक बंधनों से मुक्त करती है। इसे पढ़ने से लोक परलोक दोनों ही समर जाते हैं। अंत में जीवात्मा जब संसार त्याग कर परलोक जाएगी, यही विद्या उसके काम आएगी। गुरु जी ने तब पंडित को ऊड़ा का सही अर्थ समझाने के लिए एक श्लोक का उच्चारण किया, ऊड़े उपमा तांकी की जय, जाका अंत ना पाया, सेवा करे से ही फल पावे, जिन्नी सच कमाया। अर्थात ऊड़ा का अर्थ ओंकार यानी ईश्वर है। ईश्वर की पैदा की हुई सृष्टि का अंत नहीं देखा जा सकता। ऊड़ा कहता है कि एक निरंकार के सच्चे मन से भक्ति करने वाले सदा ही प्रसन्न रहते हैं। इस प्रकार गुरुजी ने पंडित को गुरुमुखी के सभी अक्षरों का ईश्वरीय अर्थ समझाया, जिसे सुनकर पंडित बहुत प्रभावित हुआ और गुरु नानक देव जी को सम्मान सहित गुरुकुल से घर छोड़ने आया और कालू जी से कहा कि तुम्हारा पुत्र तो इतना विद्वान है जिसके प्रश्नों के उत्तर हमारे पास भी नहीं है। इस कलयुग में चारों वेदों की विद्या अलोप हो रही है, आपका पुत्र इस अलोप हो रही विद्या को प्रकट करने और लोगों को भक्ति के साथ जोड़ने के लिए धरती पर आया है। कहते हैं 9 वर्ष की आयु होने पर हिंदू रीति के अनुसार आपको जनेऊ धारण करना अनिवार्य था। पंडित ने जैसे ही जनेऊ धारण करने की रस्म शुरू की तो गुरु जी ने पंडित को भरी सभा में रोकते हुए प्रश्न किया कि यह जनेऊ पहनना क्यों जरूरी है, इसे पहनने की विशेषता बताएं तथा इसको धारण करने से जीव को कौन सी उपाधि प्राप्त होती है। पंडित ने कहा, जनेऊ धारण ना करने से जीव अपवित्र रहता है, इस पर गुरु जी ने स्पष्ट किया कि जब तक अंतर आत्मा ही पवित्र ना हो तो बाहर के किए गए दिखावे से उस मनुष्य का क्या सुधार होगा। छोटे से बालक के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर वहां बैठे सभी लोग और पंडित अचंभित हो गए। पंडित ने गुरु जी से पूछा कि अब आप ही बताएं कि कौन सा जनेऊ पहनना उचित होगा जिससे जीव का धर्म बना रहे। गुरु जी बोले, दया कपाह संतोख सूत जत गंडी सतवट एहो जनेऊ जी का हईता पांडे कत ना ए तुटे ना मल लगे ना ए जले ना जाए तनसु मानस नानका जोगल चले पाए। अर्थात दया की कपास हो उससे संतोष रूपी धागा बनाए और सत्य का उस पर वट लगाकर गांठ लगाए। ऐसा जनेऊ जिसमें दया संतोष और सत्य हो वही गले में धारण करें। इसलिए पंडित जी जो आप जनेऊ मुझे धारण करवाना चाहते हैं वह तो मेरे किसी काम का नहीं। आपका जनेऊ आग में जल जाएगा, मैला हो जाएगा, टूट जाएगा, परंतु दया संतोष और सत्य द्वारा बनाया गया जनेऊ ना कभी जलता है, ना टूटता है, ना मैला होता है। अगर ऐसा जनेऊ आपके पास है तो वह पहनाओ, वरना मैं पहनने को तैयार नहीं। गुरु जी के जीवन में कई चमत्कार हुए हैं। हम कुछ कुछ घटनाओं को आपके सामने पेश कर रहे हैं। जैसे कहा जाता है, एक बार गुरु नानक देव जी को उनके पिता ने कहा कि तुम सारा दिन मस्ती में बैठे रहते हो, इससे अच्छा है कि कोई व्यापार करो। गुरु जी को 20 रुपए देकर कहा, जाओ और सत्य का व्यापार करके आना जिसमें लाभ हो। तथा गुरु जी ने कहा, पिताजी अब आप देखेंगे मेरा व्यापार कैसा उत्तम है। आप जी भाई बालाजी के साथ ईश्वर का गुणगान करते चले जा रहे थे। कुछ कोस दूर जाकर आपने साधुओं की मंडली देखी, जिन्हें देखते ही आप जी ने भाई बालाजी से कहा, मुझे तो यहाँ खरा सौदा नजर आ रहा है। पिताजी की आज्ञा भी अच्छे व्यापार करने की है, फिर तो इससे उत्तम और खरा व्यापार नहीं है। भाई बालाजी गुरु जी से बोले, कालू जी का स्वभाव तो आपको पता ही है और मैं तो आपका दास हूँ, इसलिए आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। गुरु जी ने उन 20 रुपयों से 7 दिन के भूखे साधुओं को भोजन कराया और घर लौट आए। जब आपके पिताजी को सारी खबर पता चली तो उन्होंने आप जी को बहुत गुस्सा किया। तब किसी तरह बीबी नानकी जी ने अपने भाई को बचाया। राय बुलार के कानों में जब यह खबर पड़ी कि आज गुरु नानक देव जी से कालू जी बहुत नाराज हैं, तो उन्होंने कालू जी को समझाते हुए कहा, इस बालक को साधारण बालक मत समझो, इस पर गुस्सा मत किया करो। इतना कहते ही राय बुलार की आंखें नम हो गई। वास्तव में कालू जी अपने पुत्र को साधारण बालक समझते थे। गुरु जी के परमेश्वर रूप का उनके माता पिता को जरा सा भी आभास नहीं था, जिसके कारण पिता पुत्र से अक्सर परेशान रहते। असल में गुरु जी के पिता उनको एक सफल व्यापारी बनाना चाहते थे, परंतु गुरु जी सदा ईश्वर ध्यान में लीन रहते। बहुत से कामों में आपको व्यस्त रखने की बड़ी कोशिशें की गई। आपकी साखी में दर्ज है कि पिताजी ने आपको एक दिन अपने गाय भैंसे चराने के लिए भेज दिया। आप जी ने उन जानवरों को जंगल में छोड़ दिया और खुद हमेशा की तरह ध्यान अवस्था में चले गए। तभी एक जाट के खेत में घुसकर आपके जानवरों ने उसकी सारी फसलें बर्बाद कर दी। अपने खेत की ऐसी बुरी हालत देखकर उस जाट ने गुरु जी से शिकायत करते हुए कहा कि तुम्हारे जानवरों ने तो मेरा सारा खेत ही नष्ट कर दिया, इसलिए इसका अब हर्जाना भरना पड़ेगा, और कुछ अपशब्द कहने लगा। तब गुरु जी बोले, अगर किसी भूखे जानवर ने कुछ खा भी लिया है तो गुस्सा मत करो, परमात्मा इसमें भी तुम्हारी उन्नति करेगा। परंतु जाट अपनी बात पर अड़ा रहा और गुरु जी को लेकर वे हाकिम राय बुलार के पास चला गया। तब राय बुलार ने उनके पिता कालू जी को कहा कि आप अपने पुत्र को समझाएं। उसी समय गुरुजी ने जाट से कहा, तुम्हारी खेती तो ज्यों की त्यों है, तुम्हारा कोई नुकसान ही नहीं हुआ, नहीं यकीन तो खुद जाकर देखाओ। जब खेत में जाकर देखा गया तो फसलें बिल्कुल सही सलामत पाई। ऐसा दृश्य देखकर सभी चकित रह गए और जाट सभी के सामने झूठा साबित हुआ। इतिहास में यह भी दर्ज है कि एक बार आप जी अपने जानवरों को जंगल में छोड़कर खुद एक वृक्ष के नीचे लेट गए, तब आपकी आंख लग गई। आप जी के मुख पर धूप पड़ने से पसीने की बूंदें चमकने लगी। तब एक चमत्कार हुआ। कुदरती रूप से हाकिम राय बुलार वहीं से गुजर रहे थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि गुरु नानक देव जी के सिर पर शेषनाग ने खड़े होकर अपने फन फैलाकर उन पर छाया कर दी। यह सारा प्रसंग उसने कालू जी को सुनाया और हिदायत देते हुए कहा, कभी भी इस बालक पर क्रोध मत करना। आपका बालक एक महान शख्सियत का स्वामी है और एक दिव्य रूप है, तथा संसार के जीवों के माया रूपी बंधन तोड़ने के लिए ही तुम्हारे घर जन्म लिया है। सन 1475 ईस्वी में आप जी की बहन बीबी नानकी जी का विवाह सुल्तानपुर के निवासी जयराम जी से किया गया। कुछ समय बाद पिता कालू जी के बुलाने पर बीबी नानकी जी अपने पति जयराम जी के साथ जब अपने मायके आईं, तो राय बुलार ने जयराम जी से कहा कि तुम अपने साले यानी गुरु जी को अपने साथ सुल्तानपुर ले जाएं, क्योंकि कालू जी अपने पुत्र को हमेशा डांटते रहते हैं और यह उनसे देखा नहीं जाता। कहते हैं कुछ समय बाद कालू जी और माता जी ने अपने पुत्र को सुल्तानपुर भेज दिया। उन्हें उम्मीद थी कि शायद अपनी बहन के घर जाकर उनका बेटा किसी काम में व्यस्त हो जाए। गुरु जी बीबी नानकी जी के घर ही रहने लगे और जीजा जयराम जी ने जहाँ वे खुद नौकरी करते थे उसी मोदी खाने में गुरु नानक देव जी को नवाब दौलत खान के पास नौकरी दिलवा दी। वहाँ गुरु जी आय व्यय का हिसाब देखा करते और सौदा तोला करते। अगर कोई जरूरतमंद मांगने आता तो कभी उसे खाली हाथ ना भेजते। पिता कालू जी यह जानकर संतुष्ट हो गए कि अब उनका पुत्र काम में व्यस्त हो गया है। मोदी खाने का मालिक नवाब दौलत खान अगर गुरु जी को 5 सेर अनाज तोलने के लिए कहता तो गुरु जी 5.25 सेर देकर भेजते। इस तरह आप जी जरूरतमंदों को अनाज देकर झोलियां भरते। भिखारी और गरीब लोग मोदी खाने के आसपास ही भीड़ लगाकर खड़े रहते। कहते हैं जिन पत्थरों से आप 13-13 कहकर अनाज तोलते थे, वह पावन पत्थर आज भी सुल्तानपुर के मोदी खाने में मौजूद हैं, जहां पर गुरुद्वारा श्री हट साहिब स्थित है। गुरु जी 13-13 प्रभु को संबोधित करते हुए अनाज तोला करते थे। कहते हैं कुछ नीच आचरण के लोगों ने जयराम जी से चुगली करते हुए कहा, तुम्हारा साला सारा मोदी खाना गरीबों में लुटा रहा है, जो कल को तुम्हारी बेइज्जती का कारण भी बन सकता है। तब जयराम जी ने परेशान होकर सारी बात अपनी पत्नी बीबी नानकी जी को बताई तो वे मुस्कुराते हुए अपने पति को कहने लगी कि जैसे उस परमात्मा का ज्ञान सबसे पहले इंद्र देवता को हुआ था और फिर सारे संसार में ईश्वरीय ज्ञान फैला, ठीक उसी तरह श्री गुरु नानक देव जी महाराज का परिचय सबसे पहले मुझे प्राप्त हुआ। इसलिए हे स्वामी, आप व्यर्थ की चिंता ना करें और आप मेरे भाई को साधारण मनुष्य समझने की भूल ना करें। वे तो साक्षात ब्रह्म ज्योति हैं, जो संसार के कल्याण के लिए ही प्रगट

0: प्रकट हुए हैं, जिनकी लक्ष्मी दासी है, यह मैं सत्य कहती हूँ। इतना कहकर वे चुप हो गई। बीबी नानकी जी ने अपने भाई श्री गुरु नानक देव जी को अपने घर पर बुलाया। जब उन्होंने सुना कि उनके भाई आ रहे हैं, तो वे उनका स्वागत करने के लिए द्वार पर खड़ी हो गई। अपने भाई श्री गुरु नानक देव जी को बड़े सम्मान से आसन पर बिठाया। तब गुरु जी ने पूछा कि आपने मुझे क्यों बुलाया है, तो वे बोली आपके दर्शन करना चाहती थी। इस पर उन्होंने कहा मुझे पता है आप मुझसे मोदी खाने के आए व्यय पूछना चाहते हो, क्योंकि मैं जानता हूँ किसी ने मेरी शिकायत नवाब से की है और नवाब के साथ मेरा हिसाब किताब हो चुका है, बल्कि नवाब ने मुझे 137 रुपए देने हैं। गुरुजी कहने लगे कि अब वे मोदी खाने का काम छोड़ रहे हैं और आपसे भी बहन हम जुदा हो रहे हैं, यह हमारी और तुम्हारी आखिरी मुलाकात है। इतना सुनते ही बीबी नानकी जी रोने लगी और जयराम जी ने तब कहा कि मैं भ्रम में था, परंतु आज मैंने आपके सत्य रूप को जान लिया है, इसलिए आप हमें क्षमा करें। भाई बालाजी ने गुरुजी के आगे विनती की कि वे उनसे नाराज ना हों और कहीं ना जाएं। कहते हैं तब गुरुजी ने भाई बालाजी की बात स्वीकार कर ली और वे वहीं रुक गए। इतिहास में दर्ज है कि जादो राव नाम का व्यक्ति मोदी खाने में ही काम करता था। वह गुरुजी से बिना कारण वैर रखता था। वह मनी मन सोचा करता गुरुजी रिश्वत के रूप में एक पैसा भी उसे नहीं देते, बल्कि दूसरी तरफ गरीबों व मांगने वालों को दान देते रहते थे। इस कारण उसने नवाब दौलत खान से चुगली करते हुए कहा कि श्री गुरु नानक देव जी मोदी खाना गरीबों में लुटा रहे हैं। मालिक के कहे अनुसार जादोराव ने गुरु जी के हिसाब का 5 दिन तक निरीक्षण किया, किंतु हिसाब में कोई गड़बड़ ना निकली, बल्कि मोदी खाने के मालिक को गुरु जी को 321 रुपए देने बाकी थे। जब जादोराव ने मालिक को बताया कि गुरु जी के हिसाब में कोई गड़बड़ नहीं है, तो उसने गुरु जी को सम्मान सहित 321 रुपए के साथ 300 रुपए और दिए। इस बात की खबर जब बीवी नानकी जी के कानों में पड़ी, तो वे अपने भाई के प्रशंसा सुनकर अत्यंत खुश हुई। कहते हैं गुरु जी की आयु 16 वर्ष होने पर पटवारी मूले की पुत्री सुलखनी देवी जी के साथ बटाला में गुरु जी का विवाह हो गया। कुछ समय बाद आपके घर में 2 पुत्रों ने जन्म लिया, बाबा श्रीचंद और बाबा लक्ष्मीदास जी। विवाह के बाद आप जी कई वर्ष सुल्तानपुर में ही रहे। कहते हैं गुरुजी सारा दिन मोदी खाने का कामकाज देखते और रात्रि के आखिरी पहर होते ही कालीबेई नदी में स्नान करके बेरी के पेड़ के नीचे ईश्वर ध्यान में लीन हो जाते। यही दिनचर्या थी आपकी। आजकल सुल्तानपुर का वही स्थान गुरुद्वारा श्री बेर साहिब कहलाता है। बड़ी महानता है उस गुरु घर की, जहां जाकर माथा टेक कर संगत को अपने सतगुरु की अनुभूति होती है। कहते हैं गुरु नानक देव जी ने रोज की तरह कालीबेई नदी में स्नान करने के लिए एक दिन डुबकी लगाई, तो देखते ही देखते वे अलोप हो गए। यह खबर पूरे शहर में फैल गई। जब आप बाहर ना निकले, तो सभी ने यह मान लिया कि गुरुजी नदी में डूब गए हैं। परंतु आपकी बहन का विश्वास अटल था, वह जानती थी कि उसका भाई सुरक्षित है। तब वहां एक चमत्कार हुआ। गुरुजी नदी से तीसरे दिन बाहर निकल आए और मूल मंत्र का उच्चारण करने लगे। सुल्तानपुर वासी आप जी को सही सलामत देकर हैरान हो गए कि कोई साधारण मनुष्य तो जल में 3 दिन रहकर जीवित नहीं बाहर आ सकता। इतिहास में उल्लेख किया गया है कि आप जी ने जपजी साहिब की रचना सुल्तानपुर के बेरी के पेड़ के नीचे ही बैठकर की थी। इस घटना के बाद गुरु जी को गृहस्थ के प्रति परम वैराग्य हो गया था। गुरु जी ने बीबी नानकी जी को कहा, बहन अब हम जा रहे हैं। तब वे बोली, अब मैं आपके दर्शन कैसे करूंगी? तो गुरुजी ने कहा, जिस समय तुम हमें याद करोगे, हम उसी क्षण हाजिर हो जाएंगे। अपने माता पिताजी को आप जी ने बताया कि निरंकार ने उन्हें धरती पर सारे मनुष्यों को एक परमात्मा से जोड़ने के लिए और सभी धर्मों के लोगों को एक सूत्र में बांधने के लिए ही भेजा है। इसलिए देश विदेश जाकर सभी मनुष्यों के कल्याण के लिए और ईश्वर का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। उन सभी को मेरी बहुत जरूरत है। तब आप जी ने अपने माता पिताजी की आज्ञा लेकर भाई मर्दाना जी को अपने साथ लिया और संतों वाला वेश धारण करके चल पड़े यात्राएं करने। सबसे पहली आपकी उदासी यानी यात्रा भाई लालो जी के घर से आरंभ हुई थी। जैसे कहते हैं कि युगों युगों से प्रभु अपने भक्तों के वश होते आए हैं। गुरुजी दिलों की जानने वाले थे। उन्हें पता था कि भाई लालो जिसके साथ पिछले युगों से रिश्ता है, जब उसने प्रेम से गुरुजी को याद किया तो गुरुजी उसी के घर भाई मर्दाना जी के साथ हाजिर हो गए। बड़े प्रेम और सम्मान के साथ भाई लालो ने आप जी का सत्कार किया। कहते हैं आप जी अपने भक्त के प्रेम में वशीभूत होकर एक महीना उसके घर ठहरे थे। उसी समय के दौरान मलिक भागो जो उसी शहर में रहता था, उसने अपने घर ब्रह्म भोज का आयोजन किया। सभी हिंदू ब्राह्मणों को उसने निमंत्रण भेजा। जब उसे पता चला कि श्री गुरु नानक देव जी जो कि खत्री हैं और भाई लालो के घर ठहरे हुए हैं, इसलिए गुरु जी को भी उसने ब्रह्म भोज में बुलावा भेजा। परंतु गुरु जी ने मलिक भागो के सेवक को उस यज्ञ में जाने से मना कर दिया, क्योंकि वे मलिक भागो को नहीं जानते थे। सेवक ने आकर मलिक भागो को निंदात्मक रूप से कहा कि नानक निरंकारी तो खत्री का पुत्र होते हुए भी शूद्र लालो के घर भोजन करता है, परंतु आपके महान यज्ञ में आना उचित नहीं समझा उसने। मलिक भागो के आत्मसम्मान पर ठेस पहुंची और उसने तुरंत कुछ सेवकों को गुरु जी को जबरदस्ती ब्रह्म भोज में लाने के लिए भेज दिया। कहते हैं तब गुरु जी ने भाई लालो को अपने साथ लिया और महान लीला प्रकट करने के लिए चल पड़े। मलिक भागो ने गुरु जी के आने पर नाराजगी जाहिर करते हुए पूछा, आप तो खत्री पुत्र हैं, फिर भी आप शूद्र लालो के घर भोजन कर सकते हैं, परंतु मेरे घर में बना ब्रह्म भोज स्वीकार नहीं, ऐसा क्यों? गुरु जी उसकी बात सुनते हुए बोले, भाई जिस काम के लिए बुलाया है तो फिर वही करो। तब उसने गुरु जी के आगे तरह तरह के ढेर पकवान परोस दिए। आप जी ने भाई लालो के हाथ से उसके घर की रोटी अपने एक हाथ में पकड़ी और दूसरी हाथ में मलिक भागो की पूरी कचौरी। दोनों हाथों को जोर से दबाया तो लालो वाली रोटी से दूध की धार बहने लगी, परंतु मलिक भागो की रोटी को दबाने से खून की धार बहने लगी। ऐसा चमत्कार देखकर सारे पंडित और लोग हैरान हो गए। तब आपने भागो को कहा, तुमने गरीबों के खून का ब्रह्म भोज आयोजित किया है और हमें भी वही भोजन कराना चाहते थे, जबकि इस गरीब लालो के घर हर रोज ब्रह्म भोज हो रहा है। ऐसे वचन सुनकर मलिक भागो की एक ना चली, भरी सभा में वह शर्मसार हो गया। फिर आप भाई लालो के घर से चलकर देश विदेश की यात्राओं पर निकल पड़े। उस समय लोग भ्रमित होकर अंधविश्वासों और पाखंडों में फंसते जा रहे थे। लोगों की ऐसी बुरी हालत देखकर गुरुजी धर्म स्थानों तीर्थ स्थानों पर जाकर वहां के पंडितों मौलवियों काजियों को सच का संदेश देकर एक ईश्वर की भक्ति पर जोर दिया करते। आप जी ने भारत अफगानिस्तान अरब के देशों में भ्रमण किया। हर स्थान पर जाकर आप संगत करते, हर कोई आपके वचनों से प्रभावित होता, चाहे वह व्यक्ति किसी भी धर्म जाति से संबंधित हो। आप जी ने आपस में वैर विरोध खत्म करने के लिए संगत और पंगत की परंपरा चलाई। लंगर की प्रथा आप जी के द्वारा शुरू की गई, जिसमें हर जाति के लोग अमीर हो या गरीब एक साथ बैठकर भोजन करते। चाहे कोई मौलवी हो, पंडित हो या साधु हो, आपकी बातों से बिल्कुल सहमत होते। आप जी ने मानवता को संदेश दिया कि रथ करो यानी जीवन जीने के लिए अपने हाथों से मेहनत करके धन कमाओ, नाम जपो यानी एक प्रभु का सिमरन करो और वंड छको यानी सभी के साथ मिल बांट कर खाओ। कहते हैं आप जिन्हें कई वर्षों तक अपनी यात्राएं की और फिर आप अपने जीवन के 18 वर्ष पाकिस्तान करतारपुर में अपने परिवार के साथ बस गए, जहां आप खेती बाड़ी किया करते, हल चलाते और नाम जपते। आप जिन्हें 1539 ईस्वी में अपने प्रिय शिष्य भाई लहना जी को सिखों का दूसरा गुरु घोषित करके नाम दिया गुरु अंगद देव जी। आप जिन्हें अपने दोनों बेटों को गुरुगद्दी का वारिस ना बनाकर बल्कि भाई लहना जी को इस योग्य समझा। आप जी सितंबर 1539 ईस्वी को करतारपुर में ज्योति जोत समाए। वह स्थान गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब कहलाता है, जिसको श्री करतारपुर साहिब भी कहा जाता है। यह पाकिस्तान में स्थित है। आप जी के शरीर त्यागने के बाद हिंदू मुसलमान संगतों ने आपकी देह से जब चादर हटाई तो आपका वहां कोई अवशेष ना पाकर वे दंग रह गए। दोनों धर्मों के लोग तब आपकी देह का अपने अपने धर्म अनुसार अंतिम संस्कार करना चाहते थे, क्योंकि हिंदू उन्हें अपना संत पुरुष मानते और मुसलमान उन्हें अपना पीर मानते थे। इसलिए कहते हैं तब दोनों गुटों ने गुरु जी की चादर आदि आदि बांट ली और अपनी अपनी रीति अनुसार आप जी का अंतिम संस्कार किया। गुरु जी के उपदेश सभी को बहुत प्रभावित करते। आप जी की बातें, शिक्षाएं दोनों धर्मों के लोगों को अच्छी लगती, तभी सब लोग आपसे प्रभावित होते थे, क्योंकि आप जी की भक्ति का स्वरूप दोनों धर्मों को कबूल था। ऐसे थे श्री गुरु नानक देव जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सरबत दपला। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।
1: दोस्तों, आप सुन रहे थे गुरु नानक देव जी की जीवन गाथा। ऐसे ही और भी जानकारियां प्राप्त करने के लिए सुनते रहिए रेडियो टाइम टेबल 90.8 FM झाबुआ की आवाज आरजे भावना के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो टेंटाविल 90.8 FM झाबुआ की आवाज आरजे भावना के साथ। आज हम जिनकी बायोग्राफी जानेंगे उनका नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। जी हाँ दोस्तों, जिन्हें हम डॉक्टर B.R. अंबेडकर या बाबा साहब के नाम से भी जानते हैं। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें उनके लाखों प्रशंसक स्नेह पूर्वक बाबा साहब नाम से बुलाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन काल में अधिक से अधिक मुसीबतों का सामना किया है। डॉक्टर अंबेडकर जी स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में सामने आए। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ और उनके पिता का नाम रामजी मालोजी संखपाल और माता का नाम भीमाबाई था। सुनते रहिए रेडियो टेंटाविल 90.8 FM झाबुआ की आवाज आरजे भावना के साथ।
2: आधुनिक भारत के इतिहास को जिन लोगों ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया उनमें एक अहम नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का भी है। बाबा साहिब के नाम से मशहूर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देश में दबे कुचले वर्गों को बराबरी दिलाने, देश में समतामूलक समाज की स्थापना करने और कानूनी तौर पर लोगों को सक्षम बनाने के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे। अंबेडकर ने दलितों को एहसास दिलाया कि जिस जमीन पर वो रहते हैं उसमें उनका भी हक है, जिस आसमान के नीचे वो सोते हैं उसमें उनकी भी हिस्सेदारी है। यही अंबेडकर का सबसे बड़ा कारनामा है।
3: उनके पिताजी फौज में थे तो फौज के जीवन में ऐसा कोई जातिभेद उनको झेलना नहीं पड़ता था, और फिर जब उनको एहसास हुआ, जो एक यात्रा के बारे में लिखते हैं, वो पिताजी ने उन लोगों को बुलाया था, तीन भाइयों को, जिन दिक्कतों को, तो मतलब एक प्रतिक्रिया ये हो सकती थी कि घृणा से मनुष्य का मन भर जाता, लेकिन उन्होंने घृणा के जड़ों तक जाने की कोशिश की और जो जातिवाद है, जो धर्म के साथ धर्म और रूढ़ियां, ये भारतीय मानस को कितना जकड़ी हुई है, उसके बारे में उन्होंने गंभीरता से सोचा और एक नया रास्ता उन्होंने दिया हम लोगों को।
2: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में जन्मे थे। वो इंदौर जिले के एक छोटे से कस्बे महू में रहने वाले रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई की 14वीं और सबसे छोटी संतान थे। बचपन बेहद परेशानियों में गुजरा। सिर पर गरीबी और एक अछूत जाति महार में जन्मने का बोझ सिर पर उठाए अंबेडकर स्कूल पहुंचे। अपने भाइयों और बहनों में केवल अंबेडकर ही स्कूल की परीक्षा में सफल हुए और उन्होंने बड़े स्कूल में दाखिला पाया। अंबेडकर मुंबई के गवर्नमेंट हाई स्कूल एल्फिनस्टोन रोड के पहले दलित छात्र थे।
4: पाठशाला दूर थी, वहाँ वो हॉस्टल में रहते थे और घर जा रहे थे तो पैदल ही निकले थे। छोटे छोटे बच्चे थे, चौथी पांचवी में पढ़ने वाले, वो उनके भाई पैदल निकले थे। बीच में एक गाड़ी, बैलगाड़ी जा रही थी, तो बैलगाड़ी वाले को दया आई कि ये छोटे से बच्चे जो है इनको मैं गाड़ी में बिठा लेता हूँ। तो उसने गाड़ी में बिठा लिया और थोड़ी देर के बाद वो पूछने लगा कि तुम किस जाति के हो। तो जैसे ही भीमराव अम्बेडकर ने और उनके भाई ने बताया कि हम महार जाति के हैं, महार नाम सुनते ही वो गाड़ी वाला गाड़ी रोक कर गाड़ी से उतर गया।
2: बाबा साहिब ने 1907 में मैट्रिक परीक्षा पास की। इसके बाद वो बंबई विश्वविद्यालय पहुंचे और भारत के किसी भी कॉलेज में दाखिला पाने वाले वो पहले व्यक्ति थे जिस पर अछूत होने का तमगा लगा हुआ था। इस दौरान उनकी जिंदगी में दुत्कार, जातीय अपमान और जिंदा रहने की जद्दोजहद के सिवा कुछ नहीं था। पढ़ाई में तेज होने के बावजूद उन्हें स्कूल में कभी दूसरे बच्चों के बराबर नहीं समझा गया। दूसरे अछूत बच्चों की तरह क्लास में अलग बिठाया जाता। स्कूल में पानी पीना तो दूर, पानी का बर्तन छूने तक की इजाजत नहीं थी। ना कोई टीचर उन पर ध्यान देता और ना ही कोई उनकी मदद करता।
4: डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जब स्कूल में पढ़ते थे तो उनके साथ और उनके भाइयों के साथ अस्पृश्यता का, बहुत भेदभाव का बहुत उन्हें अनुभव हुआ। पाठशाला में वो सबसे पीछे उन्हें बैठना पड़ता था, सभी बच्चों से सबसे पीछे वाली रूम में बैठना पड़ता था और टीचर जो पढ़ाते थे तो वो भी उन्हें स्पर्श नहीं करते थे।
2: उनकी प्रतिभा को देखते हुए बड़ौदा के शासक सयाजीराव गायकवाड़ ने अमेरिका में पढ़ने के लिए 25 रुपए महीना का वजीफा दिया। 1912 में उन्होंने राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में अपनी डिग्री प्राप्त की। 1916 में उन्होंने पीएचडी किया। इसके बाद 1923 में डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री से नवाजे गए। अब तक अंबेडकर काफी मशहूर हो चुके थे। 1926 में उन्हें बंबई विधान परिषद के लिए मनोनीत किया गया। अब अंबेडकर सिर्फ राजनीति तक सीमित होकर नहीं रहना चाहते थे।
5: बम्बई विधान परिषद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संसदीय राजनीति की पाठशाला बनी। इसी के बाद वो समाज में गैर बराबरी के खिलाफ हुए संघर्ष में शामिल हुए। उन्होंने छुआछूत के खिलाफ अनूठा अभियान चलाया।
2: अंबेडकर समाज में बराबरी लाने के संघर्ष में शामिल हो गए। 1927 में डॉक्टर अंबेडकर ने छुआछूत के खिलाफ व्यापक आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने पेयजल के सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी लोगों के लिए खुलवाने, अछूतों को हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन किए। इस दौरान उन्होंने मुख्य धारा के राजनीतिक दलों के बीच जाति व्यवस्था के उन्मूलन को लेकर उदासीनता की कड़ी आलोचना की।
3: 1920 में जब वो लौट के आए थे तो शाहू महाराज थे महाराष्ट्र में, उन्होंने बाकायदा कहा था कि दलितों, माणगांव सम्मेलन हुआ था 1920 का, कि दलितों तुम्हें अपना नेता मिल गया, क्योंकि इतना पढ़ा लिखा आदमी दलितों के बीच पहली शख्सियत थे वो, तो एक अच्छा जीवन बिता सकते थे। और उन्होंने लगातार राजनीतिक सामाजिक तौर पर सक्रिय रहे वो, उन्होंने ये, और एक बड़ा उनके जीवन का जो पहला अहम संघर्ष जो हम लोग देख सकते हैं महाड़ सत्याग्रह का,

0: कि शोषित वर्ग की सुरक्षा सरकार और कांग्रेस से आजादी पाने में है। उन्होंने कहा कि हमें अपना रास्ता खुद बनाना होगा। राजनीतिक शक्ति शोषितों की समस्या का निवारण नहीं हो सकती, उनका उद्धार समाज में उनका उचित स्थान पाने में निहित है। 24 सितंबर 1932 को उन्होंने गांधी जी के साथ पूना समझौता किया। इसके तहत विधान मंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित स्थान बढ़ा दिए गए।
1: दलितों को मंदिर प्रवेश केवल एक नागरिक होने का अधिकार तो जरूर चाहिए, लेकिन मंदिर प्रवेश ही हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तब उन्होंने आर्थिक सवालों की तरफ अपना रुख बदला कि दलितों को आर्थिक जो स्थिति है उनकी, जो सबसे पिछड़े हुए हैं आर्थिक रूप से, क्योंकि उनके पास अपना ऐसा कोई काम नहीं है कि जिससे कि उनकी आय बढ़े।
0: देश आजाद हुआ तो अंबेडकर कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में देश के पहले कानून मंत्री बने। 29 अगस्त 1947 को उन्हें स्वतंत्र भारत का नया संविधान लिखने के लिए बनी संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। अंबेडकर आजीवन सांप्रदायिक राजनीति के घोर आलोचक बने रहे। 1956 में उन्होंने हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया। 1951 में उन्होंने संसद में हिंदू कोड बिल पेश किया। इस बिल का विरोध होने पर उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। 6 दिसंबर 1956 को उन्होंने इस दुनिया में आखिरी सांस ली। उनके निधन पर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय हिंदू समाज के तमाम अत्याचारी स्वरूपों के खिलाफ एक विद्रोह के प्रतीक के रूप में याद किया जाएगा।
2: पहले के जो समाज सुधारक थे, मतलब तो वो मुख्यतः हिंदू धर्म के अंदर सुधार की बात करते थे, उनको लगता था, लेकिन उनको उन्होंने महसूस किया कि जब तक जाति उनका उन्मूलन नहीं होगा तब तक ये गुलामी कैसे मिट सकती है। मतलब सिर्फ कोई रिपेयरिंग की बात उन्होंने नहीं की, जातियों का उन्मूलन करना होगा। उसमें साथ साथ उन्होंने कहा कि जातियों का उन्मूलन, जाति का सवाल धर्म से भी जुड़ा हुआ है, तो जाति भेद का उन्मूलन में वो कहते हैं कि धर्म पर भी जो धर्मशास्त्र की किताबें हैं हमें उन पर भी सवाल उठाने होंगे।
0: अंबेडकर ज्ञान का सागर थे। उन्होंने राजनीति, अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान, धर्म, समाज शास्त्र और कानून पर कई किताबें लिखी। उन्होंने दलित समाज से कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2012 में हुए एक टीवी सर्वे में उन्हें महानतम भारतीय चुना गया। अंबेडकर अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके आदर्श और शिक्षाएं देश की आने वाली पीढ़ियों को लाभान्वित करते रहेंगे।
3: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर न सिर्फ समतामूलक समाज के पैरोकार हैं, बल्कि धर्म निरपेक्षता और धर्म की बराबरी के समर्थक भी हैं। वो मनु की बताई सामाजिक व्यवस्था का विद्रोह करते हैं। वो दलितों को सिर्फ समानता के अधिकार तक ही सीमित नहीं रखते, बल्कि उनमें चेतना और जागृति का संचार भी करते हैं।
4: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत में सामाजिक एकता, समरसता और धर्म निरपेक्षता के बड़े पैरोकार माने जाते हैं। जातीय व्यवस्था की बुराइयां झेलकर बड़े हुए अंबेडकर आजीवन लोगों को इन बुराइयों से मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष करते रहे। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म में ब्राह्मणवाद का विरोध किया, साथ ही दूसरे धर्मों की कट्टरता को देश के लिए खतरा बताया। वो देश में दलित और दूसरे अल्पसंख्यक समूहों की परेशानियों में समानताएं देखते थे और अक्सर साझा संघर्ष की बात भी कहते थे।
2: जाति को लेकर के, वर्ण व्यवस्था को लेकर के, हिंदू धर्म को लेकर के कई सारा किताबें उन्होंने लिखी हैं, मतलब अगर एक 50 किताबें उन्होंने लिखी चीजों को लेकर के। और लेकिन उनका विचार सिर्फ धर्म को लेकर के, जाति को लेकर के नहीं था, उन्होंने कानून को लेकर के भी लिखा, इसीलिए संविधान बनाने में उनका योगदान था। एक आर्थिक नजरिया उनका था, ये था तो एक पूरा एक व्यापक दृष्टिकोण भारतीय समाज के बारे में था उनका।
4: भारत में जातीय व्यवस्था की बुराइयों पर डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि बेकसूरों पर बेरहमी और अत्याचारों को रोकना ही दलितों की मूल समस्या है। डॉक्टर अंबेडकर ने जातीय व्यवस्था के विरोध में हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन मैं किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अगर अछूत भी बना हूँ तो भी ऐसी

0: कोई उपलब्धि नहीं है जो मैं प्राप्त नहीं कर सकता। मैं केवल अपने आध्यात्मिक नजरिए के कारण धर्म परिवर्तन कर रहा हूँ।
1: उस समय सभी अस्पृश्य हिंदू ही थे, लेकिन हिंदू होने के बावजूद भी उन्हें मंदिरों में प्रवेश नहीं था। तो मंदिर प्रवेश का अधिकार होना चाहिए, एक नागरिक के तौर पर होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने कालाराम मंदिर का, नासिक के कालाराम मंदिर का सत्याग्रह किया।
2: उनको लग रहा था ये कि हिंदू धर्म के अंदर एक ऐसी भावना पनपेगी लोगों के अंदर कि वो लोग खुद सुधार हो जाएगा, लेकिन बाद में वो इस बात को लेकर के थोड़े निराश हुए। उनको लगा कि हिंदू धर्म में जो बर्बरताएं हैं, जो दिक्कतें हैं, इनका जिस जो रूढ़िवाद मना है, तो उनको उन्होंने येवला सम्मेलन में ऐलान कर दिया था कि मैं हिंदू पैदा भले हुआ था लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं।

0: विकास कर सकता है। अंबेडकर सामाजिक बराबरी के साथ साथ राष्ट्रीयता, धर्म निरपेक्षता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों की पैरवी करते रहे, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अंध राष्ट्रवाद, बहुसंख्यकवाद और धार्मिक राष्ट्र के खतरों से आगाह भी किया। अंबेडकर ने कहा कि धर्म नहीं बल्कि मानवीयता और बराबरी राष्ट्र की बुनियाद है।
1: तो एक बड़ी बात जो उन्होंने जो झकझोरने वाली बात जो कही थी समाज को, जाति को लेकर के, क्योंकि बिना धर्म को चुनौती दिए, बिना पितृसत्ता को चुनौती दिए हुए दलितों की मुक्ति नहीं हो सकती है, और रीजन रैशनैलिटी का रास्ता अपनाए दलितों की मुक्ति नहीं हो सकती है। ये बात उन्होंने एक प्रखर रूप में कही और अंत तक कहते रहे।
0: मानव के अस्तित्व पर भी बाबा साहब ने खुलकर अपने विचार रखे। उनका मानना था कि पैसा और यश कमाना ही मनुष्य के अस्तित्व का अंतिम उद्देश्य नहीं होना चाहिए। वो कहते थे, जैसे ही हम अपने सोच के दायरे को बढ़ाते हैं, वैसे ही अपने सपने को प्राप्त करने की दिशा में भी आगे बढ़ जाते हैं। उनका मानना था कि हर व्यक्ति का जन्म किसी न किसी खास उद्देश्य से हुआ है, जो हम सबको एक दूसरे से विशेष बनाता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ कोशिश करनी चाहिए। बाबा साहब का कहना था कि जीवन लंबा नहीं महान होना चाहिए। जिस तरह विचार नहीं मर सकते, उसी तरह आत्मा भी नश्वर है। उन्होंने कहा कि कोई भी इंसान अमर नहीं है, लेकिन हम अपने पीछे अपने चिंतन, विचार और दर्शन छोड़ सकते हैं, ताकि हमारे विचार आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहें।
2: ४९४७ में जब देश आजाद हुआ, तो सबसे बड़ी चिंता ये थी कि देश किस तरफ आगे बढ़ेगा। इस बात पर तो सहमति थी कि देश का ढांचा लोकतांत्रिक होगा, लेकिन ये लोकतंत्र कैसा होगा ये तय करना मुश्किल था।
3: Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge.
4: ये वो यादगार तस्वीरें हैं जब भारत अंग्रेजी हुकूमत से आजाद हुआ था।
3: India will awake to life and freedom.
4: पूरा देश जश्न में डूबा था, लेकिन नीति निर्माताओं के लिए ये बेहद भागदौड़ वाले दिन थे। संविधान तैयार करना आसान काम नहीं था, लिहाजा इनकी जिम्मेदारी एक ऐसे व्यक्ति को दी गई जो कानूनविद, अर्थशास्त्री के साथ साथ कद्दावर नेता और समाज सुधारक थे, और वो व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 29 अगस्त 1947 को उन्हें संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। 2 साल की अथक मेहनत के बाद आखिरकार संविधान तैयार हुआ और 29 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे मंजूरी दी। अंबेडकर ने इस दौरान आधुनिक लोकतंत्र के मूल्यों को भारतीय लोकतंत्र में लागू करने की कोशिश की।
1: लेकिन मैं समझता हूँ कि संविधान बनाने का जो उनका योगदान है वो तो रेखांकित करना ही होगा, लेकिन उनका जो अपना नजरिया था वो उस पर भी बात हम लोगों को करनी चाहिए। जो संविधान बनाने के पहले उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था राज्य, स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज नाम से, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के वो अध्यक्ष थे, जिसकी तरफ से उन्होंने संविधान समिति को एक मसविदा पेश किया था, जिसमें जो एक विजन वो पेश करते हैं वो विजन पर भी मुझे लगता है कि बात होनी चाहिए।
4: उन्होंने पश्चिमी लोकतांत्रिक मॉडल पर ज्यादा भरोसा जताया। समानता और विविधता उनके राजनीतिक नजरिए का मूल है। अंबेडकर ने जनता के देश की सारी जनता को नागरिक के बतौर बराबर अधिकार देने की पैरोकारी की, और देश में पहली बार लोगों के भीतर ये एहसास जगा दिया कि वो राज्य की नजर में एक दूसरे के बराबर हैं। अंबेडकर ने भारत को जो नक्शा पेश किया वो आधुनिक लोकतंत्र की बुनियाद पर खड़ा भारत था।
5: दलित या आदिवासी या पिछड़ा समाज या अल्पसंख्यक समाज और महिलाओं को के समान अधिकार का, उन्हें समान अधिकार मिले, क्योंकि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर और लिंग के आधार पर, यहां तक कि क्षेत्र और भाषा के आधार पर भी हम भारत बटा हुआ था। आजाद भारत की हम बात कर रहे हैं।
4: कानून मंत्री के तौर पर भी उन्होंने समानता की पैरोकारी की, और समानता के प्रति उनका नजरिया सिर्फ जातियों को लेकर नहीं था और न ही धर्मों को लेकर, बल्कि वो लैंगिक समानता की भी

0: बड़े पैरोकार थे। हिंदू कोड बिल के जरिए उन्होंने महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने और तलाक का अधिकार देने की वकालत की और आखिरकार कई मुद्दों पर असहमति होते देख उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया।
1: संविधान बनाने का उनका योगदान है तो अहम था ही, लेकिन साथ साथ हिंदू कोड बिल के लिए जो उन्होंने काम किया जिस पर ज्यादा चर्चा नहीं हो पाती और जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया 1951 में नेहरू के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था, जिसमें क्योंकि पहली बार हिंदू स्त्रियों को अधिकार मिल रहा था, क्योंकि बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि आजादी के पहले एक हिंदू पुरुष पर कोई पाबंदी नहीं थी कितनी शादियां कर सकता है, वो 10 शादियां भी कर सकता था, 20 शादियां भी कर सकता था, मुस्लिम से कम 4 शादियों पर पाबंदी थी, तो मोनोगैमी का सवाल ही नहीं था, एकमती पर सवाल ही नहीं था और प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं था।
0: भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर की शख्सियत इतनी विशाल थी कि उनके कई बड़े कामों की चर्चा नहीं हो पाती। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। उनकी किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी पर उन दिनों खूब चर्चा हुई और आखिरकार 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। यही नहीं, अंबेडकर बड़े बांधों की तकनीक के भी जानकार थे और आजाद भारत में उन्होंने दामोदर, हीरा कुंड और सोन नदियों पर बनी परियोजनाओं में अहम भूमिका अदा की। अंबेडकर ने मजदूरों के काम करने की अवधि को कम करने के लिए पूरा जोर लगाया। सातवें भारतीय मजदूर सम्मेलन के दौरान अंबेडकर की कोशिश के बाद ही मजदूरों की काम की अवधि 14 घंटों से कम होकर 8 घंटे हुए। यही नहीं, वो रोजगार और आधुनिक राष्ट्र के बीच गहरा संबंध देखते थे और लगातार मजदूर अधिकार से लेकर बेरोजगारी के सवाल उठाते रहते थे। संविधान को जब अंगीकृत किया गया तो अंबेडकर ने आने वाले दिनों को लेकर कुछ चिंताएं भी जाहिर की।
1: समाजवाद की बातें करते हैं, वो कहते हैं कि उद्योगों को राज्य के नियंत्रण में लेना चाहिए, जमीनों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, राज्य का कोई धर्म नहीं होता है, तमाम सारी ऐसी बातें हैं जो आज की तारीख में लोगों को अपचनीय हो सकती हैं। ऐसी तमाम बातें उन्होंने राज्य और अल्पसंख्यक नामक ग्रंथ में लिखी थी और जो एक उसमें ही वो बहुसंख्यकवाद का खतरा देख रहे थे।
0: भीमराव अंबेडकर लोकतंत्र की मजबूती के लिए दो चीजों को बेहद जरूरी मानते थे, पूंजीवाद और जातिवाद का खात्मा। उन्होंने बाद के दिनों में पूंजीवाद पर भी चोट किया। जानकार मानते हैं कि अंबेडकर के सपनों का भारत और खुद अंबेडकर को जिस तरह आजकल पेश किया जा रहा है वो कई मायनों में आधा अधूरा है।
2: एक संविधान ही ऐसा एक बहुत बड़ा हो सकता है जो कि एक बहुत बड़ी कानून का एक दायरा हो सकता है कि जिससे कि सबके बीच में स्त्री पुरुष और जाति के आधार पर समानता या धर्म के आधार पर सभी समानता, भाईचारा और न्याय हो, सबको बराबर का अधिकार मिले।
0: उन्होंने हाशिए पर छूट गए लोगों के लिए सत्ता में भागीदारी और नीति निर्माण में अनुपातिक जगह की वकालत की। अंबेडकर आखिर तक किसी भी तरह के इंसानी भेदभाव के खिलाफ लड़ते रहे और राजनीतिक समानता के अलावा सामाजिक समानता को हासिल करने के लिए वो लड़ते रहे।
3: दोस्तों, आपने जाना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन के बारे में। आज के लिए बस इतना ही, अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपनी दोस्त आरजे भावना को दीजिए इजाजत। नमस्कार और सुनते रहिए रेडियो टांटा भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज आरजे भावना के साथ।
4: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है नन्हे मुन्नों के लिए कार्यक्रम बाल गीत। सबसे पहले सुनिए ये गीत, शीर्षक है पशु पक्षियों पर आधारित प्यारे प्यारे बाल गीत।

0: कुछ कहानियाँ किताबों में लिखी जाती हैं और कुछ लोगों के चेहरों, उनकी मुस्कुराहटों और उनके संघर्षों में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं जिंदगी अनप्लग्ड ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। दोस्तों, ये वो महफिल है जहाँ गीत सिर्फ बजते नहीं, जिंदगी के पन्ने खुलते हैं। यहाँ हम उन लोगों से मिलते हैं जिन्होंने सपने सिर्फ देखे नहीं, ठोकरें खाई, हौसले संभाले और अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो आइए आज फिर एक जिंदगी से मिलते हैं, गुफ्तगू करते हैं, एक कहानी सुनते हैं और गीतों के साथ महसूस करते हैं जिंदगी अनप्लग्ड। तो चाय की चुस्कियों के साथ, दिल से निकली हुई बातों के साथ शुरू करते हैं जिंदगी अनप्लग्ड, और दिल से स्वागत करते हैं आचार्य राजकुमार बिरला जी का। तो आचार्य राजकुमार बिरला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के जिंदगी अनप्लग्ड प्रोग्राम में। कैसा महसूस कर रहे हैं सर आप?
1: थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लग रहा है कि आज ज्योतिष के ऊपर में कुछ ऑथेंटिक डिस्कशन होगा और इससे हमारे श्रोता और हमारी पब्लिक जो भी सुन रहे हैं उनको लाभ होगा।
0: बिल्कुल सर, हम भी इसीलिए एक्साइटेड हैं क्योंकि आपका एक्सपीरियंस, जैसे अभी मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, आप 20 इयर्स से प्रैक्टिस कर रहे हैं और 1 लाख से ज्यादा कुंडलियां देख चुके हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और मैं आपको जानती हूं तो मैं ये वाउच कर सकती हूं कि जो भी नॉलेज आज हमारे साथ साझा होने वाली है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, 100% है, और हम बहुत एक्साइटेड हैं। चलिए शुरू करते हैं सर आपके सफर से। मैं आपको थोड़ा सा बचपन में ले जाना चाहूंगी, मैं जानना चाहूंगी और हमारे श्रोतागण भी जानना चाहेंगे कि आपका ये सफर शुरू कैसे हुआ, किस तरह से आप ज्योतिष में आए, इस प्रैक्टिस में आए, क्या कोई एक मोमेंट था, एक लम्हा था जिसने आपको पुश किया, या ये आपकी चॉइस थी जैसे जैसे आप बढ़ते गए, जैसे जैसे उम्र होती गई, क्या जर्नी रही सर आपकी?
1: वैसे तो मैं कहूंगा कि ज्योतिष हमेशा उस इंसान को ढूंढती रहती है जो इसकी कदर करता है, और अपने आप ज्योतिषी उस इंसान के अंदर में ये नेचर में या उसकी माइंड में ये थॉट लाती है कि इसकी तरफ उसकी जिज्ञासा, उसका इंटरेस्ट ग्रो होता है। पर मेरे साथ ये उल्टा था
0: जी।
1: 90 से लेके 95 तक का जो मेरा एक 5 साल का एक पीरियड था, ये हमारी लाइफ का एक बहुत टफ पीरियड था। और उस पीरियड के अंदर में इंडिया के टॉप मोस्ट उस समय के जो एस्ट्रोलॉजर थे, मैं नाम नहीं लूंगा, पर आप मान लीजिए कि 95 में एक एक एस्ट्रोलॉजर जिसकी फीस 15 से 20 हजार, 25 हजार रुपए थी, उस सबको हमने कांटेक्ट किया था। कि ये हमारी सोच थी उस समय कि एस्ट्रोलॉजर्स के पास में कोई मैजिक स्टिक होती है और वो उसको घुमाते हैं और घुमाने से सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वो बता देते हैं।
0: राइट।
1: इस सोच के साथ में 5 साल हम भटके। 95 के अंदर में एक परिवर्तन हुआ लाइफ में कि मुझे थोड़ी सी नफरत होने लग गई थी इन लोगों से। और मैं इनको एक्सपोजर करने के लिए कि यार ये लोग करते क्या है, मैं इस थॉट के साथ में मैंने ज्योतिष को सीखना स्टार्ट किया।
0: वाओ।
1: मेरे पापा का एक इसमें बहुत स्ट्रांग कंट्रोल रहा है और वो हमेशा पंचांग देखते रहते थे, तो मुझे लगता था कि बेसिक तो मेरे को यही सिखाएंगे, तो मैंने वहां से शुरुआत करी। और 98 तक मैं बुक वॉर्म था, किताबी कीड़ा की तरीके से आप कह सकते हो कि मैं इस किताब से पढ़ा, उस किताब से पढ़ के मैं सीखता रहा, ये करता रहा। 99 में मुझे ऐसा लगा कि यार इस तरीके से तो ज्योतिष हो नहीं सकती है। कि अगर मैं कुंडली आएगी और मैं किताब खोलूंगा और उसको पढ़ूंगा, फिर मैं प्रिडिक्शन लिखूंगा, तो इससे तो क्लाइंट के ऊपर में या किसी भी तरीके से अगर किसी की मैं कुंडली प्रिडिक्ट कर रहा हूं तो मेरा खुद का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो है
0: जी।
1: 2000 के अंदर में एक गुरुजन से मिलना हुआ और उन्होंने जब मेरी कुंडली, मेरा हाथ देखा तो उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो उन्होंने कहा ये बिजनेस नहीं करेगा, इसको मेरे पास भेज दो, ये ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत अच्छा नाम करेगा। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का। उन्होंने मुझे आईकास्ट में एडमिशन करवाया और वहां से मैंने पढ़ना शुरू किया। तो आईकास्ट में जब पढ़ने जाते हैं तो पहले 6 मंथ जो होते हैं वो बहुत बोरिंग होते हैं। बोरिंग का मतलब क्या होता है, वहां पे गणित होती है, ज्योग्राफी होती है, साइकोलॉजी होती है, मनोविज्ञान होता है, कर्म सिद्धांत होता है। अब एक यंग एज के जिसको हम जेन जी कहते हैं उनको हम ये सब सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए बोलेंगे, यार इस उम्र में आके वापस ये सब्जेक्ट पढ़ो तो उसको बोरिंग लगेगा। बोले यार मैं सीखने तो ज्योतिष आया था और पढ़ ये सब रहा हूँ। तो उस पार्ट को जब मैंने पास आउट किया तब मेरे को लगा कि यार मैं जिस ज्योतिष को मैं सीख रहा था या मैं जो ज्योतिष को समझता था
0: जी,
1: एक्चुअल में वो ज्योतिष है ही नहीं, वो तो एक रोड साइड की जो ज्योतिषी होती है वो है, एक्चुअल ज्योतिष कुछ और है। एक्चुअल ज्योतिष का मकसद है कि आप मानव के शरीर पे पड़ने वाले पंचभूता जो अग्नि वायु पृथ्वी जल आकाश तत्व है उसको उसके कर्म सिद्धांत से कनेक्ट करते हुए उसका पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को आप रीड कर सकते हो और उसके आने वाले फ्यूचर के बारे में उसको गाइड कर सकते हो कि भैया तेरी बॉडी में तेरे नेचर में पर्टिकुलर एलिमेंट कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, इसको तेरे को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है।
0: तो बहुत ही खूबसूरत
1: जी। आयुर्वेद भी यही बोलता है, आयुर्वेद भी ये बोलता है कि इंसान पंचभूता से कनेक्टेड है और एस्ट्रोलॉजी भी एक ही बात कहती है कि यू हैव टू वर्क ऑन योर 5 एलिमेंट्स।
0: बिल्कुल सर। इसको अगर आपने जब शुरुआत की अपने शुरुआती दौर में, तो जब आपने आईकास में पढ़ाई की तो किस तरह से कर्म सिद्धांत को समझाया गया, क्या हमारी भगवद गीता से उसे जोड़ के समझ सकते हैं आप किस तरह से, बिकॉज आप कर्मा यू नो प्योरिफिकेशन पे भी काम करते हैं, आपकी स्पेशलाइजेशन है फाइनेंस बिजनेस लव रिलेशनशिप्स एंड कर्मा पे बहुत फोकस है आपके काम में, तो ये जो आपकी जो फील्ड्स हैं जो आपकी स्पेशलाइजेशन फील्ड्स हैं वो आपने कैसे चूज की और कर्म सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा और इलैबोरेट करेंगे, क्योंकि आई थिंक वो रूट कॉज है, उसी से सब कुछ शुरू होता है और उसी तक जाके सब कुछ खत्म होता है। तो कैसे जो हमारे श्रोता हैं जो अभी हमें सुन रहे हैं वो अगर कुछ भी नहीं करें तो ये अगर कर लें तो शायद जीवन थोड़ा सा और सुधर सकता है, तो अगर कर्म सिद्धांत को थोड़ा इलैबोरेट करें सर और आपकी स्पेशलाइजेशन के बारे में बात करें।
1: देखिये भगवद गीता ही एक बेस है जो हर इंसान को पढ़नी चाहिए अगर उसको अपने कर्मों को एलोब्रेट करना है, उसको अपने कर्मों को समझते हुए इस जीवन का मोटिव पाना है। तो भगवद गीता जिसने नहीं पढ़ी मैं कहूंगा कि उस इंसान ने सिर्फ जो एक थोपी हुई जिंदगी है, मतलब जैसे जन्म मिला, माँ बाप ने बड़ा किया, पढ़ाई करवा दी, शादी करवा दी, बच्चे हुए, वापस उनके बच्चे हुए, बस ये एक जो साइकिल है ये एक थोपा हुआ साइकिल है, उसको बस एक मनुष्य की योनि के निर्णय जी करके वो चलता बनेगा।
0: बिल्कुल।
1: और जिसने भी भगवद गीता को पढ़ करके उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, उसने कर्म समझा कि हर कर्म का एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है, ऐसी हर कर्म का एक एक्शन होता है उसका एक रिएक्शन भी होता है, और हम कहते भी हैं कि कर्मा रिटर्न्स बैक, जिसने जो बोया है वो उसी का पेड़ काटेगा। ठीक है, तो लोग बाग आज छल कपट करके अपने आप को कुछ समय अवधि के लिए अपने आप को खुश कर लेते हैं कि बहुत मैंने पैसा कमा लिया, उसका पैसा मेरे पास आ गया, या मैंने किसी को ऊपर चढ़ते हुए को नीचे गिरा दिया और मैं ऊपर चढ़ गया, तो ये एक समबिंग पीरियड तक होता है। जैसे ही आपके संचित कर्म मतलब क्या, जो कर्म आपने पास्ट लाइफ में किए थे, जो कर्म आप इस लाइफ में कर रहे हो, वह सब आपके संचित कर्मों के अंदर में एड ऑन होते जाते हैं। वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी की जो किताब है उसके अंदर में सारे कर्म लिखे जाते हैं और उनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो हमारी ज्योतिषी भाषा के अंदर में जो जज का ओहदा मिला है शनि को
0: जी,
1: वो उसके रिजल्ट्स देते हैं कि तुमने अच्छा किया है तो तुम अच्छा भुगतोगे और तुमने बुरा किया है तो तुम जन्म में बुरा भी भुगतोगे। तो हम हर इंसान को एक बात बोलता हूँ, तुम दुनिया के हर कैमरे से बच सकते हो, एक कैमरा ऐसा है जो शनि भगवान का है, वो हमेशा तुम्हें देख रहे हैं और वही कर्मों के राजा हैं, वही कर्मों को कंट्रोल करते हैं, वही आपके कर्मों को हमेशा देखते हैं, जस्टिफाई करते हैं कि इसने इच्छित रूप से या अनिच्छित रूप से जो कर्म किया है उसमें इसको क्या रिजल्ट मिलना चाहिए।
0: राइट।
1: अब बात करिए अपने कर्मों की, तो मैं इस कर्म की डेफिनेशन को एक शॉर्ट में, क्योंकि कर्म तो बहुत लंबे जाएंगे क्योंकि ये बहुत डीपली बैठ रहे हैं
0: जी,
1: मतलब आप अगर कुछ चीज सोच भी रहे हैं तो ये भी आपका एक कर्म है, पर ये डीप डीप मैटर हो जाता है। अभी सी बात करते हैं,
0: थॉट भी कर्म है. ओ वाओ,
1: करेक्ट करेक्ट
0: जी जी.
1: अगर आप किसी का बुरा सोच रहे हैं तो आप अपनी एनर्जी को उस इंसान से कनेक्ट कर रहे हैं उसका बुरा करने के लिए.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: अगर आप किसी का पॉजिटिव सोचते हैं, भला सोचते हैं, आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी को किसी का भला करने के लिए सोच रहे हैं तो उसका भला भी होगा, आपका भी भला होगा. तो मेनली जो तीन तरह के जो कर्मों के सिद्धांत बताए हैं, जो वो है संचित कर्म जो हमने पास्ट लाइफ में किए, जिसका घड़ा, जिसका एक मटका लेकर के हम इस जीवन में आए हैं, वो हमको भुगतने भुगतने, उसको दुनिया का कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी उपाय नहीं ठीक कर सकता, वो आपको भुगतने भुगतने. इसके बाद में सेकंड स्टेप में आते हैं क्रियामान कर्म. क्रियामान कर्म क्या? वह कर्म जो आप इस जीवन में करोगे
0: जी,
1: और यही वो कर्म होते हैं जिससे आप जो आपको संचित कर्म मिले हैं उसके रिजल्ट्स को बैलेंस कर सकते हैं, उसके रिजल्ट को कम ज्यादा कर सकते हैं, पर हटा नहीं सकते.
0: अच्छा.
1: अगर आपका एक्सीडेंट लिखा है, एक टाइम पीरियड आ रहा है कि आपको मार्केश की महादशा है, बादकेश की महादशा है और मार्केश का प्रत्यंतर है, तो ये सब चीजें एक इंडिकेट करती है कि कोई ना कोई घात होने वाली है.
0: अच्छा.
1: अब अगर आप क्रियामान कर्म अच्छे कर रहे हैं, आप जैसे सपोज करें महामृत्युंजय के जाप कर रहे हैं, हम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, तो उससे होगा क्या कि एक्सीडेंट तो होगा पर छोटी मोटी खरोच, छोटी मोटी चोट लग करके आप बच जाओगे पर जीवित रहोगे. पर अगर आपको सब चीजें नेगेटिव चल रही है और आप तो कहते हो कुछ नहीं होता ये चीज, और जैसे सामने आपको बोल दिया है रोड पे गड्ढा है, आप कहते हो मेरी तो मेरे पास तो फॉर्च्यूनर गाड़ी है, गड्ढा वड्ढा क्या होगा. अरे भाई, जैसे ही तुम फुल स्पीड में होंगे उस गड्ढे से तुम्हारी स्टेयरिंग बिगड़ेगी और तुम ऑफ द ट्रैक चले जाओगे.
0: एब्सोल्युटली.
1: तो यहाँ पे जो सेकंड जो मेन क्रियामान कर्म है, यही आपके वो कर्म है जो हम आपको गाइड करते हैं, जो एक एस्ट्रोलॉजर आपको गाइड करता है कि आप ऐसे अपनी दिनचर्या को परिवर्तन करो. आपके जीवन में अगर अग्नि तत्व बहुत ज्यादा है तो इस अग्नि तत्व को कम करने के लिए जल तत्व को कैसे आप बढ़ाओगे, इस तरीके से ही हम एनर्जी को बैलेंस करने की बात करते हैं. और इसी के आगे जब हम जाते हैं वो है हमारा प्रारब्ध. वो प्रारब्ध ये है कि हम अपना फ्यूचर बना रहे हैं. अगर मैंने अच्छे कर्म किए हैं और अगर मैं अच्छी सोच लेकर चलता हूं, मैं दीन दुखियों का भला कर रहा हूं, उनका आशीर्वाद ले रहा हूं, तो नेचुरल वो सब दुआएं मेरे जो आगामी कर्म, जो मेरे संचित कर्म जो बनने वाले हैं पास्ट, जो फ्यूचर में आने वाले हैं, वो मेरे को एक अच्छी गोल्डन लाइफ को इंडिकेट करते हैं.
0: राइट.
1: तो हम बहुत बार आपको सुनने में मिलता होगा कि देखो मैं तो इतना भगवान को मानता हूँ, मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, पर मैं इतना दुखी हूँ और वो सामने वाला इंसान कुछ भी नहीं करता है, वो तो भगवान को अगरबत्ती भी नहीं लगाता है और वो ऐश कर रहा है.
0: बिल्कुल, बहुत बार हम ये महसूस करते हैं जी,
1: है ना. तो इसको आप समझे, ये आपके कर्मों का या किसी ग्रह का आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, कोई आपसे पर्सनल ग्लिच नहीं है जो आपको वो नुकसान दे रहा है. यहाँ आपके सब कर्मों का ही एक लेखा जोखा है कि पास जिंदगी में आपने बुरे कर्म किए थे तो भी आप बुरे कर्म भुगत रहे हो. अगर आप अपने कर्मों को चेंज करते हो क्रियामान कर्मों से, तो उनको न्यूट्रलाइज कर सकते हो, उनको बैलेंस कर सकते हो और अपना फ्यूचर, अपना प्रारब्ध बढ़िया बना सकते हो, जो आपको लेटर ऑन मिलता है.
0: जी जी बिल्कुल. इन्हीं बातों से हम आगे और आपसे जानेंगे कि एनर्जीज किस तरह से काम करती हैं. जैसे आपने फाइव एलिमेंट्स की बात करी, तो इस गीत के बाद हम उस पे आएंगे और जानेंगे राजकुमार बिरला जी से. चलिए सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत, जो तुम तोड़ो पिया, फिल्म मीरा.

0: आप बहुत आई थिंक एलिमेंट्स के ऊपर काम करते हैं, जैसे आपने शुरुआती हमारे इंटरव्यू से हमें बताया है, तो मैं एग्जाम्पल से जानना चाहूंगी, जैसे किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का कोई एलिमेंट कम है या ज्यादा है तो आप उसे किस तरह की कुछ रेमेडीज देते हैं, और जो बाय एंड लार्ज लोग हैं जैसे जो हमें सुन रहे हैं, कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं डेली लाइफ में जो लोग कर सकते हैं और अपने एलिमेंट्स को बैलेंस में रख सकते हैं, अगर इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहें।
1: जी क्योंकि मेरा सब्जेक्ट एस्ट्रोलॉजी का है तो मैं आपको एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करके समझाता हूँ कि कैसे। पहले तो हम वेरीफाई करते हैं कि एक्चुअल कॉज क्या है।
0: जी
1: तो जब हमारे पास में किसी पर्सन की कुंडली आती है तो हम उसके पास्ट और प्रेजेंट को उससे मैच करने की कोशिश करते हैं कि हम समझने की कोशिश करते हैं वाकई में जो इसकी कुंडली दिखा रही है वही सच है, या इस इंसान ने अपने आप को बदल लिया, या ये इंसान किसी इन्फ्लुएंस के अंदर में आकर के, जैसे अपन कहते हैं ना कि अगर आपकी जो मित्रता है वो सात्विक लोगों से है तो आप सात्विक नेचर की तरफ बढ़ोगे, अगर आपकी मित्रता तामसिक लोगों से है तो वो आपको तामसिकता की तरफ बढ़ा देंगे। तो हम उसको रूट कॉज निकालने की कोशिश करते हैं कि जो प्रॉब्लम्स वो बता रहा है बाकी नहीं ये उसका चार्ट पे इंडिकेट करता है, या जस्ट ये एक टाइम समिंग पीरियड के लिए है, या इसको कोई पास्ट लाइफ के कोई ऐसे श्राप या ऐसे कोई पाप मिले हैं जो इसको भुगतने। क्योंकि मैं एज ए एस्ट्रोलॉजर उसके कर्मों से अपने आप को कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं उसको समझ रहा हूँ और मैं ही उसको समाधान बता रहा हूँ, तो मैं भी वहां पे कहीं ना कहीं एक कर्ता के रूप में उसकी लाइफ में आ रहा हूँ।
0: बिल्कुल।
1: तो यहाँ मुझे अपनी, जहाँ मुझे अपनी टेंशन होती है उतनी मुझे क्लाइंट की भी होती है कि अगर इसकी लाइफ सुधर गई तो इसका पुण्य मुझे मिलेगा, और अगर इसकी लाइफ में और प्रॉब्लम बढ़ी और इसने ही मुझे दुखी होकर के कुछ गलत बात बोली या कोई, जैसे अपन कहते हैं ना बद्दुआएं देना,
0: बद्दुआ निकली। जी जी,
1: है ना। जैसे आप देखेंगे कि एस्ट्रोलॉजर आपसे इतना चार्ज कर रहे हैं, कोई जना 5 लाख कर रहा है, कोई 10 लाख कर रहा है, मेरे पास में मैजिक स्टिक है, मैं आपकी मैजिक स्टिक से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, और जब वो चीज नहीं होती है तो आपकी निश्चित बात है आपकी बद्दुआ मिलेगी, क्योंकि उस इंसान ने वो 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए कैसे कमाए हैं या कैसे इंतजाम किया ये उसको पता है।
0: ये उसको पता है, बिल्कुल,
1: है ना। तो जब हम एक्चुअली में, जब हम होरोस्कोप में चेक करते हैं कि यार वाकई में ही इसके खुद के कर्म खराब थे और ये सजा भुगत रहा है, तो सबसे पहले तो हम जो कर्म खराब थे उन उन फिल्टर्स को लगा करके उस एरिया को उस इंसान के कर्मों से पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं कि तू जो अपने आप क्रियामान कर्म करेगा इस पर्टिकुलर प्लेनेटरी एलिमेंट्स के साथ में करेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, किसी के कुंडली के अंदर में सूर्य बहुत ज्यादा खराब है, खराब बोले तो इन द सेंस वो पीड़ित है, वो राहु के साथ में है, वो शनि केतु के साथ में है ना, या बहुत ज्यादा उसका जो षटबल है वो वीक हो रहा है, उसकी एनर्जी बहुत डाउन हो रही है, तो ऐसी स्थिति के अंदर में साफ पता चलता है कि इसको कहीं ना कहीं पिता से सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर इसके पिता इसके लिए सपोर्टिव हो जाए, या ये अपने पिता को डेली ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दे, ये अपने पिता को डेली रेस्पेक्ट देना शुरू कर दे और उनके हाथ इसके सर पे आ जाएगा, तो ये इंसान अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट कर ले, ये अपनी लाइफ में सेल्फ कॉन्फिडेंस ग्रो करना शुरू कर देगा, इसका जो स्वाभिमान है वो स्वाभिमान ही रहेगा, वो ईगो में कन्वर्ट नहीं होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि खराब सूर्य का मतलब है ईगो होना। जी,
1: ईगो होना, और ईगो होना मतलब वो इंसान सिर्फ अपनी ईगो मैं शब्द के आगे आके मर जाता है कि मैं ही क्यों करूं, यही मैं हर रिलेशनशिप में, चाहे वो मैरिटल लाइफ हो, चाहे वो बच्चों के साथ में हो, चाहे वो फ्रेंड सर्किल का हो, चाहे ऑफिसर्स के साथ में हो, वहां पे वो मैं की वजह से हर रिलेशनशिप खराब हो रहा है।
0: बिल्कुल।
1: तो हम ऐसी स्थिति में इसको कहते हैं कि भैया अपनी जो सूर्य की एनर्जी है, सूर्य की एनर्जी क्या होगी, अग्नि तत्व है।
0: जी,
1: इस अग्नि तत्व को न्यूट्रलाइज करो, सूर्य को डेली ऑथेंटिक वे में जो एनर्जी से अपनी एनर्जी को उस पानी में डाल करके आप सूर्य को चढ़ाएं और उसको नमन करें, उनको ग्रेटिट्यूड करें, उसके साथ में आप आदित्य हृदय स्तोत्र या सूर्य कवच का पाठ करें, जिससे आप सूर्य भगवान को सिर्फ न सिर्फ जल चढ़ा के ठंडा कर रहे हैं, उनको एपीस भी कर रहे हैं, उनको खुश भी कर रहे हैं कि भाई मैं आपको नमन करता हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास है, आप मेरे जीवन में शीतलता लाना, आप मुझे समझ और सद्बुद्धि देना।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे एलिमेंट्री को पकड़ते हुए हम करते हैं। कोई जना कहता है कि भाई मेरे लाइफ के अंदर में कोई भी चीज स्मूथ नहीं होती है, तो जब जैसे ये वर्ड आता है स्मूथ नहीं होती है, इट मींस कहीं ना कहीं उसके एक लॉन्ग टर्म कार्मिक पैटर्न बिगड़ा हुआ है, उसको जिंदगी में परिश्रम के अलावा उसको सफलता नहीं मिलेगी।
0: जी,
1: और मोस्टली अगर आप देखेंगे तो जैसे भी जितने भी ये लोग हैं जो ये कहते हैं मुझे जिंदगी में स्टेबल सफलता नहीं मिलती है, तो आप देखेंगे इनकी कुंडली के अंदर में सबसे ज्यादा शनि प्लेनेट का एक इन्फ्लुएंस होता है जो उनको बोलता है कि शैने शैने चलो मैं सफलता दूंगा, पर वो उतावलेपन के अंदर में कभी भी शैने शैने नहीं चलते हैं, धीरे धीरे नहीं चलते हैं, वो रातों रात अमीर बनने के लिए चाहते हैं। और जहां पे भी पेशेंस वर्ड का नाम आता है, जहां पे भी पेशेंस की बात होती है कि आप में कितना धैर्य है, वहां पे कनेक्शन हो जाता है शनि से।
0: बिल्कुल।
1: तो हम एक ही बात चेक करते हैं कि भैया तेरे अंदर में पेशेंस कितना है, क्या तू टिक करके बैठने वाला इंसान है या तू चलता फिरता इंसान।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: यही एक सब तरीके हैं जिसमें हर प्लेनेट की एक एनर्जी है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं कि इसकी लाइफ के अंदर में अर्थ एलिमेंट ग्रो करना है कि वाटर एलिमेंट ग्रो करना है कि फायर एलिमेंट ग्रो करना है, एयर एलिमेंट ग्रो करना है कि इसको वाटरी एलिमेंट से कनेक्ट करना है।
0: बिल्कुल,
1: तो पंचभूता को बैलेंस करने की बात।
0: बिल्कुल सर, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने सारी जानकारी हमारे साथ साझा की। सर आगे चलते हैं, क्योंकि हम कुंडली की बात कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष की बात कर रहे हैं, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि आप जो 12 हाउसेज हैं उनके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, मतलब एक बहुत ब्रीफली हमें बता सकें कि फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, ये क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, ताकि हमारे श्रोता जो हमें सुन रहे हैं उन्हें कुछ बेसिक एक नॉलेज पहुंचे कि हाँ कुंडली ये होती है। इलैबोरेटली ऑफकोर्स हम नहीं डिस्कस कर सकते बिकॉज वो बहुत बड़ा एक सागर है जिसमें घुसना बहुत मुश्किल है, बट जस्ट एक बेसिक जो हमें, जो बिल्कुल आज पहली बार ज्योतिष के बारे में सुन रहे हैं उनके लिए अगर हम बताना चाहें कि कुंडली होती क्या है और वो क्या क्या कैरी करती है, तो अगर वो साझा कर सकें। और इसी से मेरा अगला सवाल है कि अगर कुंडली ही सब कुछ है तो फिर हम क्यों बोलते हैं कि आप कर्म करो, कर्म सिद्धांत कहाँ पे बैठता है? इन दोनों में जो कॉन्फ्लिक्ट आया है और जन जन्मांतर से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्री विल बड़ी है या डेस्टिनी बड़ी है, तो आपका इस पे क्या ओपिनियन है वो अगर हमारे साथ साझा करें।
1: जी आपने जो 12 हाउसेस की बात करी है, अगर मैं ये 12 हाउसेस पे आप और मैं अगर एक महीने तक भी अगर डिस्कशन करेंगे तो यह खत्म नहीं होता, क्योंकि ये इतना डीप सब्जेक्ट है। मैं थोड़ा सा शॉर्ट के अंदर मैं कहूंगा कि इन 12 हाउसेस को अगर आपको समझना है तो आपको सबसे पहले चार त्रिकोण को समझना होगा। चार त्रिकोण क्या, जैसे भाव नंबर 1, भाव नंबर 5 और भाव नंबर 9, ये हो गया आपका धर्म त्रिकोण। ठीक है, जब किसी इंसान की कुंडली में धर्म त्रिकोण के जो ये तीन हाउसेस बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, तो ऐसे इंसान अगर अपनी लाइफ को धर्म से संबंधित कामों में, अब धर्म क्या, मैं धर्म ये नहीं है सिर्फ स्पिरिचुअलिज्म। ठीक है, अगर आप एक बिजनेसमैन फैमिली में पैदा हुए हो तो आपका धर्म क्या हुआ, बिजनेस करना, धंधा करना।
0: बिल्कुल।
1: ठीक है, तो यहाँ पे उस धर्म की बात हो रही है, यहाँ सिर्फ एक स्पिरिचुअलिज्म, सिर्फ एक भगवान, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आपका धर्म हाउस एक्टिव है तो आप सुबह से शाम तक सिर्फ अगरबत्ती लेके भगवान के सामने बैठे रहोगे, आपका काम हो जाएगा।
0: बिल्कुल,
1: यहाँ कर्म की बात हो रही है, आपका जो धर्म है वो क्या है, बिजनेस करना। ठीक है, अब जब मैं बात करता हूँ सेकंड त्रिकोण की, उसको कहते हैं हम अर्थ त्रिकोण। अर्थ त्रिकोण मतलब हर चीज का अर्थ, सिर्फ पैसा नहीं। कि मुझे अगर कोई भी मेरे को बात कही गई है, मुझे उसका अर्थ निकालना है, मुझे उसका मतलब निकालना है, मुझे उस अर्थ को अपनी लाइफ में यूटिलाइज करना है। तो ये जो अर्थ त्रिकोण वाला जो होता है, जिसको हम लोग फाइनेंस से कनेक्ट करके, आजकल जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर में इसको फाइनेंस से कनेक्ट कर दिया गया है,
0: जी।
1: वो होता है हमारा 2, 6 और 10 का त्रिकोण।
0: ठीक है,
1: सेकंड हाउस, सिक्स हाउस और 10th हाउस।
0: राइट,
1: तो यहाँ पे हम कहते हैं कि इंसान पैसे के पीछे भागेगा, काम के पीछे भागेगा, धन कमाएगा। पर यहाँ ये सिर्फ ये नहीं है, अर्थ का मतलब है हर जिंदगी के उसका एक मूल तत्व, उसका एक अर्थ समझना जो आपको एज जिम्मेदारी, एक जवाबदारी के रूप में मिला है, उसको आपको एक्टिव करके अपने लाइफ में स्टेबिलिटी लानी।
0: राइट,
1: इसके बाद में थर्ड जो त्रिकोण आता है वो है 3, 7 और 11, थर्ड हाउस, 7th हाउस और 11th। तो ये जो त्रिकोण है इसको कहते हैं काम त्रिकोण।
0: जी,
1: अब जब नाम आता है काम का तो लोगों के दिमाग में एक ही तरफ जाता है काम, काम वासना वाला।
0: जी,
1: ये काम वासना वाला काम नहीं है, ये काम है क्रिया का,
0: जी,
1: आपकी स्किल्स का, आपकी डेडिकेशन का, कि कैसे आप अपनी स्किल्स, अपनी इच्छा पूर्ति मैं कन्वर्ट करती हूँ, कैसे आप साझेदारी या जीवन साथी के साथ काम करते हुए अपनी लाइफ के मोटिव, अपनी इच्छा पूर्ति, अपनी जो आप फुलफिलनेस की बात कर रहे हो उसको, डिजायर को पूरा करते हैं। इसके बाद में हम आते हैं लास्ट फोर्थ जो हमारा त्रिकोण था वो है मोक्ष त्रिकोण। मोक्ष त्रिकोण है 4, 8 और 12 का। अब मोक्ष का मतलब क्या, एक तरीके से आप ये समझते हो कि इस जिंदगी का त्याग, जिंदगी से मोक्ष मिल जाना या मेरी, पर मोक्ष कब मिलता है, जब आपकी इच्छाएं फुलफिल हो जाती है और आपका जीवन से मोह भंग हो जाता है। तो पहला मोह कहाँ से आता है, परिवार से। पहला मोह होता है आपके घर परिवार के हर सदस्य से जिससे आप कनेक्टेड हो, तो वो हो गया आपका फोर्थ हाउस। ठीक है, दूसरा है इस जीवन में जो खोजने आए हो, इस जीवन के अंदर में जो आपकी रिसर्च है और इस जीवन का जो एक आपका एक हिडन मकसद था, वो है आपका 8th हाउस।
0: बिल्कुल।
1: और सबसे लास्ट का जो है 12th हाउस, वो है 12th हाउस मीन्स स्काई, द अनसीन पावर, अनसीन पावर विच यू आर गेटिंग फ्रॉम गॉड और यूनिवर्स। तो जब आप इस 4th हाउस में सबसे ज्यादा एक्टिव हो, 4, 8 और 12 जब आपका सबसे ज्यादा एक्टिव हाउस है इस कुंडली का, तो जिंदगी का मोटिव है कुछ ऐसी रिसर्च, कुछ ऐसा आध्यात्मिक खोज, कुछ ऐसी चीज की खोज करना जो आपसे पहले किसी ने नहीं करी है, आपको करके इस जीवन का मोटिव पूरा करना है। तो पब्लिक क्या है, पब्लिक भटक रही है उस भेड़ चाल में। जैसे मैं कहूं कि एक डॉक्टर का बेटा है, डॉक्टर है, तो वो कहेगा मेरा बेटा भी डॉक्टर बने ताकि वो मेरे हॉस्पिटल को संभाले।
0: बिल्कुल।
1: तो यहाँ वो अपने बेटे को उसके कर्मों से नहीं पकड़ रहा है, वो अपनी एक जिद को थोप रहा है।
0: बिल्कुल।
1: ऐसी स्थिति में वो बच्चा डॉक्टर तो बन जाएगा पर वो अपने आप को अनसेटिस्फाइड फील करेगा। एक समय आने के बाद में उसको वो पाथ बोरिंग लगेगा कि यार मेरी जिंदगी का तो मोटिव ही नहीं है। फिर क्या होता है, जब जब सब कुछ काम हो जाता है तब जाके वो बोलता है यार अब मेरे को धर्म में जाना है, मुझे अपने आप को स्पिरिचुअलिज्म से कनेक्ट करना है। फिर वो आध्यात्मिक योगा मेडिटेशन की तरफ भटकता है, अपनी मस्तिष्क की शांति के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए, कॉन्शियसनेस के लिए, तो वहां जाकर के उसको फिर अपना मोटिव मिलता है। तो हम बाय बर्थ से अगर सपोज करो कि मैं अगर बच्चे को सीधा ये ना कहूं कि तुम्हें हमेशा 4th क्लास का ही लेसन देना है, तुम्हें हमेशा 4th क्लास का ही चैप्टर देना है, मैं इसको ये कहूं कि हर साल तुम्हें एक नया नया क्लास ज्वाइन करना है और नए नए चैप्टर को सीखते हुए अपने आप को आगे बढ़ाना है, और जब तुम ग्रेजुएशन में आ जाओगे तब तुम्हें किस फील्ड में जाना है तुम डिसाइड करो।
0: बिल्कुल।
1: यहाँ हम बाय बर्थ से ही बच्चों को एक ही बात कहते हैं, मैं डॉक्टर तुम भी डॉक्टर बनोगे, मैं इंजीनियर तुम भी इंजीनियर बनोगे, मैं लॉयर तुम भी लॉयर बनोगे।
0: बिल्कुल।
1: वापस ये पॉइंट आकर के कर्मों पर आके बैठ जाता है
0: जी,
1: कि आपकी डेस्टिनी ने, मतलब डेस्टिनी एज ए मदर आपको मिली और मदर डेली आपके सामने थाली लाके रख देती है खाने की कि बेटा खा ले। एक बार मदर हाथ से खिला देगी, दो बार खिला देगी, एक एज तक खिला देगी, पर एक एज के बाद में क्या करना पड़ेगा, आपको खुद खाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मदर ने तो डेस्टिनी परोस के दे दी कि भैया खाने की थाली बना दी है खा ले, पर उसके बाद तो आपको खानी है ना। तो वो हाथ जब तक उस खाने को लेके आपके मुंह तक नहीं जाएगा, जब तक आप ये कर्म नहीं करोगे तब तक वो खाना आपके स्टमक में नहीं जाएगा और उसके न्यूट्रिशन आपको नहीं मिलेगी।
0: बिल्कुल।
1: सेम बात होरोस्कोप कहती है कि अगर एक समय विशेष आपकी लाइफ में हम इंडिकेट कर रहे हैं, एक समय विशेष हम आपकी कुंडली में दिखा रहे हैं कि इस समय विशेष को आप अपनी लाइफ में प्रॉपर चैनल करते हुए, प्रॉपर यूटिलाइज करते हुए अगर यूज करते हैं, तो आप उस लाइफ को बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट सक्सेस दिला सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मेरे को एक शनि की महादशा है
0: जी। ठीक है,
1: आज स्थिति क्या हो रखी है मार्केट के अंदर में कि शनि, राहु, केतु, मंगल के नाम से लोगों को हवा बना के डराया जाता है।
0: बिल्कुल, बहुत डराया जाता है जी,
1: जी जी। और जितना डराया जाता है उतना ज्यादा क्लाइंट पैसा निकालता है।
0: करेक्ट।
1: तो एक नॉर्मल सिनेरियो हो गया कि डराओ और पैसा निकलो। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपका किसी पर्टिकुलर ग्रह से कोई पर्सनल ग्लिच या दुश्मनी है जो वो आपको ही परेशान करेगा। ऐसा नहीं होता है,
0: बिल्कुल
1: ग्रह का आपसे कोई पर्टिकुलर ग्लिच या दुश्मनी नहीं है, वो तो आपके कर्मों के अनुसार आपको किस हाउस में, किस राशि में, किस डिग्री में, किस नक्षत्र में मिला है, ये आपके जो पास्ट लाइफ के जो कर्मास थे उन्होंने डिसाइड किया। आपका जब बर्थ हुआ था उस समय जो स्काई का मैप था, जो आकाशीय मानचित्र था, वही तो आपकी कुंडली है
0: जी,
1: और वही कुंडली आपको मिली है कि आपको भुगतना है। अब आपको ये पता है कि यार शनि मेरे को नीच का मिला है, तो नीच का शनि है, तो क्या आप अपनी कुंडली से किसी ज्योतिषी तांत्रिक कोई उपाय किसे क्या उस शनि को निकाल के बाहर फेंक सकते हो? नहीं फेंक सकते, वो वहीं रहेगा जब तक आप जिंदा हो। आपको आपको उसके साथ में जीना आना चाहिए, आपको उसके साथ में जीना सीखना पड़ेगा।
0: बिल्कुल,
1: कि मुझे अगर शनि नीच का मिला है तो अब इस नीच के शनि के रिजल्ट्स मैं पॉजिटिव कैसे लाऊं, तो मुझे क्या करना है? सिंपल सी बात है, मुझे अपने कर्मों को उस ऊंचाइयों तक ले जाना है जहां मेरे पास में अकाउंट में बददुआओं से ज्यादा दुआएं इकट्ठी हो जाए।
0: करेक्ट,
1: जितनी बुजुर्ग लोगों की सेवा करेंगे, जितनी बुजुर्ग लोगों की दुआएं इकट्ठी करेंगे, आपकी जो पास्ट लाइफ की जो एक कनेक्टिविटी थी फ्रॉम सिंस एंड प्रॉब्लम्स, वो कम होते होते अब वो न्यूट्रल होकर के एक टाइम पे वो पॉजिटिव पाथ में चली जाएगी। तो जब हम बात करते हैं डेस्टिनी और फ्री विल की, तो फ्री विल तो को हर इंसान को मिलती है, पर वो फ्री विल को भी एक यूज करने का तरीका होता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, आप इस इंडिया के एक टाइकून, मैं नाम नहीं लूंगा, एक टाइकून बिजनेस फैमिली को देख लीजिए। ठीक है, फादर ने एक बहुत डाउन टू स्टेप एक ग्रोथ करके एक टॉप इंडिया के टॉप मतलब इंडस्ट्री और बिजनेसमैन के रूप में अपने आप को पहचान बना करके अपना सारा बिजनेस दो बच्चों को दिया।
0: करेक्ट,
1: ठीक है, सेम दिया, सेम चीज थी, सेम ब्रांड दिया सबको, इक्वली दिया।
0: करेक्ट,
1: एक इंसान ने उसको जवाबदारी और जिम्मेदारी से नियम अनुसार धीरे धीरे करके संभाला।
0: बिल्कुल,
1: और एक इंसान रातों रात अमीर होने के लिए अपनी जो अपन कहते हैं ना चद्दर से पांव ज्यादा फैलाने वाली बात, वो फैला करके अपने भाई से ज्यादा जल्दी अमीर बनने के लिए प्रोग्रेस करी।
0: करेक्ट,
1: तो जब हम देखते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर में क्या होता है कि जब आप कोई द्वेष भावना या किसी चीज से लेके चल रहे हो तो आपको रिटर्न बैक मिलता है। और एक ही फैमिली से जब हम कहते हैं कि आपका फ्री विल, तो आपको यही मिला था कि दोनों सिल्वर स्पून लेके पैदा हुए थे।
0: बिल्कुल,
1: एक ही परिवार में पैदा हुए थे, दोनों सिल्वर स्पून लेके पैदा हुए थे, पर एक का सिल्वर स्पून तो आज भी कायम है, दूसरे का सिल्वर स्पून जा चुका है। क्यों? क्योंकि उसने अपने कर्मों को, अपने लाइफ पाथ को, अपने प्लेनेटरी वॉइस को, लैंग्वेज को नहीं समझा, और वो चाह रहा था कि मैं प्लेनेट को चलाऊंगा, जबकि प्लेनेट कह रहे थे हम तेरे को चलाएंगे।
0: बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपने ये हमें समझाया कि कैसे सच में अगर भगवान सब कुछ आपको दे देगा तो आप ना उनका स्मरण करेंगे और फिर तो जीवन है ही क्या, फिर ये जीवन जीवन रहेगा ही नहीं, और आप क्यों ही कुछ करेंगे जीवन में। तो वो कर्म आपको कर्मठ बनाने के लिए, आपको उस पाथ पर लाने के लिए भगवान ने वो 1% अपने पास रखा है और 99% आपको दिया है, जिसमें आपकी बुद्धि है, आपके कर्म करने की शक्ति है और आत्मा है, मोटिव्स हैं। तो अगर उन सबको हम सही तरीके से एक साथ इस्तेमाल करें और सही डायरेक्शन में बढ़ें तो वो 1% भी आपका हो सकता है आपके कर्मों से। और बाकी डेस्टिनी तो है ही, वो अपना रोल प्ले करती
1: इसमें,
0: है
1: जी। इसमें आपको एक छोटा सा एक शास्त्र का एक श्लोक आता है
0: जी,
1: अहम ब्रह्मास्मि।
0: बिल्कुल,
1: ठीक है, अब आप इसको समझ लीजिए कि भगवान ने तो बोला है मैंने हर इंसान को ब्रह्मा बनने की शक्ति प्रदान कर रखी है, उसको अपने सातों चक्रा और अपनी कुंडलिनी पे वर्क करना है। ठीक है, सब कुछ एनर्जी आपको दे रखी है, आपके पास में वो अवचेतना है जिससे आप उसको चेतना बना करके आपसे 1,00,000 किलोमीटर दूर भी कोई इंसान बैठा हुआ है, उसको आप अपनी टेलीपैथी से अपनी एनर्जी आप एक्सचेंज करके उसको अपनी याद दिलवा सकते हो। ठीक है, ये सब ऊर्जा भगवान ने आपको भी दी है। पर मैं अगर ये कह दूं कि भगवान ने तो मुझे ब्रह्मा बना रखा है, मैं तो ब्रह्मा हूं और मैं तो इसको फ्री विल लेके चलता हूं, तो ऐसा नहीं होगा, है ना। वो ऊर्जा एक दिन खत्म हो जाएगी, अगर दी भी है और अगर मैं उसको कंटिन्यू एक्टिव नहीं रखूंगा, जैसे सेल को मैं अगर चार्ज नहीं करूंगा तो वो सेल भी डिस्चार्ज होकर के खत्म हो जाएगा, ऐसे ही मेरी अगर चेतना को मैं डेली एक्टिव नहीं करता हूं तो ये एनर्जी मेरी एक दिन आके खत्म हो जाएगी। तो भगवान ने आपको ताकत तो दी है, अब जब तक आप कर्म करके उस ताकत को एक्टिव नहीं करोगे, उसको इनलाइटन नहीं करोगे, तब तक ब्रह्मा तो बहुत दूर की बात है, आप इंसान भी नहीं बन पाओगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सटीक जानकारी आपके साथ हमें साझा हो रही है। हमारे श्रोतागण आज बहुत कुछ इस एपिसोड से लेके जाएंगे, मैं ये यकीन रखती हूँ, और मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ आगे चलने के लिए। पहले हम एक सॉन्ग सुन लेते हैं, गीत सुन लेते हैं खूबसूरत सा, और फिर हमारे आखिरी सेगमेंट पर चलेंगे, जहां पे मैं आपसे कुछ बेसिक रेमेडीज की बात करना चाहूंगी और एनर्जी एक्सचेंज की बात करना चाहूंगी कि आप कैसे अपने आप को बैलेंस रखते हैं सर सबके बीच। पहले सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत, जिंदगी प्यार का गीत है, फिल्म सौतन।

0: क्या खूबसूरत गीत है ये, जैसे जिंदगी का कोई फलसफा हो। आगे चलते हैं राज सर, आप जब इतने सारे लोगों से कनेक्ट करते हैं, अगेन मैं वापस कहना चाहूंगी कि आपने 1 लाख से भी ऊपर कुंडलियां आज तक देख ली हैं इन 2 दशकों में, तो इतने लोगों से जब आप कनेक्ट होते हैं, हर लेवल पे कनेक्ट होते हैं, तो आपकी एनर्जी कैसे डिप्लीट होती है और उसको आप कैसे बैलेंस रखते हैं, और ये जो एनर्जी एक्सचेंज होता है जिसके बारे में आपने हमें बताया, वो किस तरह से वर्क करता है, और जो क्लाइंट्स आपके पास आते हैं उन्हें क्या सोचना चाहिए इसके बारे में, किस तरह से इस चीज को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए कि जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर से जुड़ रहे हैं तो वो एक एक कॉर्ड कनेक्ट हो रही है, एनर्जी कनेक्ट हो रही है, और उसको वैल्यू देना, उसको रिस्पेक्ट देना इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर अगर थोड़ा सा बात करें।
1: जी मैम, इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको एक चीज समझाऊंगा कि आपने जो शब्द कहा इसमें मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। टर्निंग पॉइंट ये था कि पहले आपको ध्यान होगा ऑर्कुट चलता था।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: ऑर्कुट चलता था, ये फेसबुक तो बाद में आया, ऑर्कुट चलता था ये, तो ऑर्कुट और उसी समय याहू के एक ग्रुप चलते थे, याहू पे ग्रुप हुआ करते थे चैट के,
0: राइट,
1: ये करीबन 2004-2006-2007 की बात है जब करेक्ट, समय ये होते थे,
0: करेक्ट,
1: तो उस समय मैं प्रैक्टिस करने के लिए इन ग्रुप्स के अंदर मैं एस्ट्रोलॉजी के ग्रुप मेरे होते थे जिसके अंदर में मतलब थाउजेंड्स के अंदर में लोग बाग होते थे
0: जी,
1: तो मैं उसको फ्री ऑफ चार्ज उनको मैं कंसल्टेंसी और रीडिंग दिया करता था। और मेरे को जब मैं एक इंसान को मैं जैसे दे रहा हूं, आज मैंने आपको एक रीडिंग दे दी, कल आप दूसरा नाम बदल करके फिर आ जाते हो,
0: बताइए,
1: और फिर वही होती है, और जैसे ही मैं अपने सॉफ्टवेयर में डिटेल डालता हूं तो मुझे पकड़ में आ जाता है कि यार ये इंसान तो कल भी मेरे पास में आया था या कुछ दिन पहले भी आया था और ये अलग नाम से आया था,
0: बताइए।
1: आप अब मैं जो प्रिडिक्शन कर रहा हूं, आप सोचो क्या वाकई में मैं सेम ऑनेस्टी से प्रिडिक्शन कर पाऊंगा इस चेतना के साथ में कि तुम मेरे साथ में छल कर रहे हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: सेम सिचुएशन
0: जी,
1: सेम सिचुएशन हुई 2006-07 से लेकर के 2010 तक, जब मेरा फेसबुक पे एक ग्रुप हुआ करता था जिसमें करीबन 60,000 आदमी उस समय कनेक्टेड थे और डेली मैं प्रिडिक्शन करता था
0: जी,
1: फ्री ऑफ चार्ज, मतलब मेरे को एक था कि रोज कम से कम 100 हॉरोस्कोप को मेरे को देखना है और मेरे को रोज मेरे को यहाँ करना है, और यही मेरे पास में एक डेटाबेस इकट्ठा करने का एक जरिया था
0: जी,
1: जिस आप हॉरोस्कोप की बात करते हैं, मेरा हॉरोस्कोप का डेटाबेस कलेक्शन जो है वो 1 लाख से ज्यादा हॉरोस्कोप की जो डिटेल्स है ये सब मेरे को सोशल मीडिया के थ्रू मैंने जब हॉरोस्कोप रीड करे थे कस्टमर से मिलकर के, अब प्रोफेशनली जो मेरे पास में आई, मेरे पास में इसलिए मैं रिसर्च बेस पे जा सकता,
0: राइट,
1: तो जब मैं देखता हूँ। अच्छा, वहां पे क्या, वहां पे भी फ्री ऑफ चार्ज देता था, ऐसा नहीं था वहां पे कोई चार्ज करते
0: जी,
1: तो आपको मैंने हॉरोस्कोप रीड कर दिया है, अब आपको एक नया प्रॉब्लम आ गया, कल फिर आप आए, अब आपके ही मैं कंटिन्यू रीडिंग दूंगा, तो जो पीछे जने बैठे हुए हैं और भी जो बाकी के 55,000-60,000 जो जने बैठे हुए हैं उनका क्या, तो इस कंप्लेंट को निकालने के लिए पता है मैंने एक ट्रिक लगाई थी
0: जी,
1: एक ट्रिक लगाई थी
0: जी,
1: कि कोई भी जना जिसको अर्जेंसी है, जिसको जल्दी और उसको ब्रीड करानी है, वो एक किसी भी गौशाला अनाथ आश्रम वगैरह की एक रिसिप्ट ला करके यहाँ पे मुझे या वो पेस्ट कर दे ग्रुप में या मुझे पर्सनली शेयर कर दे, मैं उसको पहला नंबर दूंगा।
0: वाओ वाओ,
1: ठीक है, आप विश्वास करेंगे उस 60,000 में से एक सिंगल आदमी
0: बताइए
1: ने नहीं किया
0: 60,000 जी,
1: उसमें लिखा क्या, अगर हम नकली इंटरनेट से अगर रिसिप्ट बना के दे देंगे तो क्या कर लोगे, ये रिप्लाई आए उस मैसेज के ऊपर, मैं आज भी ये मैसेज वहां पे पेस्ट है उस ग्रुप पे, उस पर रिप्लाई क्या आया, हम तो अगर फर्जी टिकट बना के दे देंगे, मैंने कहा तुम कर्म तो करो, तुम इतना भी कर दो,
0: इतना ही कर दो,
1: तो भी मैं तुम्हें फ्री रीडिंग दे दूंगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो उस समय मेरे को एक एहसास हुआ कि मैं जो नॉलेज का एनर्जी एक्सचेंज कर रहा हूँ किन लोगों के साथ कर रहा हूँ, क्या ये लोग इसकी वर्थ भी रखते हैं, क्या
0: ये पात्र हैं, कुपात्र हैं कि सुपात्र हैं जी,
1: है ना, तो उस

0: में मेरे को ध्यान आया कि भली तो अपनी इच्छा से दे, पर एक बार देने की क्षमता तो रख, श्रद्धा तो रख, पर तभी मैं कुछ दूं। आजकल हो क्या रहा है, आप देखेंगे कि मोस्टली जितने भी सोशल मीडिया पे, ग्रुप्स में, एप्लीकेशंस पे एक चल रहा है कि फ्री रीडिंग ले लीजिए, फ्री रीडिंग ले लीजिए, सब लोग फ्री रीडिंग पूछ रहे। जब आप एक एक्सपर्ट के पास में कंसल्टेंसी लेने चाहते हो और इस नॉलेज से जाते हो कि सिर्फ 5 मिनट में जब तक फ्री मिल रहा है तब तक ही इससे बात करनी है, जैसे एक समय खत्म हुआ और मुझे निकल लेना है,
1: बिल्कुल
0: आप यहाँ पे अपने कर्मों को खराब कर रहे हो।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि सामने वाले ने अपने ज्ञान का एनर्जी एक्सचेंज किया था आपके साथ, आपने उसकी काबिलियत, आपने उसके ज्ञान, आपने उसके नॉलेज की वर्थ नहीं समझी, और आप अपने मकसद से इससे 5 मिनट फ्री लेने के बाद में दूसरे के पास सबक पड़े।
1: बिल्कुल,
0: अब एक ने आपको कहा आपका काम हो जाएगा, दूसरे ने कहा नहीं होगा, अब आप ही कंफ्यूज हो कि वो सही है या ये सही है।
1: करेक्ट,
0: आपको अगर अपने फ्यूचर पे अगर रियली वर्कआउट करना है तो आप क्षमता रखें कि अगर कोई इंसान अपने ज्ञान को, अगर आज मैं 25 साल से नॉलेज में रखता हूँ और एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो उसके पीछे मेरे पीछे भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेरे पीछे भी कोई है, तो मैं उनको भी ध्यान में रखूंगा। मैं सिर्फ ये नहीं देखूंगा कि यार सब फ्री में है, मिला हुआ है ज्ञान, उसको बांटते जाऊं।
1: बिल्कुल,
0: हमारी जो मेन क्लासिक है वैदिक एस्ट्रोलॉजी की, जो मेन किताब है क्लासिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी को हम कहते हैं, वो है वृत्त पाराशर होरा शास्त्र
1: जी।
0: उसके जो फर्स्ट अध्याय है उसके अंदर में पेज पे एक लिखा होता है कि एक तो नक्षत्र मणि मत बनना, ठीक है, दूसरा ये ज्ञान उस इंसान को मत देना जिसको इसकी वर्थ नहीं पता हो, जिसको इस पे विश्वास ना हो, जो सिर्फ इसका उल्लास या मजाक करने आया है।
1: बिल्कुल, उल्लास ही है 5 मिनट में जानने की कोशिश करना। बिल्कुल
0: मैम, मुझे 15 मिनट मतलब एक होरोस्कोप से उसके पास्ट और प्रेजेंट को मैच करने, क्योंकि इंसान को भी समय चाहिए होता। मैंने बोल दिया 2011 में आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ था क्या, अब आप खुद 5 मिनट मेरे खा जाओगे उस 2011 को याद करने के लिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: कि लोग क्या कहते हैं, अरे पास्ट छोड़ो फ्यूचर की बात करो। अरे भाई, जब मैं तेरा पास्ट नहीं रीड कर पा रहा हूँ, तेरा फ्यूचर क्या रीड करूंगा,
1: कैसे रीड करूंगा। यस यस यस,
0: ये फर्क होता है
1: जी,
0: कि हम जब क्वालिटी ऑफ रीडिंग देना चाहते हैं, जब हम किसी इंसान को रियली एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस देना चाहते हैं, वहां पे इंसान उस चीज की वर्थ नहीं करता है, वो भटक रहा होता है उस पास्ट रीडिंग के लिए, जहां पे सिर्फ उंडली खोली, लगन देखा और प्रेडिक्शन मार दिया।
1: करेक्ट,
0: ना दशा देखी, ना डिग्री देखी, ना कुछ देखा, पढ़ा पट क्या काम है, ये वचन ठीक हो जाए।
1: जी जी जी,
0: तो ये है। अब आपने पूछा उपाय के बारे में
1: जी।
0: देखो मैम, दुनिया क्या सोचती है और दुनिया क्या करती है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं
1: जी,
0: ठीक है। मैं अपना आपको से अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ।
1: हाँ जी,
0: कि इन 20-25 सालों में मैंने एक चीज को समझा है कि किसी भी पर्टिकुलर ग्रह का आपसे कोई पर्सनल ग्लिच नहीं है, या कोई पर्सनल आपसे प्रेफरेंस नहीं है कि वो आपको सपोर्ट करेगा।
1: राइट,
0: ठीक है, जो कुछ है आपका, आपका यूनिवर्सल एक कार्मिक डेप्थ है, कार्मिक बुक है, जिसके अंदर में आपको पूरा हिसाब किताब लिखा हुआ है, जो आपको भुगतना है भुगतना है।
1: बिल्कुल,
0: तो मेरा एक ही बात कहना है, कोई ग्रह अच्छा नहीं, कोई ग्रह खराब नहीं, कोई भाव अच्छा नहीं, कोई भाव खराब नहीं, ये आपके ऊपर में है कि आप उस भाव को, उस ग्रह को कैसे यूज करते हो, कैसे उसको अपनी लाइफ पाथ में यूटिलाइज करते हो।
1: बिल्कुल,
0: ठीक है। अब सेम बात अगर मैं बोल रहा हूँ और मैं कहता हूँ कि आप डेली शिवजी पे जाओ, चल चढ़ाना, आपका काम हो जाएगा, तो ये भी एक वह झूठ हो गया। जो मैं एक तरफ तो मैं कह रहा हूँ कोई अच्छा बुरा नहीं, दूसरी तरफ मैं कह रहा हूँ कि शिवजी आपका सब कुछ कर देंगे।
1: करेक्ट करेक्ट
0: जी। तो मेरा एक ही मानना है, एक होती है हमारी निष्ठा, एक होती है हमारी किसी भगवान के प्रति आस्था, और उस निष्ठा और आस्था के अनुसार अगर मैं कोई डेली की जो हमारी दिनचर्या थी, सूर्य को जल चढ़ाना, शिव जी को जल चढ़ाना, जीवन में जल तत्वों को न्यूट्रलाइज करना, तो ये तो हो गए मेरे दैनिक दिनचर्या के भगवान और आस्था के कनेक्शन, जो नेचुरल वे में मेरे कर्मों से जुड़ रहे हैं।
1: करेक्ट, बिल्कुल ज्योतिष उपाय जी
0: ये। हाँ, ये कोई ज्योतिषी उपाय नहीं हुआ,
1: नहीं है, ये दिनचर्या को बदलना है।
0: ये आपका एक भौतिक, आपके जिस परमात्मा को आपने पूजा है, जिस परमात्मा ने आपको जन्म दिया है, जिस परमात्मा को आप आपका परिवार मानते हो, उसको ग्रेटिट्यूड करने का तरीका है।
1: करेक्ट,
0: कि आपने जन्म दिया, मैं धन्यवाद हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ, मैं आपको जल चढ़ा रहा हूँ, स्वीकार करें और मुझे आशीर्वाद दें।
1: बिल्कुल
0: ठीक है। पर अब मैं कहता हूँ कि ज्योतिषी जाके बोलते हैं कि तुम्हारी शादी नहीं हो रही है, तुम जाके शिव जी पे जल चढ़ाना, तुम्हारी शादी हो जाएगी। तो ऐसे अगर शादी होगी होती तो दुनिया में कोई कुंवारा ही नहीं रहता।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अब यहाँ आती है बात कि संकल्प आप कैसे उस चीज को आप शादी में कन्वर्ट करेंगे। उपाय कर रहे हैं, उपाय करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ जल नहीं चढ़ाना, शादी नहीं होगी। मैं किसी भी इंसान को ये नहीं कह रहा हूँ कि शिव जी पर जल चढ़ाओगे तो शादी नहीं होगी। मैं ये कह रहा हूँ जल चढ़ाने का मकसद तो बताओ, क्यों चढ़ा रहे हो, क्या चाहते हो। तो उसके पीछे हमारे शास्त्रों में संकल्प लेना बताया गया कि आप अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपने पति का नाम, अपना गोत्र, आप जा रहते हो वहां का स्थान बताते हुए भगवान को धन्यवाद करो, उनको को अपनी कृतज्ञता दिखाओ कि मैं आज आपके श्री चरणों में आया हूँ, आई हूँ, और मेरी एक मनवांछित अभिलाषा है कि मुझे एक सुयोग्य पत्नी या सुयोग्य वर प्राप्त हो
1: जी।
0: और आप मेरे इस जल को स्वीकार करके मुझे आशीष प्रदान करना
1: जी।
0: ये बताओ तो सही, सिर्फ जल चढ़ा दिया, हाँ मैं तो 16 सोमवार का व्रत किया और जल चढ़ा दिया, तो इससे पति या पत्नी नहीं मिलने वाले।
1: बिल्कुल,
0: आपको भगवान को अपनी निष्ठा बतानी है, मैं किस कार्य विशेष को लेकर करता हूँ। तो वहां पे कोई भी उपाय रेमेडी यूनिवर्सल नहीं हो सकती है, हर इंसान को अपना अपना काम करना होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत बार लोग आपने देखा होगा मंदिरों में दीपक लगे हुए होते हैं।
1: हाँ जी बिल्कुल
0: ठीक है। अब उस दीपक के अंदर में कितने तरीके तेल मिले हुए हैं उसको आप समझो।
1: करेक्ट,
0: आपने छायादान का नाम सुना, छायादान।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल,
0: है ना। तो छायादान क्या होता है, कांसे की कटोरी में तेल लेकर के अपना चेहरा देख करके उस तेल का दान करना। इसको हम शनि का दान के रूप में कहते हैं कि जिसको शनि लगा हुआ है, शनि के छत
1: जी।
0: अब एक इंसान ने ये छायादान करके उस दीपक में जो अखंड दीपक जल रहा है उसमें ये तेल डाला, ये बोल करके कि मैं शनि की शांति हेतु ये तेल डाल रहा हूँ।
1: करेक्ट।
0: एक इंसान ने उतारा करके उस दीपक में तेल डाला कि मेरे तमाम शारीरिक और शत्रुओं का संहार हो, और मैं ये उतारा करते हुए किसी के परिवार वाले ने करके दिया और जाके उसने वो तेल उसमें डाल दिया
1: जी।
0: दूसरा इंसान गया कि मैं अपने धर्म अनुसार आज शनिवार है तो मैं अपने घर से तेल लाया हूँ, भगवान आपके चरणों में चढ़ा रहा
1: हूँ।
0: अब यार तीनों जनों की निष्ठा अलग अलग थी पर मिक्सअप होके कहाँ गया, उस एक तेल के अंदर में।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: भाई, अगर तुम पर्टिकुलर कोई निष्ठा से, कोई अपने कोई इच्छा पूर्ति से या किसी कार्य विशेष के लिए कर रहे हो तो अपना इंडिविजुअल दीपक लगाओ।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: मीठे तेल के साथ में सरसों का तेल या कड़वा तेल मिक्स मत करो। एक जना मीठे तेल का,
1: जी जी जी,
0: एक जना मीठे तेल का दीपक लगा रहा है तुम उसमें सरसों का या कड़वा तेल लाके नीम का तेल मिक्स करके चढ़ा रहे हो शत्रु के नाश हेतु, तो ना उसका भला होगा ना तुम्हारा भला,
1: ना तुम्हारा भला होगा। बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो यहाँ पे जो उपाय वाली बात करता हूँ, मैं उपाय के लिए एक ही बात कहता हूँ, यूनिवर्सल थंब रूल कुछ नहीं है, ज्योतिष में थंब रूल नाम की कोई चीज नहीं है
1: जी।
0: एक इंसान के लिए 6, 8, 12 हाउस में बैठे हुए प्लेनेट खराब हो गए, वही दूसरे इंसान के लिए जब ये राशि परिवर्तन हो जाएंगे, मतलब एक राशि में दूसरे में, दूसरे का तीसरे में, ये जब हो जाएगा तो वहां हो जाता है विपरीत राज्य। तो वह विपरीत राज्य क्या होता है कि फकीर के घर में पैदा हुआ इंसान भी सक्सेस पाएगा। हम मोस्टली हम ये देखते हैं कि जितने भी ये राजनेता लोग हैं या ऐसे लोग जो विदेश में जाकर के अच्छी सक्सेस प्राप्त करें, उनकी कुंडली के अंदर में विपरीत राज्यों का अच्छा बना हुआ
1: जी।
0: तो एक को एक के लिए तो खराब हो रहा है, दूसरे के लिए अच्छा हो रहा है। तो यहाँ देर इज नो थंब रूल, आप मुझे कोई भी एक रूल बता दो ज्योतिष का, मैं आपको उसका अदर साइड बता दूंगा कि मैम ये तो हेड है, ये इसका टेल है। एग्जाम्पल आपने कहा सूर्य, सूर्य उच्च का, सूर्य उच्च का मीन्स ए पर्सन हु हैव ए ह्यूज कॉन्फिडेंस लेवल, ए पर्सन हु हैव ए वेरी सेल्फ रेस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल शिप।
1: करेक्ट।
0: अब इसका बैक साइड क्या हो गया, एक पर्सन जो बहुत इगोइस्ट है, घमंडी है, और वह अपनी ईगो और घमंड के आगे सब कुछ अपना नाश कर देता अगर उसने अपनी ईगो घमंड को कंट्रोल नहीं किया तो।
1: बिल्कुल।
0: सूर्य वही है, सूर्य उच्च का उसके भी है, सूर्य उच्च का उसके भी है, एक ने उस सूर्य को यूज किया इंटेलेक्चुअल शिप में अपनी चेतना को जगाने के लिए, अपने आप को समझने के लिए। दूसरा आदमी, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं, मैं ही क्यों करूं, वहां पे उसके सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: तो आपको समझना है कि सबसे मेरा जो एक यूनिवर्सल उपाय जो मैं करता हूं या जो मैं अपने आप को करता हूं, मैं 5 मिनट आत्ममंथन करता हूं, अपनी हर उस परमात्मा, उस परम ब्रह्म, परम शक्ति को मैं धन्यवाद करता हूं, मैं ग्रेटिट्यूड करता हूं, जिन जिन से मैं कनेक्टेड हूं, जिन जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, जिन जिन्होंने मुझे इस राह पे अपने आप को अग्रसर होने के लिए मुझे एनहांसमेंट किया, मुझे बताया कि भाई तू बिजनेसमैन नहीं करेगा, तू इस बात पे आ, यहाँ सक्सेस मिलेगी। तो जिसने भी मुझे किया, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने माता पिता का। सबसे बड़ा आपको जो हम जो भटक रहे हैं, हमारी आदि प्रॉब्लम्स की वजह है, हम हमारे पितृ पूर्वज कुलदेवी और सती को भूल जाते हैं। उन लोगों को हम कभी भी याद नहीं करते हैं और भटकते रहते हैं। हर एक ज्योतिषी बोल रहा है तुम्हारे पितृ दोष है, तुम्हारे कुल देवता का दोष है, दोष। अरे कोई किसी पितृ देवता, किसी कुल देवता की तुमसे कोई पर्सनल ग्लिच नहीं थी, प्रॉब्लम एक ही है, तुमने उनको परेशान किया या तुम उनको भूल चुके हो, तुमको याद नहीं करते हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तुम उनको नमन करो, तुम उनके नाम का दीपक लगा दो, उनको सिर्फ ये एहसास कर दिलवा दो कि भाई मैं कल भी आपको याद करता था, आज भी करता हूँ।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: इससे ज्यादा उनको कुछ नहीं चाहिए, आपके 5 पकवान नहीं चाहिए उनको।
1: बिल्कुल,
0: आप भगवान को रोज भोग लगाते हो, आपके भगवान के बुक, वो आपके भोग के बुके नहीं है, वो आपके सिर्फ
1: भाव के
0: जो आप भाव के बुके हैं कि यार ये खाता बाद में, पहले मुझे भोग लगाता हूँ।
1: जी जी,
0: ये निष्ठा चाहिए होती। तो सिंपल सा है, आत्ममंथन करें। मैं पब्लिक को देखता हूँ, एक ज्योतिषी ने बोला तुम 108 बार हनुमान चालीसा करना, दूसरे ने बोला तुम गीता पढ़ना, तीसरे ने बोला तुम दुर्गा के 108 नाम का जाप करना, चौथे ने बोला शिव जी का जाप करना। वो आदमी बेचारा घंटे दो घंटे तो पूजा पाठ में लगा
1: रहता करता है। जी जी,
0: अब उसमें क्या रहता है, वो कहता है मैं शिव जी को भी मनाऊंगा, मैं दुर्गा माता को भी मनाऊंगा, मैं हनुमान जी को भी मनाऊंगा, मैं सबको मनाऊंगा। तो यहाँ कोई मनता मनता नहीं है, एक मन जाता है दूसरा नाराज होता है।
1: जी,
0: क्योंकि उसका दिमाग क्या आ रहा है, यार शिव जी की तो पूजा हो गई, अब इसके बाद हनुमान जी की करूंगा, हनुमान जी के बाद में दुर्गा की करूंगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, वो कैलकुलेशन है सारा। जी,
0: वो घड़ी देख करके ये करूंगा, अरे ऐसा नहीं होता है।
1: जी,
0: तुम 5 मिनट सिर्फ किसी भी एक भगवान को पकड़ लो, बोल दो कि मैं तो सिर्फ आप ही की शरण में आ गया हूँ, मेरे को और कुछ नहीं पता है, जो कुछ करना है आपको ही करना। एटलीस्ट आपके बॉस को ये तो पता है कि भैया ये मेरे पे डिपेंडेंट है, मुझे ही इसको प्रमोशन दिलाना है।
1: बिल्कुल,
0: मैं एक ऑफिस में हर इंसान को चापलूसी करता हूँ, चपरासी यार तू सर को बोलना ना यार मेरा प्रमोशन करा दे।
1: जी,
0: उसके ऑफिस ऊपर वाला यार तू सर को बोलना ना मेरा प्रमोशन करा दे। तो सर एक दिन आके बोलेंगे यार ये इतनी चापलूसी की चेक लगवा रहा है, डायरेक्ट मेरे पास तो नहीं आया, क्यों करूं मैं इसका प्रमोशन।
1: बिल्कुल,
0: तो डायरेक्ट आप अपने परमात्मा से अंतर ध्यान करें, उनसे आत्ममंथन करें, उनको धन्यवाद दें, उनको ग्रेटिट्यूड करें, ये सबसे बड़ा है। 5 मिनट ही निकालें, पर निकालें उस 5 मिनट में सिर्फ आप हो और आपका भगवान।
1: करेक्ट, बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा ये एपिसोड सर, और मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज आप अपना इतना समय निकाल के, क्योंकि मैं जानती हूँ आपके हर मिनट की वैल्यू है और किस तरह आपने एक घंटा निकाला होगा हमारे लिए, तो मैं आपको बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड देना चाहती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ इतनी सही, सटीक, सरल तरीके से सारी बातचीत साझा करी कि हर एक जो श्रोता आज हमें सुन रहा है, जिसको आज से पहले ज्योतिष के बारे में नहीं भी पता हो, वो आज कुछ हमें सुन के कुछ लेके जाएगा और अपने जीवन में कुछ चेंज कर पाएगा। तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद राज सर आपका।
0: मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा लास्ट में, आपने इतना कुछ बोल दिया।
1: जी,
0: मेरे गुरु ने मुझसे एक बात कही थी कि ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। मैंने अगर अपना कुछ ज्ञान अगर आपके यहाँ शेयर किया है तो यही ज्ञान मुझे रिटर्न होकर के किसी न किसी रूप में और कुछ सीखने को मेरे को इनहेंस करेगा। तो मैं तो आपका धन्यवाद करूंगा कि अगर मैंने यहाँ कुछ शेयर किया है और इसमें से मेरे से कोई 2-4-5 जने भी रियल एस्ट्रोलॉजी को समझ सकेंगे, जो भटक रहे थे, जिनका विश्वास उठ गया था, वो उनका इसमें भला होगा।
1: बहुत बड़ा,
0: वही मेरा
1: सर आपका। जी,
0: वही मेरा पुरुषार्थ होगा, वही मेरा प्रारब्ध होगा।
1: जी, बहुत ही खूबसूरत शख्सियत है आप, और मैं मतलब मेरे पास शब्द नहीं है आपको एक्सप्रेस करने के लिए। तो दोस्तों, इसी के साथ जिंदगी अनप्लग्ड का आज का ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। आचार्य राजकुमार बिरला जी का दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ इतनी इंसाइटफुल, इतनी प्रेरणादायक बातें साझा करी। मैं हूं आपकी आरजे तनुषा, आपके तरानों की हम सफर, और आपसे अब लेती हूं इजाजत। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और जिंदगी को पूरी तरह से जीते रहिए। मिलेंगे फिर एक नए एपिसोड के साथ, सिर्फ एसएनआर से जीते रहिए। मिलेंगे फिर एक नए एपिसोड के साथ, सिर्फ एसएन रेडियो पर। नमस्कार।

0: हर मुलाकात एक गीत की तरह होती है। कुछ गीत खत्म हो जाते हैं पर उनकी गूंज देर तक दिल में रहती है। आज की इस महफिल से हम भी कुछ यादें, कुछ सीख और कुछ मुस्कुराहटें अपने साथ लेकर जा रहे हैं। मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का। याद रखिए दोस्तों, जिंदगी हमेशा परफेक्ट नहीं होती, पर हर जिंदगी में एक कहानी जरूर होती है जो सुनी जाने लायक होती है। फिर मिलेंगे एक नए चेहरे, एक नए सफर और एक नई दास्तान के साथ। तब तक अपने दिल की धुन को सुनते रहिए। नमस्कार
1: दोस्तों, ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज से। सुनते रहिए 90.8 FM रेडियो टांटिया भील। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित कार्यक्रम स्वच्छ सुजल गांव की कहानी और रेडियो की जबानी। दोस्तों लीजिए, फिर आ गया वो दिन, वही वार जिसका हम बेसब्री से करते थे इंतजार।
2: आप सभी को स्वच्छिका और सुजल का सादर नमस्कार।
1: क्या है कि स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जबानी कार्यक्रम देता है हमको शुद्ध विचार। हर तरफ, हर कोना, हर गांव, शहर में हो रहा है स्वच्छता का प्रचार।
2: दोहराना है हमें ये संकल्प और ये व्यवहार कि स्वच्छता ही है हम सबका अधिकार।
1: रखना है स्वच्छ हर घर का शौचालय इस बार। धोएंगे साबुन से हाथ खाने के पहले और शौच के बाद।
2: करेंगे सफाई से प्यार, करेंगे स्वच्छता की गुहार।
1: केवल मनोरंजन नहीं, उद्देश्य है हमारा।
2: बैठ जाए हर मस्तिष्क में ये संकल्प कि स्वच्छता ही है एकमात्र विकल्प।
1: स्वस्थ तन और स्वस्थ मन में ही वास करते हैं सुविचार।
2: प्रण करें आज ही कि स्वच्छ सुजल करना है हमें पूरा देश।
1: दूर हो जाएगी बीमारी अगर स्वच्छता की होगी वातावरण में बहार।
2: दोषी का भी भाग जाएगी अगर होगी आपके आसपास ऐसी बयार।
1: यही है सुजल स्वच्छ गांव अभियान की पुकार। साथियों, इन सब के सहारे ही होगी हमारी नैया पार।
2: आज के इस कार्यक्रम में हम आपको स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की पूरी जानकारी देंगे, विशेषज्ञ और स्थानीय लोगों की कहानियाँ सुनेंगे और साथ ही आपको ये बताएंगे कि कैसे इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और शौचालय की सुविधा प्रदान करके ओपन डेफिकेशन फ्री भारत बनाना है। इस मिशन के तहत शौचालय निर्माण, स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने और व्यवहार में बदलाव लाने पर जोर दिया जाता है।
1: जल के अधिकार के साथ एक बात और, वो ये कि स्वच्छ भारत अभियान के पहले चरण में सरकार ने हर गांव के हर घर में शौचालय बनवाने का कार्यक्रम किया था। और स्वच्छिका, तुमको याद होगा कि कितने ही गांवों ने स्वयं को ODF घोषित किया। अब ये ना कह देना कि ODF गांव होता क्या है।
2: अरे ऐसा कैसे कह दूंगी, मुझे मालूम है ODF का पूरा नाम खुले में शौच मुक्त गाँव है। ये एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग उन समुदायों या क्षेत्रों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जहां लोग अब खुले में शौच नहीं करते हैं बल्कि शौचालय का उपयोग करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण पहल है जो स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के साथ साथ महिलाओं की निजता की रक्षा में भी मदद करती है। सही बताया ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल। अब देश ODF से ODF प्लस मॉडल गांव की ओर बढ़ रहा है। एक ODF प्लस मॉडल गांव वो होता है जहां खुले में शौच की आदत पूरी तरह खत्म हो चुकी हो, ठोस और तरल कचरे का प्रबंधन हो गया हो, साफ सफाई का स्तर अच्छा हो, सार्वजनिक जगहों पर कचरा और पानी जमा ना हो।

0: इसमें यह सुनिश्चित करना है कि गांव के सभी घरों के साथ साथ प्राथमिक विद्यालय, पंचायत घर और आंगनवाड़ी केंद्र में शौचालय की सुविधा हो और सभी सार्वजनिक स्थानों और घरों में ठोस और तरल अपशिष्ट का प्रभावी प्रबंधन हो और कूड़ा कचरा और स्थिर पानी कहीं भी जमा न हो।
1: लेकिन सरकार के साथ साथ इसके लिए समुदाय की भागीदारी भी देखिए बहुत जरूरी है। हमारी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है रेडियो के माध्यम से और आप लोगों को ये देखना जरूरी है कि इस मुहिम में कोई भी परिवार छूट ना जाए।
0: अच्छा, यह लेकिन मुझे यह पता है कि अब तक 5.67 लाख से अधिक गांवों ने स्वयं को ODF प्लस घोषित किया है, जिसमें से 4.81 लाख से ज्यादा गांवों को ODF प्लस मॉडल के रूप में मान्यता दी गई है।
1: देश में स्वच्छता को बनाए रखने के लिए सरकार के प्रयास देखिए जारी हैं। हर घर में स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन, हर घर नल योजनाएं भी शामिल हो चुकी हैं और हमारी आपकी सहभागिता इस महाअभियान में बनाकर रखना भी देखिए बहुत जरूरी है। तो सुनते रहिए आपका अपना कम्युनिटी रेडियो और उसमें सुनते रहिए ये कार्यक्रम
0: स्वच्छ सुजल गांव की कहानी, रेडियो की जुबानी, जहां हर घर तक पहुंचेगी हमारी आवाज, हमारी बात। लेकिन फिलहाल इन सारी बातों को विस्तार से बताने के लिए हमारे बीच विशेषज्ञ उपस्थित हो चुके हैं। चलिए पहले सुनते हैं उनकी बात।
2: नमस्कार साथियों, मैं ऐश्वर्या सिंह, संयुक्त सचिव एवं मिशन डायरेक्टर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय से बोल रही हूँ। आज आप सभी से स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी कार्यक्रम के जरिए जुड़कर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। आज हम बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की, स्वच्छ सुजल गांव।

0: कानपुर अब नहीं रहा पहले जैसा। हर गांव में शौचालय है और उसका रख रखाव भी। बच्चे बीमार नहीं होते, महिलाएं सुरक्षित हैं, और दूषिका वो तो हार चुकी। ये है असली सुजल स्वच्छ गांव की तस्वीर। कहते हैं जब बुराई बढ़ती है तो अच्छाई भी ताकत से खड़ी हो जाती है। ये कहानी है रामपुर गांव की, जहां स्वच्छता को गंदगी ने खुली चुनौती दे दी, जहां प्रदूषिका ने फैलाया अंधेरा और स्वच्छता ने जलाया स्वच्छता का दीपक, और सुजल कुमार बना उस रोशनी का स्वच्छता दूत। जानेंगे कैसे काम आई बुजुर्ग की नसीहत। आइए सुनते हैं दूषिका की हार, स्वच्छ भारत की जीत।
1: आ गई मैं दूषिका, गांव की नालियों से निकलकर, शौच के खुले मैदानों में फैलकर, कभी हवा में कभी पानी में, मेरा साम्राज्य बढ़ता ही जा रहा है। ठीक हुआ ना, फैला दी ना मैंने गंदगी। जहाँ लोग खुले में शौच करते हैं, जहाँ शौचालय बनते तो हैं, मगर उपयोग ना करने से खराब हो जाते हैं और टूट फूट जाते हैं, वहीं मैं रहती हूँ। ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया, जो कहते हैं ना कल करेंगे साफ, उनको मैं जल्दी से ही बीमार कर देती हूँ। खुला शौच यानी मेरी जीत, टूटी टंकी पानी मेरा ठिकाना, बहुत ठीक हुआ। गंदा शौचालय मेरा आशियाना, मेरा काम सबको बीमार बनाना। घर में शौचालय तो है पर पानी नहीं, गंदा भी है, बिमला के बेटे का तो खुजली हो गई। ऐसे शौचालय का उपयोग से बेहतर तो खेत ही ठीक ठहरा।
2: पिछले महीने 4 बच्चे बीमार पड़े, सरपंच जी कुछ कीजिए।
3: जंगल में जाना अब खतरे से खाली नहीं, सांप और कीड़े।
1: हमारे घर में शौचालय तो है लेकिन बेटा अंदर नहीं जाता, कहता है बदबू आती है। बस ऐसे ही रहो, मुझे तुम सबका लापरवाह रवैया बहुत पसंद है। तुम्हारे बच्चों का बुखार, पेट दर्द और उल्टी, ये सब मेरी ही सौगात ठहरी। तुम सब तो मुझसे रहम की पुकार करो।
0: एक दिन गांव की सीमा पर आ जाता है एक युवक, आत्मविश्वास से भरपूर, हाथ में झोला, आंखों में मिशन लिए, और वो था सुजल कुमार, जो अपने गांव से रोज स्कूल जाता और खूब मन लगाकर पढ़ाई करता। छुट्टी के दिन सुजल कुमार अपने पड़ोस के गांव गया था। सीखा था उसने कि बदलाव घर से शुरू होता है।
4: राम राम भैया, ये गांव में चारों ओर सन्नाटा सा क्यों है, सब इतने दुखी दिखाई दे रहे हैं, और भैया ये इतनी गंदगी क्यों है यहाँ?
5: लगता है जैसे इसको तो कुछ पता ही नहीं। हाँ नहीं तो, सच कह रही हो बहन, मन तो ऐसे रहा है जैसे इसको कुछ पता ही नहीं हो।
0: मैं सब समझ गया चाची, मैं समझ गया। इस गांव में ये दुख और सन्नाटे का कारण ये गंदगी है ना?
1: मैं ही हूँ इस सब का कारण, मैं। बोलो क्या कर लोगे तुम, बोलो बोलो। मुझे पता है तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और कुछ दिनों में मैं तुम्हें भी अपना शिकार बना

0: हम पे कहाँ जाऊं, अब मेरा कहाँ ठिकाना होगा। शौचालय में ढक्कन लग गए, नाली साफ कर दी गई, अब खुले में तो कोई शौच जाता ही नहीं।
1: स्वच्छिका, सुजल कुमार और गांव वाले मिलकर रैली निकाल रहे हैं, सब मिलकर नारा लगा रहे हैं। सुजल की बातों को गांव वाले दोहराते हैं। खुले में शौच को ना कहो, बीमारी को दूर भगाओ, शौचालय को साफ रखो, स्वच्छ गांव बनाओ। दूषिका थककर गांव की सीमा पर बैठकर रो रही है।
0: मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सब सच में बदल सकते हो। तुम सब ने स्वच्छता अभियान में जन भागीदारी के साथ साथ लोगों की सोच को भी बदल डाला। अब तो मुझे जाना ही होगा।
1: गांव की

0: आपका कल सोच जो आपका समय बदल दे। आखिरी बूंद।
1: अब हम चलते हैं उस सेगमेंट की तरफ जहां पर श्रोता साथियों के नाम होते हैं, प्रश्न हमारे उनके जवाब होते हैं। तो पिछले एपिसोड में यानी कि एपिसोड नंबर 1 में हमने स्वच्छ गांव के लिए कोई बढ़िया सा स्लोगन भेजने के लिए कहा था और साथ ही कहा था कि अच्छे स्लोगनों को इनाम भी दिया जाएगा।
2: अरे तो क्या कुछ अच्छे स्लोगन आए हैं?
1: बिल्कुल आए हैं स्वच्छिका जी, और उनमें हमने 3 अच्छे स्लोगन छांट भी लिए हैं। उन श्रोता साथियों को अब हम इनाम भी देंगे, लेकिन फिलहाल सुनते हैं उन श्रोता साथियों के नाम और उनके भेजे गए स्लोगन्स। पुरुषोत्तम भाई लिखकर भेजते हैं, जल जीवन का अनमोल रतन, इसे बचाने का करो जतन। भाई वाह, क्या स्लोगन दिया है। दूसरा स्लोगन है जिसे भेजा है सत्तार भाई ने, जिसे अब तक ना समझे वो कहानी हूं मैं, मुझे बर्बाद मत करो पानी हूं मैं। भाई वाह साहब, बहुत ही प्यारा लिखा। और लीजिए दोस्तों, तीसरा स्लोगन है जिसे लिखा है सुदर्शन भाई ने, जल है जीवन की धारा, हमें मिलकर है इसे बचाना, बिन जल धरती बेजान, ये बात है सबको समझाना। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर स्लोगन लिखा दोस्त।
2: वाह, ये तो बड़े अच्छे अच्छे स्लोगन लिखकर भेजे हैं हमारे श्रोता साथियों ने। अब हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वे हमारे केंद्र में आकर अपने इनाम लेकर जाएं। आप सभी को बधाई और धन्यवाद।
1: और अब इस अंक का सवाल लीजिए। आरओ का इस्तेमाल करना आज बहुत से क्षेत्रों में मजबूरी बन चुका है। अधिकांश घरों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इससे बहुत सारा पानी बर्बाद भी होता है दोस्तों। स्वच्छ पानी पीने के लिए आप आरओ का इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं, यह जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि आप हमारे प्रश्न का जवाब दें कि आरओ से निकला हुआ पानी कहां कहां इस्तेमाल किया जा सकता है।
2: श्रोता साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आरओ के लिए 1 गिलास पानी के बदले 3 गिलास पानी बस यूं ही बहता रहता है। स्वच्छ पानी पीने की चाहत में हम बहुत सारे मिनरल्स को अलग करके इस यंत्र का उपयोग तो करते हैं, लेकिन व्यर्थ बहते पानी को रिसाइकिल नहीं करते और उसका पुनः इस्तेमाल भी नहीं कर पाते हैं। तो आज का हमारा प्रश्न है कि आरओ से निकले हुए व्यर्थ बहते हुए पानी का इस्तेमाल हम कहां कहां कर सकते हैं और कैसे।
1: चलिए दोस्तों, चलने का वक्त हो गया, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ और भी बता दें। और आप जानते हैं कि हम आपको क्या बताएंगे, है ना? आज आप सुन रहे हैं स्वच्छ सुजल गांव की कहानी, रेडियो की जबानी, कार्यक्रम का दूसरा एपिसोड। आज के इस एपिसोड में हमने चर्चा की कि हम अपने शौचालय का रखरखाव और उसकी साफ सफाई कैसे करें, स्वच्छता जरूरी क्यों है, स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम और अब तक की हुई प्रगति की झलक।
2: और साथियों, अगले एपिसोड में हम लेकर आएंगे हर घर जल कार्यक्रम और अब तक हुई प्रगति की झलक के संदर्भ में जानकारी।
1: क्या आप जानते हैं कि जल जीवन मिशन में जल उत्सव या जल अर्पण दिवस क्या होता है? इस जानकारी के साथ ही जल जीवन मिशन के जारी होने से पहले लॉन्च और अब तक के कवरेज सहित मिशन के बारे में, नल जल कनेक्शन की उपलब्धियां, जल परीक्षण में महिलाओं की भूमिका, मिशन के घटक आदि के बारे में अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे।
2: अब आप अपने प्रश्न का जवाब हमको भेजिए। अपने गांव में शौचालय के रखरखाव पर उसके प्रति नजर रखिए, लोगों को बताइए, खुश रहिए, स्वच्छ रहिए, स्वच्छता फैलाइए और अपने देश को स्वच्छ बनाइए। स्वच्छ भारत यानी सुंदर भारत।
1: कार्यक्रम के अगले एपिसोड में दोस्तों हम फिर मिलेंगे। तब तक सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो, रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज। फिलहाल स्वच्छ का और सुजल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
3: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है बाल गीत। सबसे पहले सुनिए ये गीत, शीर्षक है विद्यार्थी।

बाल गीत। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन प्रोफेसर रामजन्म शर्मा, विषय समन्वय डॉक्टर राजेंद्र पाल और डॉक्टर अमरेंद्र बेहरा, आलेख प्रोफेसर कृष्ण गोपाल रस्तोगी, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, संगीतकार हरभजन सिंह, गायन स्वर देवाशीष, अनुजा और बच्चे, ध्वन्यांकन सतीश लाडे और दीपक पांडे, तकनीकी निर्देशन उपेंद्र नाथ, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी, निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

और दोस्तों, आज के कलाकार प्रोग्राम के जो एक्टर हैं उनका नाम है अनिल कपूर। बेहद ही हंसमुख और हमेशा ही जवान दिखने वाले अनिल कपूर बेहद पॉपुलर एक्टर हैं बॉलीवुड के। तो लीजिए, पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, अनिल कपूर जी एक पंजाबी हिंदू फैमिली में 24 दिसंबर 1956 को जन्मे थे और तब से लेकर आज तक बस हम सभी का मनोरंजन करते ही जा रहे हैं। लीजिए, पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

0: डार्लिंग, तुम हर वीक गाड़ी चेंज करता, क्या गाड़ी के साथ साथ लड़की भी बदलता?
1: ऐसा न कहो मेरे

अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया, अब अगर तुमने बेवफाई की तो खुदा कसम हम इन्हीं लहरों में डूब मरेंगे।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: यार तुम्हारा कुत्ता तो टाइगर जैसा दिखता है, क्या खिलाते हो तुम इसको? बंता ने कहा, अरे भाई ये टाइगर ही है, ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़कर इसकी शक्ल कुत्ते जैसी हो गई है।
2: ১৯৮০ के दशक में ढेर सारी फिल्में की अनिल कपूर ने, और हम सभी का भरपूर मनोरंजन किया अपने चुलबुले अंदाज में। लीजिए हो जाए उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर, आप मेरे साथ है ना। अनिल कपूर जी ने बहुत सारी फिल्में प्रोड्यूस भी की, जिसमें बधाई हो बधाई, माई वाइफ्स मर्डर, गांधी, माई फादर जैसी फिल्में आती हैं।

मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा। एक बार एक सब्जी वाला सब्जियों पर पानी छिड़क रहा था, छिड़कता जा रहा था। काफी देर हो गई तो ग्राहक ने गुस्से से बोला, सुनो, अब अगर भिंडी होश में आ गई हो तो 1 किलो तौल दो।

अनिल कपूर जी थोड़ा बहुत गा भी लेते हैं, जैसे उनकी बॉलीवुड कॉमेडी चमेली की शादी में उन्होंने थोड़ा सा गाया भी था। तो लीजिए, पेशे खिदमत है उनकी ही फिल्म का ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। आज के कलाकार अनिल कपूर जी की फिल्म का

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों, आज के कलाकार प्रोग्राम की अदाकारा हैं काजोल देवगन। शादी से पहले इनका नाम काजोल मुखर्जी था। अजय देवगन से शादी के बाद काजोल देवगन हुआ। आइए सुनते हैं इन्हीं की फिल्म का ये गीत।

काजोल देवगन का जन्म 5 अगस्त 1974 को बॉम्बे में ही हुआ। इनकी माताजी हैं तनुजा, जो कि खुद एक बहुत सफल अभिनेत्री रहीं। आइए सुनते हैं काजोल की ही फिल्म का ये सुंदर सा गीत।

0: कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।
1: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
2: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

काजोल अपने आप को बहुत ही शरारती, बहुत ही जिद्दी और बहुत ही स्ट्रांग अपनी यंग एज में मानती हैं। वो मानती हैं कि उनके पेरेंट्स को उन पर बहुत नाज रहा और वो भी अपनी मां तनुजा की ही तरह काफी सफल अभिनेत्री रहीं। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

काजोल की ज्यादातर फिल्में शाहरुख खान के साथ रहीं और हमेशा हिट ही रहीं। लीजिए सुने इनकी ही फिल्म का ये गीत।

1995 से 1998 के बीच में काजोल सबसे ज्यादा सफल अभिनेत्रियों में गिनी गईं। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का एक और गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर। आप मेरे साथ है ना? लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है काजोल की ही फिल्म का एक और गीत।

लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है बेहद खूबसूरत बेहद प्रतिभाशील अभिनेत्री काजोल देवगन की एक और फिल्म का गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम जहां शब्दों में एहसास है और हर शेर में दिल की बात। आज की इस महफिल में पेश है कुछ खूबसूरत गजलें जो आपके दिल को छू जाएंगी। आपके साथ हैं आपकी ही मेजबान, आपकी ही रेडियो दोस्त आरती जी। तो आइए शुरू करते हैं गजलों और सुरों का ये प्यारा सफर।
1: क्या कहें कुछ कहा नहीं जाता, क्या कहें कुछ कहा नहीं जाता, दर्द मीठा है मगर रहा नहीं जाता। मोहब्बत हो गई है इस कदर आपसे, बिना याद किए रहा ही नहीं जाता। किसी ने पूछा, सफर मायने रखता है या मंजिल? मैंने कहा साथ। नमस्कार, आदाब दोस्तों। 90.8 FM की तरंगों पर, SN रेडियोज और रेडियो टांडिया भील पर मैं हूं आपकी अपनी ही दोस्त आरती रॉय और आप सुन रहे हैं हमारा सबका प्यारा सा प्रोग्राम अल्फाज से एहसास तक। जी हाँ दोस्तों, आपका साथ ही तो है जो मुझे हर वक्त तहरीक देता है, यानी इंस्पायर करता है, हौसला अफजाई करता है। और इसी हौसले के साथ मैं हर बार लेकर आती हूँ आप सभी के लिए जज्बातों का एक अनोखा सफर। दोस्तों, अल्फाज तो एक जरिया हैं, असली मकसद तो उन छुपे हुए एहसासों को आपके दिलों तक पहुंचाना है। कभी थोड़ी सी खुशी, कभी हल्की सी नमी, तो कभी ढेर सारी यादें। आज इस सफर में सब कुछ शामिल होगा। हम बातें करेंगे, कुछ नज़में और कुछ गज़लें सुनेंगे और दिलों की दास्तान को लफ्ज़ों में पिरोएंगे। तो फिर क्या, अपने दिलों की धड़कनों की रफ्तार को थोड़ा सा थाम लीजिए और तैयार हो जाइए जज्बातों की इस हसीन लहर में डूबने के लिए। आइए मिलकर शुरू करते हैं ख्यालों का ये खूबसूरत सा कारवां, सिर्फ और सिर्फ आपकी ही दोस्त आरती के साथ अल्फाज से एहसास तक में। दोस्तों, प्रोग्राम के आगाज में आज आपके लिए लाई हूं एक बेहद मशहूर गजल, जो ओरिजिनली तो मेहदी हसन साहब ने गाई है, लेकिन देखते ढूंढते ये वर्जन सामने आ गया। तो जरा देर ठिठक कर, रुक कर बजा के देखा तो फिर वहीं रुक गई। एक लाइन, दो लाइन और फिर वो चलती ही रही। और मैं यही सोच रही थी कि मेरे प्रोग्राम की शुरुआत में अब यही बजेगी। गजल का मिसरा कुछ यूं है, तुम्हारी खामोशी में मेरी सदा है, तुम्हारी खामोशी में मेरी सदा है, हर एक सांस में तेरी आहट छुपी है। तुम्हें जो लगा था कि सब खत्म हो गया, वहीं से कहानी हमारी शुरू है। जो पल तुमने ठुकरा दिए बेरुखी में, वही पल तुम्हें रात भर जाग देंगे। दोस्तों गौर फरमाइए, कह रहे हैं जो पल तुमने ठुकरा दिए बेरुखी में, वही पल तुम्हें रात भर जाग देंगे। जगा के नहीं रखेंगे, जाग देंगे। तुम्हारी नजरों से चाहे उतर जाऊं, मगर दिल से तुम गिरा ना सकोगे। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। ये बहुत ही लेटेस्ट वर्जन है, काइंड ऑफ फ्यूजन म्यूजिक। तो आप भी सुनिए और बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये फ्यूजन वर्जन।

दोस्तों, हमारे प्रोग्राम की दूसरी पायदान पर आगे बढ़ते हुए जिक्र करते हैं हिंदुस्तानी संगीत की एक ऐसी अजीम शख्सियत का जिनकी आवाज में एक अजीब सा सुकून और पाकीजगी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मोहतरमा सुमन कल्याणपुर जी की। 1950 से 1960 की दहाई में उनके सुरों के सफर ने हर किसी को दीवाना बनाया। उनकी आवाज की सबसे बड़ी खासियत थी उनका क्लासिकल बेस और बेहद नरम और सुनहरी गायकी। और जब ऐसी आवाज को पर्दे पर बयां करने के लिए अदाकारा निम्मी जी मिल जाएं, तो जादू तो होना लाजमी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 1961 की फिल्म शमा की। इस फिल्म में निम्मी जी ने शमा नाम की एक ऐसी यतीम लड़की का किरदार निभाया था जो दिल ही दिल में अपने कजिन और फिल्म के हीरो परवेज से बेइंतहा प्यार करती है। परवेज एक शायर है, लेकिन कहानी में तब एक मोड़ आता है जब परवेज को एक अमीर घराने की लड़की रोशन आरा यानी सुरैया से मोहब्बत हो जाती है। तब अपनी मोहब्बत पर किसी और का हक देखकर शमा खुद परवेज और रोशन आरा की शादी करवा देती है। अपने अंदर के इस गहरे दर्द और जलन को छुपाते हुए पर्दे पर निम्मी जी ने जो खामोश अदाकारी की है वो दिलों को रुला देती है। खयाम साहब और गुलाम मोहम्मद जी की मौसिकी से सजी और कैफी आजमी साहब के लफ्जों में ढली ये गजल शमा के उसी इसार यानी सेक्रिफाइस को बयां करती है। तो सुनिए सुमन कल्याणपुर जी की रूहानी आवाज में उस शमा का वो सारा दर्द जो ऐसा जला कि पिघल पिघल कर रूह तक पहुंच गया। गजल का मिसरा कुछ ऐसे है। दुनिया तो क्या खुदा से भी घबरा के कह दिया, वो मेहरबान नहीं तो कोई मेहरबान ना हो। फिर कहते हैं, अब तो वही सुकून मिलेगा मुझे जहां में, ये संग दिल जमीन ना हो आसमान ना हो, जमीन आसमान ना हो। दिल गम से जल रहा है, जले पर धुआं ना हो, मुमकिन है इसके बाद कोई इम्तहान ना हो।

दोस्तों, जज्बातों के इस खूबसूरत सफर को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आपको लेकर चलती हूँ साल 1953 की एक ऐसी शाहकार फिल्म की तरफ जिसने जबान और अदाकारी के मायने ही बदल दिए। मैं बात कर रही हूँ फिल्म फुटपाथ की। जब फुटपाथ का जिक्र है तो जाहिर है भला दिलीप कुमार साहब की उस खामोश, गहरी और शानदार अदाकारी को कोई भूल सकता है भला। इस फिल्म में उनके साथ मोहतरमा मीना कुमारी जी भी थी, लेकिन इस फिल्म की रूह थी वो नज़्म जो आज भी अकेलेपन में गुनगुनाई जाती है। मजरू सुल्तानपुरी और अली सरदार जाफरी के लिखे उन लफ्जों को जब मौसिकार खयाम साहब ने धुनों में पिरोया तो उन्हें बयां करने के लिए आवाज किसकी चुनी गई? तलत महमूद साहब की। तलत साहब की आवाज का वो रेशम जैसा दर्द और उनका वो खामोश ठहरापन जब पर्दे पर दिलीप साहब के चेहरे के गम से मिलता है तो लगता है वक्त कहीं रुक गया हो, गमजदा हो गया हो। जैसे गजल का मिसरा है, अब तो आ जा कि अब रात भी सो गई, अब तो आ जा कि अब रात भी सो गई, जिंदगी गम के सहरा में खो गई। ढूंढती है नजर तू कहाँ है, मगर देखते देखते आया आंखों में दम। तो आइए दिल को थोड़ा गमगीन होने देते हैं। और इसमें मैं एक बात और शामिल करना चाहती हूँ दोस्तों, मुझे याद आया कि ये गजल मेरे दिल के इसलिए भी बहुत करीब है क्योंकि इसको मेरे मरहूम बड़े भाई बहुत सुर और सोज के साथ गाते थे। उनका नाम कुंदन लाल था, सहगल नहीं, और ये उनकी ऑल टाइम फेवरेट हुआ करती थी। ये गजल मैं आज उनकी याद को डेडिकेट कर रही हूँ, मेरे बड़े भाई जिनको मैं प्यार से चिया बुलाया करती थी। और सुनते हैं तलत महमूद साहब में ये बेहद हसीन और बेमिसाल गजल। अब तो आ जा के अब रात भी सो

दोस्तों, जज्बातों का ये सफ़र अब एक ऐसे मकाम पर आ गया है जहां सुरों के शहंशाह की रूहानी आवाज़ हमारा इंतज़ार कर रही है। जब भी सच्ची मोहब्बत और वफा की बात होती है तो दिल खुद ब खुद इम्तहान देने को तैयार हो जाता है। साल 1960 की शानदार तारीखी फिल्म बाबर का एक ऐसा नगमा जिसे बेमिसाल शायर साहिर लुधियानवी साहब ने अपने खूने दिल से लिखा और मौसिकार रोशन साहब ने एक बहुत संजीदा धुन में पिरोया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ संगीत के मसीहा मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में सजी इस पुरसोज गज़ल की। पर्दे पर अदाकार थे सोहन कपिला और अदाकारा अजरा के बीच के उस पाक इश्क को रफ़ी साहब की आवाज़ ने तारीखी कर दिया। इस गज़ल की खासियत ही यही है कि जब रफ़ी साहब अपनी मखमली मगर कशिश से भरी अल्फाज में वहशत और खुलूस जैसे अल्फाज को पुकारते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आइए रफ़ी साहब की पाक साफ आवाज़ के साथ मोहब्बत की उस गहराई को नापते हैं। गज़ल का मिसरा कुछ यूँ है। सलाम शौक पे रंजिश भरा पयाम न दो, सलाम शौक पे रंजिश भरा पयाम न दो, मेरे खुलूस को हिरसो हवस का नाम न दो, मेरी वफा की अकीदत का इम्तहान तो लो। फिर कहते हैं, न तख्त ताज न लालो जहर की हसरत है। फिर कहते हैं, मैं अपनी जान भी दे दूं तो एतबार नहीं कि तुमसे बढ़ के मुझे जिंदगी से प्यार नहीं,

दोस्तों, हमारी अगली पेशकश को मशहूर एल्बम जो कि गुलाम अली साहब और आशा ताई ने बनाई थी, जिसका नाम है मेराज़े गज़ल, उसमें से लिया गया है। जब गुलाम अली साहब इसकी धुन बना रहे थे तो उन्होंने जानबूझकर इसमें पूर्वी और अवधी लोक रंग डाला, जिसमें कागा और पवन यानी हवा जैसे खालिस देसी और मकबूल अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। रिकॉर्डिंग के वक्त आशा ताई थोड़ा हिचकिचाई कि एक संजीदा गजल एल्बम में कागा और पवन जैसे अल्फाज कैसे लगेंगे। तब गुलाम अली साहब ने उन्हें समझाया कि नासिर काजमी साहब ने इन अल्फाजों के जरिए जुदाई के दर्द को बहुत सादगी से पेश किया है। जब आशा ताई ने सावन की मल्हार के साथ इस गजल की रिकॉर्डिंग शुरू की तो स्टूडियो का माहौल बहुत भावुक हो गया। गजल के खत्म होने पर सब म्यूजिशियंस की आंखों में आंसू थे। इसे मेराज़े गज़ल एल्बम की सबसे भीगी गज़ल कहा जाता है। जब आशा ताई अपनी मखमली आवाज में सावन के इस दर्द को पुकारती हैं तो गुजरा जमाना आंखों के सामने जिंदा हो उठता है। सुनिए इस खूबसूरत मिसरे को। फिर कागा बोला घर के सूने आंगन में, फिर कागा बोला घर के सूने आंगन में, फिर अमृत रस की बूंद पड़ी, तुम याद आ

और फिर मक्ता अर्ज किया है, दिन भर तो मैं दुनिया के धंधों में खोया रहा, दिन भर तो मैं दुनिया के धंधों में खोया रहा, जब दीवारों से धूप ढली तुम याद आए। लीजिए आशा ताई और गुलाम अली साहब की आवाज में, फिर सावन रुत की पवन चली तुम याद आए, फिर पत्तों की बाजे बजी तुम याद आए। शौक फरमाए।

दोस्तों, आज के इस बेहद खूबसूरत सफर को मुकम्मल करने के लिए अब मैं आपको मौसीकी की और अदब के उस मकाम पर लेकर आई हूँ जहाँ लफ्ज खुद तारीख बन जाते हैं। जब हम सुनते हैं ये मिसरा, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो हमारा जहन सीधे कभी कभी फिल्म और अमिताभ बच्चन की तरफ चला जाता है या मुकेश साहब की आवाज की तरफ चला जाता है। लेकिन आज अल्फाज से एहसास तक की इस आखिरी कड़ी में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अजीम शायर साहिर लुधियानवी साहब की वो मुकम्मल और असली नज्म जो उन्होंने अपनी मशहूर किताब तलखियां में लिखी थी। इसी नज्म के को जब आप सुनेंगे तब भी आपको इसमें सुनाई देगा कि साहिर साहब जब वो 18-19 साल के थे तो उन्होंने उनको एक पंजाबी लड़की से उनसियत हो गई थी, यानी लगाव हो गया था, जो कि उस वक्त की लाइलाज बीमारी तपेदिक की शिकार होकर गुजर गई। तो साहिर साहब को उसका आखिरी दीदार भी वो नहीं कर सके, मरघट में अंदर जा नहीं पाए, तो उस तड़प का बयान उन्होंने कुछ यूं किया था। ये एक बेहद लंबी, गहरी और फिलोसफिकल नज्म है जिसे राजेश सिंह ने अपनी बेहद रूहानी आवाज़ में बिना किसी फिल्मी तामझाम के उसके असल और मुकम्मल रूप में गाया है। साहिर साहब ने जब ये नज्म लिखी थी तो इसका मिजाज सिर्फ रुमानी नहीं था,

सकती है। जरा तल्ख मिसरा गौर फरमाए, कौसर में वो धुली हुई बाहें भी जल गई, कौसर में वो धुली हुई बाहें भी जल गई, जो देखती मुझे वो निगाहें भी जल गई, अंबर से रिश्ते गे सुए शब्दों भी जल गए, वो दीदा हाय मस्तो पुर अफसून भी जल गए, मासूम कह कहूं का तरन्नुम भी मिट गया, झेपी हुई नजर का तबस्सुम भी मिट गया, ये दोपहर की धूप ये वीरान आसमां, तू ही बता कि अब मैं पुकारूं किसे कहां। दोस्तों, आपने इस नज्म का ये वर्जन शायद पहले ना सुना हो, पर आप जब आप इसे सुनेंगे तो सुनकर हैरान भी हो जाएंगे और आंखें नम भी हो जाएंगी। तो आइए सुनते हैं

मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं तेरा हम तेरी जुस्तजू। गुजर रही है कुछ इस तरह ये जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरज़ू। जमाने भर के दुखों को लगा चुका हूँ गले, गुजर रहा हूँ कुछ अनजानी रह गुजारों से। मुहीब साए मेरी समत बढ़ते आते हैं, हयात मौत के पुरहौल खारजारों से। न कोई ज़्यादा न मंजिल न रोशनी का सुराग, न कोई ज़्यादा न मंजिल न रोशनी का सुराग। भटक रही है खलाओं में जिंदगी मेरी, इन्हीं खलाओं में रह जाऊंगा कभी खोकर। मैं जानता हूँ मेरी हमनफर मगर ही हुई कभी कभी मेरे

0: दोस्तों, आपके मेजबान आरती जी के साथ आज की हमारी गजलों भरी महफिल बस यहीं खत्म होती है। उम्मीद है ये गजलें, ये अल्फाज आपके दिल को पसंद आए होंगे। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आरती जी फिर लौटेंगी नई गजलों और नई भावनाओं के साथ। नमस्कार।
1: आप जिनके करीब होते
2: हूँ से आरजे राकेश
3: अने हूँ से आरजे कमता डामोर
2: तमु हामली रासे कार्यक्रम खेती वाड़ी आपड़ा झाबवाना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआनी आवाज पर। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है तुम्हारो सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआनी आवाज पर। हूँ छे आरजे राकेश अने रोजनी जेम तमारी वस मा आज फेर कार्यक्रम खेतीवाड़ी लीने हाजिर थाय छे। अने किसान भाइयों, हूँ रोज तमारी वस मा खेतीवाड़ी नी असल असल वातियों, खेतीवाड़ी नी समस्याओं अने तिना समाधान नी वातियों लीने रोज तमारी वस मा एमज अने इना समय पर हाजिर थातो रहूं छे। तो किसान भाइयों, आज ना खेतीवाड़ी कार्यक्रम मा आपड़ो चर्चा नो विषय रहे सफेद मूसळी नी खेती, सोयाबीन में थावावाली हानि अने तीनी देखी वसवाना उपाय नी वातियो जाणवाना छे, अने हाटाना खेतर में खरपतवार नियंत्रण नी वातियो पण आज आपू इना कार्यक्रम में वारंवार जाणवाना छे। अने ए बधी वातियो वताड़े मारे सहयोगी भाई कमता डामोरजी। तो कमता जी आवो अने आपड़ा झाबवा जिलाना किसान भाईओं ने ये बधी वातियो तकनीकी तरीका देखी समझाड़ो।
4: सोयाबीन की फसल में थावाला नुकसान अने हानि थी वसाड़वाना उपाय ना बारा में जानकारी हमला जाय रहेशे। किसान साथियों, सोयाबीन 20वीं सदी की चमत्कारिक फसल ना नाम थी जानी से, अने सोयाबीन में प्रोटीन ज्यादा रहवा थी कुपोषण की समस्या दूर करने की ताकत, इनी हाथे हाथे 20% तेल रहनी अने इना ये ताकत पाई गई से, अने इना कारण मध्य प्रदेश में सोयाबीन नो फैलाव काफी तेजी तो थायो से। खरीब अने धान ज्वार उड़द आदि नो जगह भी सोयाबीन ले लीधी से। तो किसान साथियों, किसानों ने भी असल आर्थिक लाभ मिली रहे। तो किसान साथियों, आज हूँ तमने एवं सोयाबीन की जो तकनीक है, किंतु मौसम ना बदलता तेवर थी शायद ही आपने समय समय पर एवं किस्मी चयन करव जो अने सोयाबीन की वेगी पाकवा वाली फसलों की ओर करव जो ये देखीजिए कि अक्सर सितंबर महीना थी और वार महीना तक इनो खत्म थाई जाय छे अने सोयाबीन नी सिंचाई करवू घणो जरूरी रहेशे। अगर बारिश खत्म सितंबर में थाई तो आखरी में सिंचाई करवी घणी जरूरी। सोयाबीन नी वेगी पाकवा वाली किस्मियो जेवी रीते JS 81-1504 अने 80-85 दिन में पाकी जाय छे, अने JS 81-333 या 90-95 दिन में पाकी जाय छे। तो किसान साथियों, 1625 जो कि 90-95 दिन में पाकी जैसे अने असली पैदावार इनथी ली जा सके से वेगी बवणी। तो किसान साथियों, किसानों ने वेगी बवणी करवा थी भी बाद में अगर पानी पड़े तो फसल हड़वानो भी डर थाई जाए, अने तीनी हारू किसान भाई ने इना ने हिसाब देखीने लगाड़व जो। तो किसान साथियों, पोत संरक्षण सोयाबीन में ये देखी गई है कि 20-25 दिन की अवस्था में तना मक्खी नो भी आक्रमण थाई जाए से, तीन थी पायड़ा हुकवा लागे से, अने बाद में पौधा नी बाड़ थी पायड़ा हुकवानु बंद थाई जाए से, पुन इन मा मक्खी तना ने अंदर भराई ने खाई जाए से, तीन थी फलियो कमावे से, अने उपज में 15-20% नी कमी आवी जाए से। इना तरह थी सेमिल ऊपर फलों नी कलियो खाई जाए से, अने बांझपन नी समस्या आवी जाए से। सफेद मक्खी पीली शीरा मोजे छीत कबरा रोग फैले से, अने गार्डन बीटल तना कापी ने पाड़ दे से, फलियों में फली छेदक बीट खाई जाए से, अने फलियों पोछरी जाए से। कृषि अनुसंधान ना अनुसार यो जानकारी मिले से कि इनो समय पर किसान भाई इनो उपचार करवो जोई। थायरम थी बीज नो उपचार खड़ी फसल में क्यूनल फास या मोनोकोटोफास 25-30 दिन की अवस्था में 2-3 छिड़काव करवो जो। सोयाबीन 15-20% बढ़ेली पैदावार ने बांझपन अने थूड़ मक्खी अने फल छेदक कीट तो काफी प्रकोप थाय से। तो किसान साथियों, सोयाबीन की उन्नत किस्मी नो विवरण अगर देखी जाए तो विभिन्न क्षेत्रों में उन्नत किस्मी अगर देखी जाए, मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड, राजस्थान, गुजरात, અને ઉત્તરી ઓડિશા વેગી પાકવા વાળી કિસ્મી માં અગર દેખી જાય તો 90-95 દિનમાં પાકવા વાળી JS 335 JS 7105 JS 9041 પંજાબ 1 અહિલ્યા 2 અને NRC 7 અહિલ્યા 2 NRC 12 રાજસ્થાન ગુજરાત અને ઉત્તરી ઓડિશામાં. તો કિસાન સાથીઓ, એ મધ્યમ સમયમાં પાકવા વાળી અવધિ 105 થી લગાડીને 110 ધનને અંદરમાં પાકવા વાળી સોયાબીનની કિસ્મી હશે JS 8021 PK 472 JS 72280 ગૌરવ JS

0: बहुत खूब, बहुत ही प्यारी स्टार्ट। अरिंदम जी, क्या आपके जहन में, आपके दिमाग में, आपकी सोच में ऐसा कोई सवाल है जो शायद आप चाहते हो कि मैं आपसे पूछ लूं और आप उसका कुछ जवाब दे दें? कोई सवाल है आपके दिमाग में ऐसा?
1: हाँ, मेरा ऐसा कुछ है कि आप मुझसे पूछे कि मेरा फेवरेट सिंगर कौन है, या मेरा फेवरेट हीरो कौन है, या मेरा फेवरेट म्यूजिक कंपोजर कौन है।
0: बहुत खूब।
1: तो उसका जवाब मैं बोलना चाहता हूँ कि वैसे तो मेरा फेवरेट सिंगर सभी है, मतलब रफी साहब है, मन्ना दे साहब है, किशोर कुमार जी है, कुमार सानू दा, उदित जी सभी है, लेकिन मेरा सबसे फेवरेट, मैं जिसको फॉलो करता हूँ, वो किशोर दा है।
0: जी
1: और मतलब बचपन से किशोर दा का गाने मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था, तो मैं किशोर दा का बहुत बड़ा फैन हूँ। और मुझे हीरो में से विनोद खन्ना जी बहुत पसंद है, और मैं छोटा से ही उनका बहुत फैन हूँ। तो और म्यूजिक कंपोजर में तो मेरा फेवरेट है आर डी बर्मन साहब
0: आरडी वर्मन।
1: जी जी
0: बहुत बढ़िया।
1: और तो सभी का गाना ही सुनता हूँ, इसका ये मतलब खाली किशोर दा का गाना सुनता हूँ ये नहीं, सभी का गाना मैं सुनता हूँ, और सभी को ही मैं मतलब सब सिंगर्स मेरा फेवरेट है, सबका गाना ही मैं एडमायर करता हूँ।
0: बहुत खूब। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए एक और प्यारा सा गीत सुनते हैं, अरिंदम जी का ही गाया हुआ।

0: बहुत प्यारा गीत। अरिंदम जी, जब आप छोटे थे स्कूल में आपका सबसे फेवरेट फेवरेट सब्जेक्ट क्या था?
1: स्कूल में मेरा बचपन में फेवरेट सब्जेक्ट था ज्योग्राफी। उसका बाद आफ्टर क्लास 8 मेरा मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट बन गया। वो कुछ मेरा टीचर का कंट्रीब्यूशन था, जिनके पास मैं ट्यूशन करते थे, तो उन्होंने इतना मतलब अच्छे से पढ़ाते थे कि मैथ्स मेरा फेवरेट बन गया।
0: बहुत
1: टोटली इट्स वो शिफ्ट हो गया मेरा पसंद।
0: क्या बात है, अमेजिंग। ज्योग्राफी से मैथमेटिक्स की तरफ, बहुत खूब
1: जी।
0: ये तो एक बुक का टाइटल हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए एक प्यारा सा गीत सुनते हैं।

0: बहुत खूब, बड़ी प्यारी गायकी। अरिंदम जी, आपके विचार में, आपके इमेजिनेशन में अगले 5 सालों में हमारी दुनिया कैसी दिखाई देगी, थोड़ा इमेजिन करके हमें भी बताइए ना।
1: देखिए, अभी साइंस जो है वो इतना तरक्की कर गए हैं कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में तो टेक्निकली हम लोग बहुत सारे कुछ देख सकते हैं। हाँ, उसमें से कुछ है ट्रांसपोर्टेशन, रोड्स, मतलब हम लोग का जो रफ्तार है, हम लोग यहाँ से वहां जाने के लिए जो अभी जो ट्रेन का हम हर वक्त देखते रहते हैं कि ट्रेन कितना, ये ट्रेन इस टाइम पहले जाता था, अभी उसका स्पीड बढ़ गया है, इतना टाइम में जाएगा, दूसरा ट्रेन दे दिया है इस रूट में। तो ऐसा ट्रांसपोर्टेशन या बोलिए या कुछ, इसमें तो बहुत सारे डेवलपमेंट देखने को मिलेगा मुझे लगता है। और उसका साथ साथ ये भी मुझे डर लगता है हमेशा समीर जी
0: जी
1: कि जो ग्लोबल वार्मिंग, ये तो बहुत दिनों से ही चल रहा है प्रॉब्लम। तो ये जो हम लोग का जो पेड़ है, हम लोग जो डिफोरेस्टेशन करते हैं, पेड़ काट के सब जगह मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स हो रहा है या सब जगह, मतलब जो है फॉरेस्ट एकदम ही चला जा रहा है।
0: जी
1: और उसी के लिए देखिए, जो फॉरेस्ट का जो एनिमल्स है, जो जो फॉरेस्ट में रहता है, वो लोग का भी लाइफ एंडेंजर्ड हो गया है।
0: करेक्ट।
1: और हम लोग का भी बहुत बहुत, मतलब जैसे देखिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए नॉर्थ पोल जो है उसमें, वहां भी मतलब बहुत सारे कंट्रीज अंडर वाटर हो सकते हैं। हाँ,
0: वेरी राइट।
1: तो ऐसे कुछ डिजास्टर हो सकता है इन फ्यूचर। और उसका साथ साथ, मतलब ग्लोबल वार्मिंग का साथ साथ, जैसे बहुत सारे बीमारी है, जैसे कैंसर या बहुत सारे होता है, हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो हम लोग को इसी इसके लिए, मतलब अभी से प्रिकॉशन तो ले मतलब शुरू हो गया है, लेकिन इसका साथ हम लोग को, कॉमन आदमी को भी इसका साथ, मतलब बहुत इसको ध्यान में रख के हम लोग को पेड़ लगाना चाहिए ज्यादा, या कुछ ग्लोबल वार्मिंग का जो जो जो है वो स्टेप्स हम लोग को फॉलो करना चाहिए,
0: राइट। अरिंदम जी, दोस्तों आपने सुना अरिंदम जी की क्या कंसर्न्स है अगले 5 सालों के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक गीत सुनते हैं और फिर चर्चा करते हैं।

0: बहुत खूब। अरिंदम जी, अगर आप अपने बारे में एक बुक लिखें, किताब लिखें, तो उसका टाइटल क्या रखेंगे आप?
1: ये तो कभी सोचा नहीं कि मैं अपने बारे में लिखूंगा, लेकिन अगर मैं लिखूं तो मैं एक टाइटल, मेरा मतलब मैं जो दिमाग में आ रहा है वो है असंपूर्ण।
0: असंपूर्ण
1: असंपूर्ण इसलिए है कि देखिए, हम लोग का जो लाइफ है, हम लोग का जो जीवन है, इसमें हम लोग का जो डिजायर्स है, हम लोग का जो मतलब हम लोग ये चाहते हैं, कभी वो चाहते हैं, ये तो कभी खत्म नहीं होता है। और ये हर एक स्टेज में हम लोग जो बचपन से बड़े होते जा रहे हैं, उम्र के साथ साथ हम लोग का जो एम्बिशन है वो भी चेंज होते जा रहा है, जो डिजायर्स है, तो हम लोग का, मुझे लगता है ये कभी खत्म नहीं हो। और कभी कभी मतलब मुझे लगता है कि हम लोग का जो जीवन में हम लोग कभी कभी बहुत सारे गलतियां करते हैं, तो वो अगर मुझे स्कोप मिले तो वो भी सुधारने का कोई मौका मिले, ऐसा कुछ हो, तो मतलब ये कभी कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए मुझे लगता है कि इस, अगर इसको ध्यान में रखते हुए मैं अगर कोई मेरा ऐसे ऑटोबायोग्राफी लिखूं तो उसका नाम मैं असंपूर्ण नहीं रखूंगा, क्योंकि हम लोग का ये मतलब ये डिजायर्स नेवर एंडिंग होता है।
0: फैंटास्टिक, वेरी क्यूट, वेरी ब्यूटीफुल, असंपूर्ण, बहुत ही प्यारी शीर्षक। तो दोस्तों आपने सुना, तो चलिए एक गीत भी सुनते हैं।

0: बहुत बहुत सुंदर गीत। अरिंदम भाई, आप मुझे प्लीज ये बताएं कि आपका पसंदीदा रंग कौन सा है और वो रंग आपके बारे में क्या कहता है?
1: मेरा पसंदीदा रंग तो पीला, येलो कलर है, येलो।
0: ओके।
1: तो येलो मुझे पसंद है क्योंकि येलो वो जो है सूर्य का जो कलर है, मतलब जो ब्राइटनेस देता है, सनशाइन। तो वो मुझे लगता है कि वो अगर मैं कहीं जाता हूँ तो येलो, मतलब मुझे वो ब्राइटनेस जो है, मतलब मेरा जो वहाँ जो उपस्थिति है वो मुझे प्रेजेंट करेगा। हाँ, जो सनशाइन है, जो ब्राइटनेस होता है, जो तो मेरा उसी के लिए मुझे येलो बहुत पसंद है। मतलब वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है,
0: बहुत कलर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस।
1: और वो एनर्जी का जो इंडिकेशन है, मतलब हम लोग का काम ने, मतलब ये तो होता है, मतलब टायर्डनेस या कुछ रहने से नहीं होगा, क्योंकि ये पब्लिक सर्विस है तो एनर्जी रहना जरूरी है। तो येलो कलर मुझे लगता है कि मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ा देता है।
0: बहुत खूब। दोस्तों, आपने सुना कि किस तरीके से कलर, येलो कलर अरिंदम जी को ताकत देता है, पावर देता है। तो चलिए गीत भी सुनते हैं, एक प्यारा सा अरिंदम जी की आवाज में।

0: बहुत खूब अरिंदम जी, अगला सवाल मेरा बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आएगा आपको। फर्ज कीजिए आपको किसी एक हिस्टोरिकल फिगर के साथ चाय कॉफी कुछ पीने का मौका मिल जाए, तो आप किसके साथ बैठना चाहेंगे, चाय कॉफी पीना चाहेंगे?
1: मुझे ये बहुत कठिन सवाल है, लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे स्वामी विवेकानंद बहुत मजे, मैं उनको बहुत फॉलो करता हूं उनका, तो मैं उनका साथ बैठना चाहूंगा।
0: बहुत खूब,
1: क्योंकि उनका जो विल पावर है, उनका जो मेमोरी पावर था, वो तो मुझे लगता है, मुझे उनको उनसे जानना चाहता हूँ कि आपका ये जो विल पावर या मेमोरी जो कैपेसिटी है, ये आप कैसे कर लेते थे? इतना एक किताब में मैंने सुना था, वो पूरा इतना मोटा किताब पढ़ के पूरा याद रखते थे। तो ये स्वामी जी का जो है, और उनका जो मतलब बुराई का जो खिलाफ जो उन्होंने जो स्टेप लिया था, उनका जो शक्ति था, तो ये मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, मतलब हीरोइज्म।
0: अमेजिंग, बड़ी प्यारी बात कही आपने। आप उनसे, विवेकानंद जी से मुलाकात करना चाहेंगे?
1: जी,
0: बहुत
1: जी,
0: बहुत शानदार पर्सनालिटी, बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी थे वो। तो दोस्तों चलिए फिर एक खूबसूरत सा गीत हो जाए।

0: बहुत बहुत बढ़िया अरिंदम जी, एक और इंटरेस्टिंग सवाल। इमेजिन कीजिए कि अगर इंटरनेट जिसके सहारे हमारी पूरी जिंदगी अब चल रही है, रात को 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक बंद कर दिया जाए हमेशा के लिए, फॉर एवर, रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे तक, तो आपकी जिंदगी के अलग अलग पहलुओं में क्या फर्क पड़ेगा? मतलब हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, मेंटल हेल्थ, फैमिली, रिलेशनल, तो क्या कहां कहां इंपैक्ट आएगा आपकी जिंदगी में?
1: मुझे लगता है कि देखिए, अगर इंटरनेट रात 8 बजे से सुबह 8 बजे बंद हो जाएगा तो हम लोग का, मतलब जो कभी कभी ऑफिशियल वर्क में, मैं जो प्रोफेशन में हूँ, जो जॉब में, वहाँ तो इम्पोर्टेंट इमरजेंसी मेल आता रहता है या मैसेज आता रहता है, ये अगर हम लोग को नहीं मिलेगा तो मतलब ऑफिशियल जो वर्क होता है उसमें हैम्परिंग होगा। हाँ, और उसमें हैम्परिंग होगा, मतलब ये ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इम्पोर्टेंट है, मतलब किसी जगह का कोई एक्सीडेंट हो गया और उसका मैसेज मुझे नहीं मिला, मतलब अगर कॉल में आएगा तो ठीक है, अगर हायर अथॉरिटी मुझे कॉल करके बताए कि यहाँ ये डिजास्टर हुआ है, आपको जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी डिटेल्स जो रहता है, कभी कभी वो इंटरनेट में आता है, मतलब ये जो कम्युनिकेशन गैप होगा इसमें लगता है वो हैम्परिंग होगा।
0: ओके,
1: ये जो है, और मतलब ये नेगेटिव साइड मैं बोल रहा हूँ, और मतलब हम लोग का जो कभी कभी मोबाइल में हम लोग चैट करते हैं दोस्तों के साथ, वो बंद हो जाएगा। लेकिन पॉजिटिव साइड ये भी है कि हम लोग, मतलब वो रात 8 बजे से 10 बजे तक अगर हम लोग आजकल क्या करते हैं, मोबाइल में ही टाइम बिता लेते हैं आफ्टर ऑफिस आवर्स, तो उसका जरिए से हम लोग का जो रिलेटिव्स है या फ्रेंड्स है उनका साथ मिलना जुलना सब बंद हो गया। तो ये हो सकता है कि अगर हम लोग वहां जाने के लिए स्कोप मिलेगा कि हाँ भाई, रात 8 बजे के बाद तो मैं फ्री हूँ, तो मैं तुम्हारा घर आ जाऊंगा, मतलब ये जो रिलेशन है, ये रिलेशनशिप बहुत बढ़ेगा, मतलब ये एक दूसरे का साथ जो है पहले जैसा था वो ये आजकल बहुत जो कम होते जा रहा है, ये बहुत ये डेवलप्ड होगा।
0: करेक्ट,
1: रिलेशनशिप में डेवलपमेंट आएगा। और एक चीज होगा कि इंटरनेट बंद, इंटरनेट से ओटीटी प्लेटफॉर्म में बहुत सारे मूवीज वेब सीरीज में लोग देखते रहते हैं, तो सिनेमा हॉल जाना तो आदमी लोग कम करती हैं बहुत, तो मुझे लगता है कि 8 बजे से सवेरे 8 बजे एक ही शो होता है, नाइट शो, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो टाइम मिलता है मूवीज देखने को रात में ही, ज्यादातर लोग मोबाइल में ओटीटी सीरीज में या वेब सीरीज देखते हैं, तो मुझे लगता है ये मतलब वो जो सिनेमा हॉल कल्चर था वो फिर से थोड़ा रिवाइव करेगा, मतलब आदमी लोग सिनेमा हॉल में जाना शुरू करेगा, कम से कम नाइट शो में, आफ्टर ऑफिस आवर्स और आफ्टर देयर वर्क विल बी फिनिश्ड, दे कैन रिलैक्स गोइंग इन द सिनेमा हॉल।
0: फैंटास्टिक, अमेजिंग, बहुत बहुत बढ़िया थॉट प्रोसेस अरिंद भाई, थैंक यू सो मच। दोस्तों, आपने सुना कि इंटरनेट बंद होने से अरिंदम जी क्या सोचते हैं कि हमारे रिलेशंस पर, हमारी जिंदगी पर क्या असर आएगा, आप भी सोचिए। और चलिए, तब तक एक बहुत खूबसूरत सा गीत भी सुनते हैं साथ साथ अरिंदम जी की आवाज में।

0: बहुत खूब। अरिंदम जी, आप अपने बर्थडे पर, अपने जन्मदिन पर क्या गिफ्ट पाना चाहेंगे? कोई ऐसा गिफ्ट है आपके दिमाग में कि बचपन से कि ये मिल जाता तो मजा आ जाता, क्या गिफ्ट?
1: मुझे आजकल तो ये कम हो गया है, मतलब मार्केट में अवेलेबिलिटी भी कम हो रहा है, लेकिन मुझे अगर कोई गाने का ऑडियो सीडी या MP3 गिफ्ट करे, और वो भी अगर कुछ उसमें कुछ रेयर सॉन्ग्स रहता तो मैं बहुत खुशी।
0: बहुत खूब, अमेजिंग। देखिए दोस्तों, कितनी अमेजिंग बात बताई अरिंदम जी ने कि अगर उनको कोई रेयर सॉन्ग्स की MP3 कैसेट या CD दिए जाए तो उन्हें कितना। देखिए, इस गिफ्ट की कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है, ये 5 रुपए में मिलेगा या 5,000 में मिलेगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। इट इज द यू नो वैल्यू ऑफ दैट गिफ्ट। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सोचिए, गिफ्ट को पैसे से मत तौलिए, उसकी जो भावनात्मक वैल्यू है, उसकी जो इमोशनल वैल्यू है, उससे उसको तौलिए। बहुत खूब, चलिए
1: एकदम
0: इसी तरीके का एक प्यारा सा गीत सुनते हैं अरिंदम जी का।

0: अरिंदम जी, हम हमारे प्रोग्राम की उस जगह पे आ गए हैं जहां पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए कोई मैसेज दीजिए, कोई संदेश दीजिए, बात कीजिए उनसे, टॉक टू देम।
1: आज मेरे जो सुनने वाले हैं मेरे प्रोग्राम, मैं सभी को और एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं। और मुझे ये मैसेज है कि आप लोग देखिए, हम लोग का लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत स्ट्रेस है, तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप मन को ताजा रखने के लिए, स्ट्रेस फ्री रखने के लिए आप लोग गाना सुनिए, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में ऑलरेडी म्यूजिक थेरेपी चालू हो गया है, बहुत दिन से ही हुआ है, तो हम लोग का यहाँ आप लोग अभी मुझे नहीं मालूम ऐसा कहाँ हो रहा है कि नहीं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि म्यूजिक एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए से हम लोग का माइंड बहुत फ्रेश होता है, मन का जो शांति मिलता है। और मैं तो पर्सनली ये करता हूँ कि सारा दिन जो है वो रात में गाना सुनने से वो जो टायर्डनेस या स्ट्रेस सब दूर हो जाता है। गाना सुनिए, गाना मतलब गाना करने से भी होगा, अगर मैं जैसे सिंगिंग करता हूँ ऐसा, तो आप लोग गाना सुनिए, मैं आपको यही रिक्वेस्ट है, आप ज्यादा से ज्यादा गाना सुनिए, और आजकल रेयर सॉन्ग्स भी बहुत मिलता है, यूट्यूब में भी मिलेगा, वो रेयर सॉन्ग्स भी सुनिए। तो यही मेरा आप सबसे ये है कि आप गाना सुनिए और लाइफ को आनंद, लाइफ का जो आनंद है वो लीजिए, लाइफ को स्ट्रेस फ्री कीजिए।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बड़ा ही प्यारा संदेश दोस्तों, विचार करने वाला संदेश कि हमें किस तरीके से अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना है। अरिंदम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जो आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपसे बातें की, इंटेलिजेंट मैसेजेस और बहुत प्यारे गाने। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड कमिंग इनटू माय प्रोग्राम।
2: तो दोस्तों, न तो सुनना भूलिएगा और न ही पार्टिसिपेट करना, क्योंकि अब हमारा प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में तब्दील होने वाला है, जहां से कितने ही टैलेंट्स प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स पर जाने वाले हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां, बने रहिए हमारे साथ, मैं समीर और मेरे दोस्त नितिन के साथ।
3: नहीं देखा है तो जाना, नहीं जाना है तो माना, नहीं मुझे पहचाना, नहीं दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहां ठहरे जो मेरे आगे आना, नहीं देखो टकराना, नहीं किसी से भी हारे नहीं हम।

0: नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के कलाकार के इस प्यारे से प्रोग्राम में, जहां कुछ ख्वाब आवाज बनकर सचते हैं, कुछ जज्बात गीतों में ढल जाते हैं, और जब दिल गाता है तो हर सुनने वाला अपना सा लगने लगता है। आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही कलाकार जिनकी आवाज में सच्चाई है और सुरों में जादू। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करें। आज के कलाकार में आज जो मेहमान हमारे साथ हैं, जब आप उनको जानेंगे, उनके गायकी सुनेंगे, उनके म्यूजिक को सुनेंगे, उनके पैशन को जानेंगे, तो दोस्तों अपने ऊपर भी आपको घमंड हो आएगा कि किन से मुलाकात हुई आज। जिंदगी ने एक और एहसान कर दिया हम पर, राजेश्वरी जी से मिलाकर। तो आज हमारी मेहमान हैं राजेश्वरी जी। मैं राजेश्वरी जी का वेलकम करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, आभार प्रकट करता हूं, और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि राजेश्वरी जी, हमारे सब सुनने वालों को जो आज आपको सुन रहे हैं, उनको अपने बारे में थोड़ा सा बताइए ना, आप कौन हैं और कहाँ हैं आप?
1: नमस्कार समीर जी, मेरा नाम राजेश्वरी दोडमनी है। मैं कर्नाटका बैंगलोर से हूँ। मेरी मातृभाषा कन्नड़ा है। पहले तो मैं सबसे पहले रेडियो SN के समीर जी और नितिन जी को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे जैसे नॉन सिंगिंग सिंगर्स को भी आप लोग अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अपने गानों को सुनाने के लिए और हमसे बातचीत कर रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात, मैं सारे श्रोताओं को भी धन्यवाद बोलना चाहूंगी, क्योंकि हमारे कॉन्वर्सेशन को सुनने के लिए, और मैं जैसे भी गाती हूँ, हमारे गानों को सुनने के लिए आप लोग टाइम निकाल के बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, मीन्स अ लॉट। मैं अपने बारे में, मैं एक मूलतः एक शिक्षिका हूँ। पिछले 22 साल से मैं शिक्षण क्षेत्र में ही हूँ।
0: एक मिनट रुकना राजेश्वरी जी, अभी तो आपने कहा था कि आपको हिंदी में प्रॉब्लम है, कितनी बढ़िया तो हिंदी बोल रहे हो यार आप, अमेजिंगली ब्यूटीफुल शिक्षिका और मूलता, क्या क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हो।
1: प्लीज
0: गो ऑन।
1: थैंक यू सो मच फॉर बूस्टिंग माय कॉन्फिडेंस। या तो इसी क्षेत्र में हूँ मैं पिछले 22 साल से, और भगवान की कृपा और मेरी माता पिता के आशीर्वाद से मैंने खुद के एक पाठशाला भी खोली है बैंगलोर में ही। अभी इस साल वो 18वां साल शुरू करेगा, एकेडमिक ईयर शुरू करने वाला है। और तो बच्चों को पढ़ाना और बच्चों की व्यक्तित्व विकसन के लिए एक शिक्षक का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए मैं मरते दम तक एक इस फील्ड से ही जुड़ी रहना चाहूंगी। तो ये है मेरे बारे में। और दूसरी बात, मैं दूरदर्शन में न्यूज रीडर हुआ करती थी, और अब भी जब भी वक्त मिलता है तो मैं चाहती हूँ, और पहले इंग्लिश और कन्नड़ा दोनों न्यूज पढ़ती थी यहाँ बैंगलोर में, और अब जब टाइम मिलता है, जब वक्त निकाल सकती हूँ, तब मैं न्यूज या लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल का रिव्यू जो होता है वो पढ़ने के लिए जाती हूँ।
0: So,
1: ये है मेरे बारे में।
0: ओके, सो जैसा राजेश्वरी जी अभी अभी आपने बताया कि आप एक शिक्षिका हैं, टीचर हैं, अब इस बात को सुनकर, इस आपके इंट्रोडक्शन को सुनकर मेरे दिमाग में तो बीसियों सवाल आ रहे हैं, विच आई वुड लाइक टू आस्क यू, आई वुड लाइक टू डिस्कस ऑल दीज विद यू, बिकॉज हमारे सुनने वालों में से भी बहुत लोग टीचर होंगे। बट चलिए अभी आपके संगीत को सुनने के लिए पहले आपके इन गीतों का लुत्फ उठाते हैं, आनंद लेते हैं, एंजॉय करते हैं, एंड देन आई विल कम बैक ऑन दोस क्वेश्चंस। आपने जो सवाल उठाए, आपने जो मतलब बात कही कि आप शिक्षिका हैं, वहां पर हम लोग वापस आएंगे।

0: बहुत खूब।
1: तो दोस्तों, आपने राजेश्वरी जी के गीतों को सुन लिया, अब चलो उनके बारे में जानते हुए उनके विचारों को समझते हैं। 18 साल, 18 years, she had been having this school out there in Bangalore, so that is very very serious. 18 सालों से बच्चों को पढ़ाना कोई एक पैशनेट इंसान ही कर सकता है। सो शी इज अ टीचर, आई एम श्योर टीचर नहीं, आप तो शायद प्रिंसिपल या डायरेक्टर होंगे ना वहाँ।
2: हाँ, बट मैं खुद को टीचर ही बुलाना चाहूंगी, क्योंकि मैं टीचर ही आइडेंटिफाई करती हूँ खुद को।
1: That's demure.
2: प्रिंसिपल वो सब बाद में आ गया, लेकिन मैं फ्रॉम द हार्ट आई एम अ टीचर।
1: That's quite demure. तो मुझे सबसे पहले ये बताओ मैम कि बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल है, बच्चों को पढ़ाना एक शिक्षक का काम होता है, यानी कि उसको रास्ता दिखाना। डू यू एग्री ऑन दिस?
2: Absolutely.
1: अब आजकल कुछ अजीबोगरीब सा होते मुझे चारों तरफ दिखाई दे रहा है, जिसका बेसिकली विक्टिम मैं भी हूं। यस, myself, आई एम टीचिंग इन अ कम्युनिटी कॉलेज, जहां पर मैं बच्चों को एम्प्लॉयबल होने की कोशिश करने के लिए पढ़ा रहा हूं। नाउ द कॉलेज इज एक्चुअली प्रेशराइजिंग मी कि उन बच्चों की
2: सिलेबस
1: नहीं, सिलेबस इज ओके, उनकी नौकरी लगवाऊं। आई फेल टू अंडरस्टैंड कि ये टीचर्स कब से प्लेसमेंट ऑफिसर्स कब से हो गए हैं। तो चारों तरफ देख रहा हूं जितने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए ये झूठा दिलासा दे रहे हैं कि आप हमारे यहां आओ, हम आपकी नौकरी लगवा देंगे। आप इस बारे में क्या कहना चाहोगी राजेश्वरी जी?
2: सी, दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बिकॉज जो फैक्ट्स हैं, हम बच्चों को पहले से फैक्ट्स को सिखाएं और फैक्ट्स को दिखाएं, वही बेहतर होगा। जब झूठ का सहारा लेते हैं तो सच्चाई नहीं होगी। और

0: बहुत खूब राजेश्वरी मैम, कुछ साइकोलॉजी समझने की कोशिश करूंगा. प्लीज प्लीज प्लीज आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज इन एडवांस. इफ एट ऑल मैं थोड़ा ज्यादा बोल जाऊं तो मुझे माफ कर दीजिएगा. मैम एक बात बताओ, डू यू आर यू स्केयर्ड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स?
1: ओह ऑफ कोर्स, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन.
0: ओके, तो अगर मैम अगर हम कहा जाता है कि हम गलतियां करें तो हम सीखते हैं, तो फिर हम गलती करने से डरते क्यों हैं?
1: क्योंकि बच्चों के सामने एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये. क्योंकि पहली बात तो ये है कि बच्चे टीचर्स को अपनी करेक्ट एंड सी एक बात है ऑनेस्टी, ऑनेस्ट रहना बच्चों के सामने एक अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है, क्वालिटी है. क्योंकि बच्चों के सामने अगर आप फेक रहोगे या आप कुछ भी, जैसे आपको कुछ पता नहीं है, जब बच्चे जब आपको कुछ पूछते हैं आपको कुछ पता नहीं है, आंसर कुछ पता नहीं है, अगर आप ऑनेस्टली बोलते हैं कि राइट नाउ आई डू नॉट नो, लेट मी जस्ट फाइंड आउट एंड देन गेट बैक टू यू, आपको अप्रिशिएट करेंगे बच्चे. लेकिन उनके सामने नहीं पता है ये बात नहीं दिखाना है, तब आप कुछ भी ऐसे ही बोल देंगे, कुछ झूठ हो या सच नहीं हो या 100% अप्रोप्रिएट नहीं हो, फिर आप अपने आप में गिल्ट, अगर आप ऑनेस्टली टीच एक टीचर हो तो अपने आप में गिल्ट रहेगा कि आप कुछ 100%

0: करके आपको एक ना एक नाम तो याद आएगा.
1: यस
0: सो यही है बॉन्ड.
1: राइट
0: यही है रिलेशनशिप. इट इज नॉट अबाउट द लर्निंग. यस
1: मोरोवर अभी मेरे दिमाग में तुरंत आ रहा था और मैं कह भी देता हूं इससे पहले कि हम लोग आपके गीतों का आनंद लें, दोस्तों के लिए भी कह देता हूं. दोस्तों आप भी एक बार सुन लीजिएगा. टीचर्स होने के नाते मैं भी टीचर हूं, इसलिए मैं आम द सेम यू नो कोट सेम शूज. सॉरी कहने में मेरे को डर नहीं लगता. आई एम वेरी हैप्पी टू से सॉरी बिकॉज आई एम करेक्टिंग माई सेल्फ देयर, सरेंडरिंग कि नहीं आता मुझे. सो इवन इन माई क्लास आई वेरी ओपनली एंड बिना डरे हुए मैं कह देता हूं आई एम सॉरी गाइस, आई विल कम बैक टू यू ऑन दिस, आई विल चेक एन ऑर्डर एंड आई विल कम बैक टू यू. तो उन लोगों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आती है. दोस्तों ईगो में मत घूमते रहना कि आप टीचर हो बस, यू आर द गिफ्ट टू मैनकाइंड ऑन अर्थ. डोंट डू दैट, बी हम्बल. चलिए इसी विचार को करते हुए तब तक हम राजेश्वरी जी की आवाज में इन दो गीतों का आनंद उठाएं एंड देन विल कम बैक एंड विल लर्न समथिंग मोर फ्रॉम हर.

0: बहुत खूब, अमेजिंगली अमेजिंगली ब्यूटिफुल। राजेश्वरी जी, आपने तो भरपूर सक्सेसफुल जिंदगी को देखा, जिया, बहुत सारे बच्चों को भी सिखाया। आपकी अपनी जिंदगी में बचपन से लेकर आज तक आपको क्या चीज मोटिवेट करती है? What exactly motivates you? I know it's a very generic question. बहुत ज़्यादा wide भी है, broad spectrum भी है, but try, कोशिश करिए ना, हमें बताइए ना, so that we can learn what motivates you.
1: I think as a person, I'm a very happy person.
0: Nice.
1: And I take pleasure in simple things. So यही एक motivation है, जीने के लिए, भरपूर ज़िंदगी जीने के लिए। जैसे आपके जो को भी ड्रीम हो, मेरा एक सपना था कि मैं एक पाठशाला खोलूं, और भगवान ने somehow by the grace of God and things just happened so that the dream became a reality. तो यही एक मोटिवेशन है, क्योंकि भगवान की कृपा जब होती है तब हम अपना 100% दे पाते हैं हर रोज, और हर चीज में जो हम करते हैं उसमें 100% दे पाते हैं. तो ये जिंदगी है, वी आर अलाइव, एंड दैट इटसेल्फ इज अ मोटिवेशन. बहुत सारे लोगों को लाइक देयर इज समथिंग और द अदर, यू नो, खामियां होंगी ही होंगी. आफ्टर ऑल ऑफ अस आर ह्यूमन बीइंग्स, वी ऑल ऑफ अस हैव समथिंग और द अदर लेस इन ईच वन ऑफ अस, बट गॉड हैज गिवन अस द वे वी आर, गॉड हैज मेड अस द वे वी आर. अगर हम इसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, देन वी आर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ह्यूमन बीइंग एंड एन एनिमल?
0: राइट सो
1: वी आर अलाइव, वी आर ब्रीदिंग, एंड वी आर व्हाट वी आर, हु वी आर, एंड दिस सेल्फ इज शुड बी अ मोटिवेशन.
0: ब्यूटिफुल, अमेजिंग. तो ऑफ कोर्स दोस्तों, मैंने बड़ा ही जेनेरिक क्वेश्चन पूछा था. ये जो कुछ भी मैं पूछ रहा हूं ना, राजेश्वरी मैम से बात कर रहा हूं ना, आप अपने ऊपर अप्लाई करते चलो, सुनते सुनते ट्राई टू फाइंड आउट सम आंसर्स. ऐसा नहीं है कि मैं और राजेश्वरी जी ही इस वक्त बस दो लोग हैं जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं दुनिया में. नो, आप भी हो. सोचो ना, अगर ये सवाल मैं आपसे पूछता तो आप क्या जवाब देते? थिंक. तब तक आने, बहुत प्यारे प्यारे हम राजेश्वरी जी के सुनते हैं, एंड देन आई विल कम बैक विद वन मोर मे बी स्टूपिड क्वेश्चन.

0: म्यूजिक, कुड बी प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट और राइटिंग, उस इंटरेस्ट में आप कंसिस्टेंटली बने रहिए और उस पैशन को मत छोड़िए बीच में. हमेशा ये होता है कि बच्चों जब बचपन में बहुत सारे चीज करते रहते हैं बच्चे, और जब बड़े होते जाते हैं, कॉलेज जाते वक्त एक दो क्लास छूट जाता है, जैसे डांस एक लेवल तक सीखा, फिर ओ नो एग्जाम्स आर कमिंग अप, ओ नो आई एम गोइंग टू कॉलेज, नो आई एम स्टार्टिंग माई इंजीनियरिंग, तो वो सब छूट जाता है. तो वो मत होने दीजिए, क्योंकि जब हम बूढ़े होते हैं, नॉट जस्ट फॉर दैट बट थ्रू द जर्नी ऑफ लाइफ, एक जो हमारे साथ जुड़ा रहेगा वो है हमारा इंटरेस्ट, हमारे हॉबीज और हमारे पैशंस. तो अगर वो पर्पस हम यू नो ड्यूरिंग आवर ग्रोइंग अप ईयर्स छोड़ जाते हैं, तो वी विल बी द लूजर्स. सो अपने आप के जो इंटरेस्ट है उनको बनाए रखिए, जैसे भी हो, जितने भी टाइम दे सकते हो उस इंटरेस्ट को पकड़े रहिए, कंटिन्यू करते रहिए अपने एफर्ट्स. और तीसरी बात यह है, परफेक्शन के पीछ मत भागना है किसी को, कंसिस्टेंसी के पीछे रहना है और इम्प्रूवमेंट के पीछे रहना है. बिकॉज परफेक्शन, आई डो नॉट थिंक परफेक्शन एग्जिस्ट. मे बी वेन वी थिंक अबाउट लता मंगेशकर जी, परफेक्शन एग्जिस्ट, बट अगेन देर कैन बी ओनली वन लता मंगेशकर जी, देर कैन नॉट बी बिलियंस ऑफ लता मंगेशकर जी. इसीलिए परफेक्शन के पीछ भागना कम करना है और इम्प्रूवमेंट और कंसिस्टेंसी के पीछे ही रहना है. एंड स्टे हैप्पी, इट्स जस्ट वन लाइफ एंड वी डो नॉट नो अबाउट यू नो coming back alive in the next janma, if there is one. So jab hum saans le rahe hain to khush rahiye, patton ko soongiye, enjoy a flower, enjoy the beauty of a color, enjoy life, be happy.
1: Right.
0: Yeah,
1: please go on.
0: That's about it. मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया शायद.
1: दिल के उद्गार बोले हैं आपने यार, क्यों डर रहे हो? अभी तो बोला आपने कि keep yourself up in your own eyes.
0: Yes, absolutely, absolutely.
1: Of course.
0: Just stay happy. Yes, that's what I would say.
1: Slogging करने की जरूरत नहीं है, sulking करने की जरूरत नहीं है that I'm not good. इस मामले में तो राजेश्वरी जी, मैं कई बार बोलता भी हूँ मेरे बच्चों को और हमेशा से मानता रहा हूँ कि I am the best creation of the God. जिस वक्त आई मतलब आप हो जाते हो तो यू आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द गॉड. सिमिलरली एवरी सिंगल इंडिविजुअल ऑन दिस अर्थ इज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द गॉड, नो बेटर नो लेस.
0: एब्सोल्युटली 100%.
1: तो लेट्स बी हैप्पी अबाउट इट ना मैम. चलो, इट वॉज ग्रेट.
0: प्लीज सॉरी टू
1: बोलिए ना.
0: देर इज अ पोम रिटन बाय, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रॉबर्ट लुई स्टीवनसन.
1: Okay.
0: The mountain and the squirrel. When I was a child, you would have heard it. Wherein mountain talks about being the biggest, and the mountain actually makes fun of the
1: squirrel.
0: Mm. And so each one of them talk about their strengths. Mm. And the squirrel doesn't give up. Squirrel always says that if you're so big, that's fine. I am as small as I am.
1: Mm-hmm.
0: You may be big, I am small.
1: Mm.
0: You may be just stagnant, but I am moving.
1: Mm.
0: See, the mobility that I have, you do not have.
1: Correct.
0: So I am where I am. All is well and wisely put.
1: Wow.
0: By God. Yeah, by the Creator. All is well.
1: Beautiful.
0: So, do not feel proud about yourself. You may feel proud about yourself, but do not put somebody else down.
1: Correct.
0: So, that's the essence of life.
1: इस मामले में तो मुझे याद आ रहा है मैम, अब यार गड़बड़ हो गई, मतलब हम लोग वी आर क्रॉसिंग अवर लिमिट्स टाइम हम लोग. लेकिन आपकी बात सुन के आई गॉट एंथुसियास्टिक, आई गॉट मोटिवेटेड. देयर इज अ ब्यूटीफुल फिल्म, एनिमेटेड फिल्म कॉल्ड ये जो सिम्बा और मुफासा, द लायन किंग, ऐसे ना, उसमें जो ये फादर था दैट वाज मुफासा, वो सिम्बा को छोटे बच्चे को सिखाता है जब वो फंस जाता है वो हायनास के बीच में, तो उसको सिखाता है कि सिम्बा, बीइंग ब्रेव डज नॉट मीन यू गो आउट एंड लुक फॉर ट्रबल,
0: Exactly. That's a very effective line.
1: Beautiful line. I mean, I

0: ऑलवेज रिमेंबर दिस कोर माई हार्ट कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत बहादुर हो, बहुत ताकतवर हो, जिम जाते हो और बड़ी बड़ी मसल्स है. दैट डजंट मीन कि आप सड़क पर चलते किसी को भी थप्पड़ मार दो. नो
1: करेक्ट. आई एम ब्रेव ओनली व्हेन आई नीड टू बी.
0: दैट्स इट. हाँ, ब्रेव रहो यार आप. इफ यू आर, उसका कहने का मतलब था यू आर द किंग ऑफ द जंगल. दैट डजंट मीन साला तुम किसी को भी परेशान करोगे. नो, यू आर द किंग. स्टे किंग. वाह, बहुत खूब मैम. थैंक यू सो मच. मजा आ गया आपसे बात करके. बड़ा अच्छा लगा.
1: समीर जी, थैंक यू सो मच. आई रियली एंजॉय दिस कॉन्वर्सेशन. मेरे दिमाग में बहुत सारे चीजें चल रही थी. जब सुबह मुझसे बोला गया कि आज शायद होगा, तो पता नहीं था कि क्या पूछने वाले हैं, क्या होगा, कैसे होगा. लेकिन आई रियली एंजॉयड दिस कॉन्वर्सेशन विद यू. थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग सच लवली, वंडरफुल, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस. थैंक यू.
0: थैंक यू सो मच. प्लीज टेक केयर मैम.
1: थैंक यू सर. यू टू. यू टू. थैंक यू सो मच.
2: कहने को वैसे तो सारा सुकून है, फिर भी ये दिल है के इसको जुनून है.
0: दोस्तों, आज के कलाकार के इस सुरीले से सफर में बस यहीं तक. मुझे उम्मीद है आज की ये महफिल आपके दिल में एक मीठी याद छोड़ गई होगी. दोस्तों, कुछ गीत खत्म नहीं होते, बस दिलों में बस जाते हैं और जब भी याद आते हैं तो फिर से मुस्कुराहट बिखेर जाते हैं. तो हम फिर आएंगे नए सुरों और नए कलाकारों के साथ. तब तक अपने दिल को बस यूं ही गुनगुनाने दीजिए. नमस्कार.